साहब जिया महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंके आनंद साहब जी की अरदास पुल चुक माफ करनी सच्चे पातशाह जिया जिना जिना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जिया सरबत साध संगत न अपने दरों घरों सिक्के सिदका भरोसा नाम दान बख्शना शुभ पावनावां पूरिया करनिया आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आगे बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिखा पढ़दे सुनदे सरबत लाहे वंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ताईं खां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन ईयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे। डिटेल्स कुझु मित्र आहिनि थोरे में हमेशह तव्हां भगत करम साहब खे ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो ऐं पोइ अॼु मां लोक संगीत जे प्रोग्राम में भगत जसम ॿुधंदा। भगत पेश कंदा आहिनि भगत कालूराम ऐं साथी। ख़ासि ख़ासि ख़बरूं प्रोग्राम जे आख़िर में नशर कयूं वेंदियूं। इहा त असांजे प्रोग्राम जी विचूड़। तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया हींअर छो त भगत करम साहब खे ॿुधूं।

कलवनत कलम साहब जी मुश्किल आवाज में कलाम दे रही आकाशवाणी जी सिंधी सरसा है हिंदर पेश है तबसरों मिनिस्ट्री ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी एंड नेटफ्लिक्स मिली करे ऐलान कया 100 शागिर्दन

स्कॉलरशिप ॾिनी वेंदियूं। तंहिं में 6 प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में 80% माली इमदाद ॾिनी वेंदी। तंहिं में ॿ प्रोग्राम आहिनि, हिकिड़ो आहे 1 साल जी डिप्लोमा प्रोग्राम ऐं ॿियो आहे 6 महीननि जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम। नेटफ्लिक्स ऐं IICT पंहिंजी स्कॉलरशिप जी आछ जेका रखी आहे सां नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग कार्रवाई लाइ रखी आहे, जंहिंजो मक़सदु आहे भारत जे टैलेंट पूल खे जेके इजादी सोच रखनि था तंहिंखे अॻिते आणणु। इन खां अलावा एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक यानी कि AVGC खेत्र सां वाबस्त इन्हनि खे स्किल्स सिखिया हासिल करण में इमदाद ॾियणु। क्रिएटिव इक्विटी लाइ नेटफ्लिक्स फंड्स मैसर कराईंदी स्कॉलरशिप। इहे शागिर्दनि गॾोगॾु कम कंदड़ प्रोफेशनल्स लाइ भारत भर में मौजूदु आहिनि। इहे 6 प्रोग्राम आहिनि जेके आहिनि 1 साल वारी डिप्लोमा ऐं 4-6 महीने वाला सर्टिफिकेट प्रोग्राम। तंहिंखे कॉमिक ऐं सीक्वेंस आर्ट्स ऐं विजुअल इफेक्ट्स मास्टरी, इन खां अलावा विजुअल आर्ट्स डिपार्टमेंट, कंटेंट क्रिएशन, मीडिया टेक वर्क फ्लो, आर्ट ऑफ करेक्टर एनिमेशन, ई स्पोर्ट्स ऐं गेमिंग जे सर्टिफिकेट्स में ॾिनो वेंदो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऐं नेटफ्लिक्स जे गॾियल CEO श्री टेड सैंडर्स मंझि मीटिंग खां पोइ 5 अगस्त 2024 ते इन स्कॉलरशिप जो ऐलान कयो वियो। श्री मोदी चयो त भारत खे अखाणी ॿुधाइण जी हिकु शाहूकार रवायत आहे, इहो माहिरनि जो हिकु असांखे अलॻि भंडार आहे जंहिंसां असीं पंहिंजे मुल्क जी बीहक कंटेंट क्रिएशन में हिकु आलमी मर्कज़ तौरु वधीक पुख़्ती करे सघंदा आहियूं। नेटफ्लिक्स इंडिया कहाणी ॿुधाइण जी कार्रवाई खे शुरू कयो, तंहिंमें भारत जे माहिर टैलेंट खे हथ कयो वेंदो। इन्हनि खे हुनर सां वाबस्त एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक इको सिस्टम में माहिरत ॾिनी वेंदी। भारत जे ऑरेंज इकोनॉमी में इहो हिकु अहम अनासर आहे। IICT जे विजुअल इफेक्ट्स मास्टरी ऐं मीडिया टेक वर्क फ्लो जो जेको क्यूरिकुलम ऐं प्रोग्राम आहे तंहिंखे इन हिसाब सां तयारु कयो आहे जीअं हुनर जे कम में कतब अची सघे। इन खां अलावा इन जा जेके दर्जा हुजनि से आलमी दर्जे जा हुजनि। इन लाइ इनपुट्स नेटफ्लिक्स खां वरिती वेंदी। ख़बरचार ऐं 14 फैला जे वज़ारत जे सेक्रेटरी ऐं IICT बोर्ड जे सरबराह श्री चंचल कुमार चयो त भारत जी क्रिएटिव इकोनॉमी हिकु इन्फ्लेक्शन पॉइंट ते आहे। असां हिन कहाणी ज़रिए महारत अॾे सघंदा आहियूं ऐं हिनखे हिकु इदाराई रूप रेखा ॾेई सघंदा आहियूं। तंहिंमें ईंदड़ पीढ़ी जे टैलेंट खे शुमार करे सघिबो आहे। IICT भारत जे वसीह अकलमंदनि जे पूल खे ऐं हिन खां अलावा आलमी AVGC XR हुनर जे बढ़जंदड़ तब्दीलियुनि खे ध्यान में रखंदे हिकु पुल जो कमु कंदी। अहिड़े सहकार सां हुनर खे हिकु क्लासरूम में तब्दील कयो वेंदो ऐं भारत जे टैलेंट खे हिकु क्रिएटिव वर्क फोर्स में तब्दील कयो वेंदो। नेटफ्लिक्स इंडिया जे वाइस प्रेसिडेंट कंटेंट मोनिका शर्गिल पिण चयो त इहो सहकार कहाणी ॿुधाईंदड़ खे हिकु वज मैसर कराईंदो जीअं हू एनिमेशन, VFX, गेमिंग ऐं कॉमिक्स जा ॿिया पहलू पढ़ी सघनि। IICT जे CEO डॉ विश्वास दियोस्कर चयो त IICT खे बरपा करण जो मक़सदु आहे न फ़क़त स्किल्स खे वधाइण पर हिन स्किल्स खे वढजंदड़ हुनर सां पिण तब्दील करणु। हिन समय नेटफ्लिक्स असांजे एकेडमिक फ्रेमवर्क में रोल अदा कंदी क्यूरिकुलम डिज़ाइन खां वठी करे प्रोफेशनल वर्क फ्लो ताईं। हिन समय हुनर खां इनपुट्स वरिता वेंदा। असांजो मक़सदु आहे हिकु मज़बूत टैलेंट खे बरपा करणु जेको भारत जे वधंदड़ क्रिएटिव इकोनॉमी में पंहिंजो योगदान ॾेई सघंदो। फिकी सरबराह AVGC XR फोरम मंजूर शराफ चयो त FI फिकी ऐं IICT नेटफ्लिक्स सहकार सुभाणे महारत रखंदड़नि खे ईंदड़ वक़्त लाइ तयारु करण में मददगार साबित थींदो। IICT भारत जो हिकु क़ौमी मर्कज़ आहे एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक इन समय जंहिंखे ख़बरचार

चौदस फैला वजरात भारतीय सरकार बरपा कह है तैमें भाई वारी महाराष्ट्र सरकार जी फिकी जी एसीआई जी वरती वही है इन वक्त यो इदारो मुंबई पेडर रोड से एनएफटी कॉम्प्लेक्स में कम कर रहा है उन संदस दायमा दहन एकड़न जी कैंपस के गोरेगांव फिल्म सिटी में तैयार कर वे तक स्कॉलरशिप ए प्रोग्राम के जान लाए iict.org वेबसाइट से वही सकता है तफसर बुझ रहा हुआ।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डी डी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: पेशा मगन जिसम पेश कंदा आहिनि भगत कालूराम ऐं साथी।
2: हेॾा मूमल ऐं राणो हो राणो सौ को पंधु करे उन मूमल सां मिलण अचे
3: मिलण अचे

0: थो वनी
1: हाने थो वनी
0: माल तो कहिए चवा बेहुन वन मुए जा मिठा
1: ओ बेहुन वन मुए जा मिठा
0: अरे बेहुन वन

0: यो इसको भगत साहब
1: वाह वाह सचो
0: हिक में जला जान कुर्बान
1: वाह वाह
0: उने में अल्हा पे वसे
1: उनन सा तुझको लगा तो तुझी विजय कार थी
0: हां बाबा हथ जोड़े करे ये तू चवे
1: त

0: आवत बराणो को नायो
1: नायो
0: मु मल
1: रोई करे
0: अड सुनी पया
1: हां
0: सुबो यो टाइम थो
1: वाह वाह
0: अड मु मल दा करे चेती मु जो राणो रात न आई हो
1: वीर सुबे लटड़ी
0: बट खोरी दे।

0: चवण सां हे दरवी जे साईं जा प्यारा
1: अला लोक
0: चिंत पंहिंजी भक्ति ॾेखारी पर माउ पीउ से ॿुधाइनि था
1: छा था चवनि
0: पेक कने जी यारी
1: आहे
0: अॼु कने रुफी थो वञे
1: रुझी करे
0: बेक साईं चए थोरे ओ कन्हैया
1: ओ कन्हैया
0: इहे रुफड़नि जूं ॻाल्हियूं छॾे ॾे।

तब कलराम सतन खान भगजस मुद्रे आकाशवाणी जी सिंधी सरसा हिंसर पेश खास खास खबरों। नेपाल में आयल ओचते बोर्ड सबब लगभग 160 मानू मार गया 750 गायब है। इन्हें 138 भारतीय नागरिक शुमार है। भारत राहत इमदाद जी पहरी सप्लाई मोकली है नेपाल के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहले नेपाली सैनिक के दिलासो डो है हर तरह की इंसानी राहत इमदाद मैसर कराई वेंदी। नई दिल्ली वॉशिंगटन तरफे सिविल न्यूक्लियर सहकार से सहकार के पुख्तो बनने से गाल कई इंडिया के वीर चौथरानी ए वेलन सेंटी कुमार एफएसए पीएसए बुदापेस्ट स्क्वैश ओपन के सेमीफाइनल्स में पहुंची वे मर्दन के क्रिकेट में भारत कोलंबो मथा पैंजी पकड़ मजबूत रख रही है जो मेजबान श्रीलंका बी इनिंग में 229 ते 6 विकेट 229 ते जदोजहद कर रहे हैं।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस उधरी असाज प्रोग्राम जो वक्त पूरो थी रो है वरी अव मुलाकात थी सुबह सुबह जो यानी कि भारतीय वक्त मुताबिक 4:30 बजे तीन इजाजत सदाई कर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया है। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई जल विद्युत परियोजनाओं को ठप कर दिया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में कल सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के बाद 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से ये आपदा आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इस मुश्किल घड़ी में नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है 9779851316807 और 9779701075000। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने लापता लोगों की खोज और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पीपल्स आर्म्ड पुलिस की शिकाजे टुकड़ी के कुल 145 अधिकारियों और सैनिकों को आपातकालीन प्रतिक्रिया अभियानों में सहायता के लिए प्रभावित सीमा बंदरगाह पर भेजा गया है। वहीं विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रूपये देने की पेशकश की है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
1: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दी है। प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं। महाराजागंज और कुशीनगर सीमावर्ती जिलों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तैयार रहने और गंडक तथा नारायणी नदियों में जलस्तर की लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर में कल पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सरकार ने आगामी महीनों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर राज्य में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सौगात दी है। महिला यात्री आज से 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और शहर की बसों में एक सह यात्री के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। वीर चोट्रानी और वेलवेन सेंथल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये दोनों भारतीय खिलाड़ी आज सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by VC Pramod. Nearly 160 people have been killed and over 750, including 133 Indian nationals, remain missing after a massive flash flood swept through central Nepal yesterday. Originating in Tibet, the flood devastated several towns and villages, washing away critical bridges and crippling a dozen hydropower projects. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal told the parliament that an earthquake hit the Tibet region at 8:37 local time yesterday and the flash floods were reported 3 minutes later, suggesting a glacial outburst due to tremors which triggered the floods. Nepal's National Disaster Risk Management and Management Authority, the massive flood entered the Trishuli River through the Bote Koshe in Timure, a border town in Rasuwa district, due to the rock slide and swelling of the Lhende River situated along the Nepal-Tibet border. It then spread along the river course to other districts like Nuwalkot, Chitwan, Gorkha, Tanahu and Nawalparasi East, covering areas ranging to nearly 200 kilometers from the capital Kathmandu. Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and assured him of all possible humanitarian assistance. Mr. Shah thanked Prime Minister Modi for his warm words of solidarity and for offering humanitarian assistance. New Delhi has already sent the first tranche of relief supplies to the neighboring nation. Indian Embassy in Kathmandu issued emergency numbers for assistance and information related to Indian nationals. The numbers are +977 985 131 6807 and +977 970 910 7500. Nepal Tourism Board also issued similar numbers, including the toll-free emergency number 1234, hotline 1144, and tourist police number 985-128-9445 for help. The Indian Embassy in Beijing also issued a helpline number 0086-185-1428-4905, which can also be contacted through WhatsApp. At least 50 of the Indians missing were pilgrims for the Kailash Mansarovar Yatra. Several states, including Uttar Pradesh and Kerala, have also issued helpline numbers. Besides Indians, missing tourists are from more than two dozen countries, including US, Malaysia, UK, South Africa, Australia and Netherlands. Foreign Minister of Nepal, Shishir Khanal, informed Parliament that 80 security personnel, including 44 Nepal Army personnel, have gone missing from various locations. Prime Minister Narendra Modi will address the Khelo India dialogue today through video conferencing, organized by Mera Yuva Bharat, MY Bharat, as part of the National Sports Day 2026 celebrations. The program will be conducted across the country with participation of youth at two colleges in every district across states and union territories. It will bring together sports, youth leadership, civic responsibility, volunteering, fitness and nation building on a common platform, providing a direct channel for young people to engage with the country's sporting ambitions while ensuring that their ideas and perspectives become part of the continuing conversation on India's youth and sports ecosystem. Government has commenced calibrated and targeted release of onions from the buffer stock to ensure adequate availability and moderate seasonal price pressures in the coming months. Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that onion availability is comfortable to meet domestic demand in the coming months, as estimated production of onions for 2025-26 is over 307 lakh

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 7:10 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम संगीतिका। इसमें आज आप आनंद उठाएंगे अंजलि भारद्वाज द्वारा गाए भजनों का। आपके साथ संगत कर रहे हैं बांसुरी पर विनय प्रसन्ना, सितार पर खालिद मुस्तफा और तबले पर राशिद नियाजी।

सोम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कलाकार अंजलि भारद्वाज द्वारा गाए भजन। आपके साथ संगत कर रहे थे बांसुरी पर विनय प्रसन्ना, सितार पर खालिद मुस्तफा और तबले पर राशिद नियाजी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366

8.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 7:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और इस खूबसूरत से कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। स्वागत करती है आप सभी श्रोताओं का एक खूबसूरत गीत के साथ।

जी हाँ, दिन की शुरुआत तो हो गई है बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ और कार्यक्रम की भी शुरुआत हो चुकी है बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? चलिए हम बता देते हैं आपको। आज हम बात करेंगे सुविचार के ऊपर। जी हाँ, एक अच्छा विचार हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। ये तो ज्यादातर लोग जानते ही हैं। वाकई में अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपके दिन की शुरुआत तो अच्छी होती है, साथ ही आपकी जो जिंदगी है ना, जो आपका जीवन है, वो भी खूबसूरत हो जाता है। जी हाँ, हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं दोस्तों जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हम जैसे कि मौसम है उसे नहीं बदल सकते, दूसरों का व्यवहार भी नहीं बदल सकते, हर परिस्थिति को अपने हिसाब से नहीं बदल सकते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में नहीं बदल सकते, लेकिन एक चीज हमारे साथ होती है, वो होता है हमारा नजरिया और हमारे विचार। जी हाँ, और आज का हमारा जो ये कार्यक्रम है ना, इसी खूबसूरत विषय पर पूरा आधारित रहेगा, सुविचारों की शक्ति। जी, एक अच्छे विचार, सुविचार आपके जीवन की शक्ति बनते हैं और आपके जीवन को कैसे बदलते हैं, इसी के बारे में आज थोड़ी सी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ सुनेंगे खूबसूरत और बेहतरीन नगमे भी।

दोस्तों, सुर क्या केवल सुंदर सुंदर शब्दों का एक कलेक्शन ही नहीं होता, अगर हम उन्हें समझें और अपनी जिंदगी में उतारें तो ये हमारे सोचने का तरीका बदल सकते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है ना एक बहुत ही अच्छे विचारों पर आधारित बातचीत से करते हैं, कुछ ऐसे विचारों के साथ करते हैं जो शायद आपके चेहरे पर मुस्कान भी लाएंगे और दिल में एक नई उम्मीद भी जगाएंगे। जैसे कि मुश्किलें हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है।

जब हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं ना, तो हम अक्सर क्या होता है ना कि नर्वस आ जाते हैं नर्वस आ जाते हैं, यानी कि घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर महसूस करने लगते हैं कि भाई आखिर इस मुश्किल से पार कैसे पाएंगे। और ये बात कितनी सच्ची है ये सभी जानते हैं। जब जिंदगी में कोई परेशानी आती है ना दोस्तों, तो हमारा पहला विचार यही होता है कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, और या फिर क्या मैं इस परेशानी से पार पा पाऊंगा ऐसा ही हम अक्सर सोचते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम उसी परेशानी को एक सीख की तरह देखें ना दोस्तों, तो सवाल बदल जाता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। जी हाँ, मुश्किल अगर आई है तो उससे हम अगर पॉजिटिव वे में देखें और उसके बारे में सोचें कि भाई जो मुसीबत आई है इससे हमें क्या सीख मिलती है, तो देखिए, सोचिए, जानिए, समझिए कि किस तरह से ये जो सुविचार आपने आपके दिमाग में आता है, आपके मन में आता है, वो आपको उस मुश्किल से किस तरीके से पार लगाता है, ये आप बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे। और यही सोच इंसान को कमजोर से मजबूत भी बनाती है दोस्तों। जैसे किसी परीक्षा में कम अंक आ जाएं, किसी काम में सफलता ना मिले, या हमारी कोई योजना पूरी ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम असफल हो जाते हैं या असफल होते रहेंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि हमें थोड़ा और सीखना है, थोड़ा और प्रयास करना है, अपने को थोड़ा और मांझना है।

ये दोस्तों हर सुबह अपने साथ एक नया सवेरा लेकर आती है, नया अवसर लेकर आती है। दोस्तों कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज एक नया दिन है। कल कोई गलती हुई, कोई बात बिगड़ गई, किसी काम में सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं। आज फिर से शुरुआत करते एक नए आगाज के साथ, क्योंकि जिंदगी की खूबसूरती यही है कि हमें हर दिन खुद को बेहतर बनाने का एक नया मौका मिलता है। इसलिए सुबह उठकर खुद से एक बात जरूर कहिए कि आज मैं कल से थोड़ा और बेहतर बनने की कोशिश करूंगा या फिर कोशिश करूंगी। बस इतनी सी सोच आपका पूरा दिन बदल देगी, देखिएगा।

जी हाँ, अगर आप भी अपने जीवन में सुविचारों को उतारेंगे तो आप जैसा भी कोई नहीं होगा। चलिए इस बात पे एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को एक गिलास पानी दिखाया। उन्होंने पूछा, बताओ इसका वजन कितना होगा? किसी ने कहा 100 ग्राम तो किसी ने कहा 200 ग्राम। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, इसका असली वजन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि अगर मैं इसे कुछ मिनट पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? बच्चों ने कहा, कुछ नहीं। शिक्षक ने कहा, और अगर मैं इसे कई घंटे पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? बच्चों ने कहा, हाथ में दर्द होने लगेगा। इस पर शिक्षक बोले, हमारी परेशानियां भी ऐसी ही होती हैं, थोड़ी देर तक उन्हें लेकर चलना सामान्य है, लेकिन अगर हम उन्हें लगातार अपने मन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में पकड़े रहेंगे तो वो हमें इसी तरह से थका देती हैं। देखा कितनी खूबसूरत सीख के साथ एक शिक्षक ने अपने छात्रों को परेशानियों से लड़ना सिखाया। एक अच्छा सुविचार किस तरीके से आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, मोड़ ला सकता है, इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण अभी हमने इस कहानी में आपको बताया। इसीलिए दोस्तों, परेशानियों को समझिए, उनसे सीखिए, फिर उन्हें जाने दीजिए यानी उनसे पार पाइए।

जी दोस्तों, वक्त हो चुका है स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 7:46 आप सुन रहे हैं कार्यक्रम की तो भरी गुड मॉर्निंग और आपके साथ हूँ मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। दोस्तों, जिस दिन आपने खुद पर विश्वास करना सीख लिया ना, उसी दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके साथ खड़ी हो गई। जी हाँ, दुनिया का विश्वास पाने से पहले खुद पर विश्वास होना बेहद जरूरी है। कई बार हम किसी काम को शुरू करने से पहले ही सोच लेते हैं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगर हम कहें कि मैं पूरी कोशिश तो कर सकता हूँ इसे पूरा करने की, तो यही एक वाक्य हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है। याद रखिए, कोशिश करने वाला व्यक्ति हार सकता है, लेकिन कोशिश ना करने वाला व्यक्ति शुरुआत से ही हार मान चुका होता है।

दोस्तों, अच्छे शब्द ना मुफ्त होते हैं, लेकिन उनकी कीमत बहुत बड़ी होती है। किसी से प्यार से बात करने के लिए हमें पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, किसी की तारीफ करने के लिए हमें किसी दुकान पर नहीं जाना पड़ता, और किसी दुखी व्यक्ति से ये कहने के लिए कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें कुछ खरीदना नहीं पड़ता। फिर भी हमारे कुछ शब्द किसी का पूरा दिन बदल सकते हैं। इसलिए आज से एक छोटी सी आदत अपनाइएगा, हर दिन कम से

तुम एक व्यक्ति से कुछ अच्छा जरूर कहिएगा, किसी दोस्त की तारीफ कीजिएगा, माता पिता का धन्यवाद कीजिएगा, किसी की मदद के लिए उसे प्रोत्साहित कीजिएगा, क्योंकि कुछ अच्छे शब्दों की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ते हैं।

खुशियों खुशी परिस्थितियों में नहीं दृष्टिकोण में होती है, यानी हमारे दृष्टिकोण में छुपी होती है। एक ही परिस्थिति दो लोगों के सामने हो सकती है लेकिन दोनों उसे अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। एक व्यक्ति कह सकता है कि मेरे पास ये नहीं है, दूसरा कह सकता है मेरे पास जो है मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ ईश्वर का। फर्क सिर्फ सोच का होता है। जी हाँ, इसलिए खुश रहने के लिए हमेशा बहुत बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती है। कभी एक कप चाय जो है वो आपको खुश कर जाती है, कभी परिवार के साथ बैठना ही बहुत बड़ी खुशी दे जाता है, कभी किसी दोस्त से बात करना, अपने दिल को हल्का कर लेना भी आनंद दे जाता है, तो कभी बारिश की आवाज सुनना, उसे महसूस करना, उसमें भीगना भी आपके दिल को खुशी दे जाता है। बस ये छोटी छोटी सी चीजें जो है ना आपको खुशी दे जाती हैं। बस ये विचार जो है ना आप अपने मन में लाइए कि आप अपने जीवन में किसी भी चीज में खुशी ढूंढ लेंगे और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, जिससे आप अपनी जिंदगी को पॉजिटिविटी के साथ जिएंगे, बहुत खुश दिल के साथ जिएंगे, बहुत ही खुश मिजाजी के साथ जिएंगे।

दोस्तों आज हमने बात की सुविचारों के बारे में, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात जरूर याद दिलाना चाहूंगी, क्योंकि जो वक्त है ना वो तेजी से खत्म होता जा रहा है इस कार्यक्रम का। तो बस यही कहना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, आपके पास अपनी सोच को बदलने की शक्ति हमेशा रहनी चाहिए। हर सुबह एक नई शुरुआत करें, हर गलती एक नई सीख देती है ये भी सीखें, हर मुश्किल एक नया अनुभव देती है ये भी जानें, और हर विचार आपके जीवन में एक नई रोशनी ला सकता है। इसलिए आज से एक छोटी सी आदत डालिए कि हर सुबह एक विचार पढ़िए, सुविचार पढ़िए, उसे सिर्फ पढ़कर मत छोड़िए, दिन भर उसे याद रखिए और कोशिश कीजिए कि वो आपके व्यवहार में दिखाई दे, क्योंकि विचार शब्द बनते हैं, शब्द कर्म बनते हैं, कर्म आदत बनते हैं, और आदतें हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। तो क्यों ना आज से अपने विचारों को थोड़ा और खूबसूरत बनाया जाए। इसी खूबसूरत सोच के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये कार्यक्रम भी बेहद पसंद आया होगा, और एक और आशा कि आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने आसपास भी पॉजिटिविटी फैलाते रहिए, और अपनों का ध्यान रखिए, स्वच्छता का ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, बुजुर्गों का ध्यान रखिए। बस इसी आशा के साथ विदा चाहती हूं आपकी ये दोस्त, जल्द ही मिलेंगे फिर किसी और कार्यक्रम में किसी और अच्छे सुविचार के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपने इस होस्ट एंड दोस्त अर्चना को। टेक केयर, बाय बाय।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के ठीक 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर 2 में से 1 ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमरीका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए $18 अरब तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हिंदी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779701075000। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेचिंग में भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 0086185142849 इस

0: नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपात वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने नेपाल में भयावह बाढ़ और गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 1,50,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना।
0: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं।
3: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
4: यह संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया है कि प्याज को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि उत्पादन की अनुकूल संभावना को देखते हुए सरकार ने 2026-27 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर के लिए रबी प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद प्रक्रिया 15 मई से शुरू हुई और बफर के लिए लगभग 1,21,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा

0: एक्सप्रेस नासिक से रवाना हो चुकी है। आनंद और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीकियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति जताई है। एक रिपोर्ट।
0: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा, जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत आने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। श्रीलंका के पासेंदु सूर्या बंदारा ने 92 रन बनाए। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद प्रियंका। नेपाल में जल प्रलय से मची तबाही को आज जनसत्ता और हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल में केदारनाथ जैसी त्रासदी, ग्लेशियर से 2000 फीट का टुकड़ा गिरने से झील बनी, टूटते ही सैलाब। अमर उजाला की सुर्खी है, दो नए सैन्य संपर्क बनाएंगे भारत और चीन। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की भारत यात्रा से पहले विशेष प्रतिनिधियों के बीच दो हॉटलाइन पर बनी सहमति, 8 बिंदुओं से सुलझाएंगे सीमा विवाद। दहेज मामलों में अब तारीख पर तारीख नहीं। नवभारत टाइम्स ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज के मामले प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। सरकार की सख्ती के बाद गिरने लगे चीनी के भाव। दैनिक जागरण ने लिखा है, सप्ताह भर में चीनी के मूल्य में 12 से 15 रुपए की कमी, कुछ दिनों में और गिरावट का अनुमान। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच सूची में सबसे ज्यादा 19 स्टार्टअप के साथ भारत शीर्ष पर। स्वदेशी पावर चिप से लेकर सीधे कैंसर सेल्स तक दवा पहुंचाने के इनोवेशन कर रही ये कंपनियां। राजस्थान पत्रिका ने ध्वनि प्रदूषण शीर्षक से लिखा है, ट्रैफिक की कर्कश आवाज तले दबी पक्षियों की मीठी चहचाहट, इंसानों को अब पूरा नहीं मिल पा रहा तनाव मिटाने वाला नेचुरल टॉनिक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट, भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमरीका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद, द हेडलाइंस। Massive flash flood claims nearly 160 lives in Nepal, over 750 people including 133 Indians missing. High alert issued in Bihar and Uttar Pradesh following Nepal flood. India sends

0: तहसील से। नेपाल के बस्ती हिस्सों में कल अचानक जबरदस्त सैलाब आने से तकरीबन 160 अफराद की मौत हो गई, जबकि 133 भारतीय शहरों समेत 750 से ज्यादा अफराद लापता हैं। तिब्बत से शुरू होते हुए यह सैलाब अपने साथ अहम पुलों को बहा ले गया, कई कस्बे और गांव तबाह हो गए और एक दर्जन पनबिजली प्रोजेक्ट दरहम बरहम होकर रह गए। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल ने पार्लियामेंट को बताया कि मुकामी वक्त के मुताबिक कल सुबह 8:37 पर तिब्बत के खित्ते में जलजला आया और इसके 3 मिनट बाद अचानक सैलाब आने की इत्तला मिली। इससे यह जाहिर होता है कि जलजले के झटकों की वजह से ग्लेशियर फट पड़ा और इसके सबब यह सैलाब आया। नेपाल पुलिस के मुताबिक अचानक सैलाब आने से 157 अफराद की मौत हुई। नेपाल सरकार ने कहा है कि तकरीबन 500 अफराद लापता हैं। उधर चीन के सरकारी कंट्रोल वाले न्यूज चैनल के मुताबिक चीन के इलाके में भी 3 अफराद मारे गए, जबकि 265 लापता हैं। हुक्का ने बताया है कि नेपाल के मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों से लगभग 100 अफराद को बचाया गया है। इनमें से 30 अफराद काठमांडू में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी अस्पताल में जेर इलाज हैं। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह से फोन पर बात की और उन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। जनाब बालेंद्र शाह ने वजीर आजम मोदी की तरफ से यगंगत के इजहार और इमदाद की पेशकश पर उनका शुक्रिया अदा किया। भारत पहले ही इमदादी सामान की पहली खेप नेपाल भेज चुका है। काठमांडू में भारतीय सिफारतखाने ने इमदाद बाहम पहुंचाने और भारतीय शहरियों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: इधर पेशिंग में भी भारत के सिफारतखाने ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर व्हाट्सएप के जरिए राब्ता कायम किया जा सकता है। जो भारतीय शहरी लापता हैं उनमें से कम से कम 50 अफराद कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्री थे। भारतीय शहरियों के साथ साथ 2 दर्जन से ज्यादा मुल्कों के सैयाह लापता बताए गए हैं। इनमें अमरीका, मलेशिया, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड से शामिल हैं। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल ने पार्लियामेंट को बताया कि मुख्तलिफ मकामात से नेपाली फौज के 44 अहलकारों समेत 80 सिक्योरिटी अहलकार लापता हैं। अचानक सैलाब आने से 8 पनबिजली प्रोजेक्टों को नुकसान पहुंचा है, जिनकी मजमुई सलाहियत 354 मेगावाट की थी। इसके अलावा 19 पुल भी सैलाब के पानी में बह गए हैं। नेपाल की फौज, मुसल्ला पुलिस फोर्स और नेपाल पुलिस के अहलकार मुतासरा इलाकों में बचाव और इमदादी कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। खबरनामे के लिए न्यूज डेस्क से मैं शमीम इरफान।
0: नेपाल में सैलाब आने के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त चौकसी बरती जा रही है। मुकामी इंतजामिया के साथ साथ एनडीआरएफ सख्त निगरानी कर रही है और सरहदी इलाकों में बचाव और इमदादी टीमों को तैयार रखा गया है। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से सूरत हाल और दरियाओं के पानी की सतह में मुमकिन इजाफे के बारे में फोन पर बात की। बिहार सरकार ने मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत गंडक दरिया से मुत्तसिल जिलों में चौकसी बरतने की हिदायत दी है। अलबत्ता गंडक दरिया में अब पानी उतरने का सिलसिला शुरू होने की इत्तला मिली है। बिहार सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो चौकस रहें, घबराएं नहीं और अफवाहों पर ध्यान न दें। इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे हुए रियासत के लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया है। नेपाल में शदीद सैलाब के तनाजुर में उत्तर प्रदेश के सरहदी जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करेंगे। खेलों के कौमी दिन की तकरीबात के हिस्से के तौर पर इस प्रोग्राम का एहतमाम मेरा युवा भारत माय भारत कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: खेलो इंडिया डायलॉग का एहतमाम पूरे मुल्क में किया जाएगा। इसमें रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में हर जिले में 2 कॉलेजों से नौजवान शिरकत करेंगे। इसके जरिए खेलों और नौजवानों के रहनुमाओं, सिविक जिम्मेदारी, रजाकारों, फिटनेस और मुल्क की तामीर में शामिल लोगों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकेगा। इस डायलॉग के जरिए नौजवान अफराद को खेलों से

0: मालिक मुल्क की उमंगों के सिलसिले में बराह रास्त बात करने का मौका मिलेगा और इस तरह उनके ख्यालात और नजरियात भारत के यूथ और स्पोर्ट्स इको निजाम के बारे में जारी मुजाकरात का हिस्सा बन सकेंगे। इसकी एक अहम खसूसियत युवा संवाद का एहतमाम होगा, जहां नौजवान शुरका को अपने ख्यालात और नुक्ता नजर को बयान करने के लिए मदऊ किया जाएगा। खेलो इंडिया डायलॉग का एहतमाम एक तंदुरुस्त डिसिप्लिन और खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नजरिए के ऐन मुताबिक हो रहा है, जिसमें नौजवानों की उमंगों को मुल्क की तरक्की के एजेंडे में मरकजी हैसियत हासिल होगी। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: मरकज ने बफर स्टॉक से मखसूस मकदार में प्याज जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, ताकि इसकी मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके और सीजन के एतबार से इसकी कीमत बढ़ने से रोकी जा सके। सार्फीन के उमूर खुराक और तकसीम अम्मा महकमे की वजारत ने कहा है कि आने वाले महीनों में घरेलू मांग पूरी करने के लिए प्याज मुनासिब मकदार में दस्तियाब है, क्योंकि 2025-26 के सीजन में प्याज की पैदावार 307 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने का तखमीना लगाया गया है। वजारत ने कहा है कि मोबाइल वैन्स और कौमी इमदाद बाहमी सारिफिन फेडरेशन नेफेड के साथ साथ सफल और केंद्रीय भंडार मराकज के जरिए प्याज 35 रूपये फी किलोग्राम की शरह पर फरोख्त की जाएगी। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। वो गुजरात विद्यापीठ के तकसीम असनाद की 72वीं तकरीब में शिरकत करेंगे और अहमदाबाद में आइंदा होने वाले ओलंपिक और दौलत मुश्तरका खेलों की तैयारियों के सिलसिले में जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: जनाब अमित शाह अमरेली जिले के दुधला इलाके में नौ तामीर शुदा हैदनी झील का इफ्तिताह करेंगे। इसे हरे कृष्णा फाउंडेशन ने तैयार किया है। बाद में वजीर दाखिला अहमदाबाद के सर्किट हाउस में एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे, जिसमें वो आइंदा होने वाले ओलंपिक और दौलत मुश्तरका खेलों की तैयारियों का जायजा लेंगे। सपहर को जनाब अमित शाह मेहमान खसूसी की हैसियत से गुजरात विद्यापीठ की 72वीं तकसीम असनाद तकरीब में शिरकत करेंगे और वहां तलबा से खिताब भी करेंगे। बाद में वो भोपाल के खंडोदिया हलके में लोक दरबार में शिरकत करेंगे, जहां वो मकामी लोगों से बात करेंगे। अहमदाबाद से अपना खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: उत्तर प्रदेश में रियासती हुकूमत ने रक्षाबंधन के दौरान रियासत में ख्वातीन के लिए बस में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। ख्वातीन मुसाफिर आज से 29 अगस्त की निसफ शब तक उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन और शहर की बसों में एक फर्द के साथ मुफ्त सफर कर सकेंगी। ये सहूलत 900 से ज्यादा बसों में दस्तियाब होगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्राइवेट गाड़ियों को भी हिदायत दी है कि वो मनमाने तरीके से किराया वसूल न करें और मुसाफिर से तयशुदा किराया ही लें। उन्होंने मजीद कहा कि गुंजाइश से ज्यादा सवारी बिठाने, ज्यादा किराया वसूल करने और मुसाफिरों के साथ बदसलूकी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा हुकूमत रक्षाबंधन के मौके पर हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट की आम बसों में खातिन को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करेगी। ये सहूलत आज दोपहर से शुरू होकर कल आधी रात तक मौसर रहेगी। 15 साल की उम्र तक के बच्चे भी खातिन के साथ मुफ्त सफर कर सकेंगे। ये सहूलत दिल्ली और चंडीगढ़ समेत किसी भी मुकाम के सफर के लिए वैलिड रहेगी। अमरीका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के तनाजुर में आलमी सतह पर वीजा की सभी दरख्वास्तों पर रोक लगा दी है। अमरीकी महकमे खारजा के इस इकदाम का मकसद बंदिशों को सख्त बनाना और उन दरख्वास्त गुजारों के लिए रसाई को महदूद करना है जो बासलाहियत अमरीकियों के लिए मखसूस अवामी फायदों पर मुनहसर हो सकते हैं। ट्रंप इंतजामिया ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रखी है और ग्रीन कार्ड जारी करने से मुतालिक जब्तों को भी सख्त बना दिया है। इससे एक दिन पहले ही अमरीकी इंतजाम ने H-1B वीजा के लिए 1,03,265 डॉलर की नई दरख्वास्त फीस तजवीज की थी। میٹا اپنے پلیٹ فارمز فیس بک اور انسٹاگرام کے ذریعے بچوں کو نقصان پہنچنے سے متعلق دعووں کو نمٹانے کے لیے $18 ارب ادا کرے گا. یہ قدم ایک اہم تاریخی تصفیہ کے تحت سامنے آیا ہے. عدالت کی جانب سے منظور ہونے پر اس سمجھوتے سے میٹا کے خلاف مختلف امریکی ریاستوں کی جانب سے دائر مقدمات کا سلسلہ بند ہو جائے گا. البتہ کمپنی کو پورے امریکہ میں مختلف افراد

0: स्कूल डिस्ट्रिक्ट की जानिब से मुकदमात का सामना है। कोलंबो में सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के आज आखिरी दिन श्रीलंका अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 229 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। भारत ने 9 विकेट पर 503 रन का बड़ा स्कोर बनाकर अपनी पहली इनिंग्स खत्म करने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद श्रीलंका की पूरी टीम को 290 के स्कोर पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। इस तरह श्रीलंका को अब तक सिर्फ 16 रन की सबकत हासिल है और दूसरी इनिंग्स में उसके 4 खिलाड़ी आउट होने बाकी हैं। भारत ने पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता था। सिक्किम से ताल्लुक रखने वाले ग्रैंड मास्टर त्रिलोक सुब्बा को आलमी ताइक्वांडो पुंसे चैंपियनशिप में भारत की नुमाइंदगी करने के लिए मुंतखब किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामानिकार से।
1: बैन अल्कवामी सतह पर मारूफ ताइक्वांडो खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर सिक्किम के त्रिलोक सुब्बा को जनूबी कोरिया के शहर चुनचियोन में आलमी ताइक्वांडो पुंसे चैंपियनशिप में भारत की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया गया है। यह चैंपियनशिप 16 से 20 सितंबर तक होगी। सुब्बा मर्दों के अंडर 60 इंफरादी पुंसे और सीनियर जुमरे के टीम मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। इस सिलेक्शन से पहले सुब्बा ने जुलाई 2026 में महाराष्ट्र में मुनक्किद हुई नेशनल ताइक्वांडो पुंसे चैंपियनशिप में नेशनल टीम के लिए सोने का तमगा जीता था। मेहनत चटर्जी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: भारत के वीर चोटरानी और वेलवन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने नेपाल में आए भयानक सैलाब से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, नेपाल में सैलाब से तबाही, 100 से जायद अफराद हलाक, सैकड़ों लापता। अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नेपाल के वजीर आजम बालन शाह से फोन पर बातचीत और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहमी का वादा करने की खबर को भी नुमाया किया है। अखबार इंकलाब ने इस यकीन दहानी को अहमियत दी है कि भारत मुश्किल घड़ी में अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल के साथ है। अखबार इंकलाब ने तेलंगाना में सड़क हादसे में 6 अफराद की हलाकत को कौमी सफे पर जगह दी है।
0: खास खबरें एक बार फिर। नेपाल में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से तकरीबन 160 अफराद की मौत हो गई। 133 भारतीय शहरों समेत 750 से ज्यादा अफराद लापता हैं। नेपाल में सैलाब आने के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त चौकसी बरती जा रही है। भारत ने नेपाल के लिए इमदादी सामान की पहली खेप भेजी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करेंगे। मरकज ने बफर स्टॉक से मखसूस मकदार में प्याज जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है ताकि इसकी मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके और सीजन के एतबार से इसकी कीमत बढ़ने से रोकी जा सके। अमरीका में सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के तनाजुर में आलमी सतह पर वीजा की सभी दरख्वास्तों पर रोक लगा दी है। मेटा अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए बच्चों को नुकसान पहुंचने से मुतालिक दावों को निपटाने के लिए 18 अरब डॉलर अदा करेगा। और मर्दों के क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के करीब है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 8:45 और पूरे 16 सेकेंड हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित राजीव वर्मा द्वारा सितार पर बजाया राग राग विभास। आपके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर राशिद मुस्तफा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप सुन रहे थे पंडित राजीव वर्मा द्वारा सितार पर बजाया राग राग विभास। आपके साथ है संगत कर रहे थे तबले पर राशिद मुस्तफा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब आपको आगे की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से थोड़ी ही देर में यानी 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम उद्योग पत्रिका। नौ बजकर 30 मिनट का वक्त रहेगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का। दस बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे आपका अपना पसंद का कार्यक्रम आपकी पसंद, फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये थी जानकारी आगे की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीएनएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: 9:15 होने को है।
1: आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।
2: उद्योग पत्रिका।
3: नमस्कार, उद्योग पत्रिका में आप सबका स्वागत है।
4: श्रोताओं, जब हम बात करते हैं रोबोट्स की, जब हम बात करते हैं रोबोटिक्स की, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठी और अनोखी दुनिया है। क्या भविष्य हो सकता है, क्या चुनौतियां हैं, क्या नैतिकताएं हैं, इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। आइए इस साक्षात्कार में सुनते हैं प्रोफेसर रविन्द्र धर, जो कि विभागाध्यक्ष हैं मटेरियल साइंस इलाहाबाद विश्वविद्यालय। प्रोफेसर रविन्द्र धर, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद।
4: सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में और संक्षेप में ये बताइए कि रोबोटिक्स है क्या, और एक आधुनिक रोबोट के पीछे कौन कौन सी प्रमुख जो तकनीकें हैं वो काम करती हैं।
5: वर्तमान रोबोटिक्स, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप AI कह रहे हैं, हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, यौम आधुनिक गैजेट्स से मिलकर बना हुआ है। यह मानव के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि इसमें कुछ इथिकल इश्यूज आते हैं। अब मानव के विकल्प के रूप में कोई गैजेट डिवाइस, जिसको आपने रोबोटिक्स कहा है, तैयार किया जा रहा है, तो इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। हमारे मानव में सबसे पहले आते हैं हमारे ज्ञानेन्द्रिय, जिनसे हम सेंस करते हैं। तो सेंसर्स में हमारे

0: यूनिट जो मानव में ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसी तरह से रोबोटिक्स में सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। वो ये बताता है कि ये फीलिंग्स हो रही हैं, अब इसी के हिसाब से आपको एक्शन लेना है एक्चुएटर को। कम्युनिकेशन भी कैसे होगा इनके लिए, मानव में हमारे यहाँ तंत्रिका तंत्र होता है, उसके थ्रू मैसेज भेजा जाता है, तो फाइबर केबल्स यूज किए जाते हैं रोबोटिक्स में। तो इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं मॉडर्न रोबोटिक्स के।
1: अपनी भाषा में इसे हम सहज विवेक कहते हैं, ये कैसे आप किसी मशीन में डाल सकते हैं, ये इतना आसान है क्या?
0: बिल्कुल, हम भी क्या करते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करते हैं और उसको अपने लॉजिक के हिसाब से, जिसको विवेक आप कह रहे हैं, वो निर्णय लेता है। वही विवेक एल्गोरिथम के थ्रू रोबोट्स के अंदर डेवलप किए जाते हैं, वही इम्पोर्टेंट बात होती है, प्रोसेसिंग वो बड़ा इम्पोर्टेंट है।
1: एक प्रश्न सर और आता है, आज का जो अगर हम यूथ की बात करें, युवा की बात करें, तो एक बहुत बड़ी समस्या देखने में आ रही है, डिप्रेशन, अकेलापन या अवसाद। क्या कोई ऐसा रोबोट हमने तैयार अभी तक किया है, कर पाए हैं या कर पाएंगे क्या, कि जिस इमोशनल इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे थे, जो उस व्यक्ति को भी एक सांत्वना या एक साथ प्रदान कर सके जिसको साथ की जरूरत है?
0: अभी एग्जैक्टली तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो बिल्कुल मदर का सब्स्टिट्यूट हो सके, फादर का सब्स्टिट्यूट हो सके, वो तो जगहें अभी भी आवश्यक हैं। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में उस डायरेक्शन में कुछ काम हो रहा है। अभी भी फ्रस्ट्रेशन रिमूवल बॉक्सेस फॉरेन में तैयार होने शुरू हुए हैं। कई बार आदमी जो फ्रस्ट्रेट होता है तो क्या करता है, अपने कोलीग पर गुस्सा उतारता है, तेजी से चीखना चिल्लाना शुरू करता है। तो वहां पे कुछ इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि वो जा करके अपना फ्रस्ट्रेशन खत्म करे। तो तमाम तरीके की चीजें डेवलप की गई वहां पे।
1: जी,
0: लेकिन अभी ये बहुत कम है। अभी तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का केवल बना है, तो वन साइडेड है। दूसरी तरफ से भी सांत्वना आनी चाहिए,
1: बिल्कुल
0: वो करना होगा, लेकिन वो थोड़ा सा अभी काफी दूर।
1: चलते चलते प्रोफेसर रविन्द्र धर, हमारे माध्यम से हमारे श्रोताओं से कुछ अपील करना चाहें या संदेश देना चाहें?
0: हमारी अपील तो यही है कि इंडिया को विकसित देश अगर बनाना है तो पहली बात तो ये है, यहाँ के युवाओं को नियम कानून पहले सीखना पड़ेगा, टाइम का महत्व सीखना पड़ेगा कि हम कैसे टाइम के अनुसार सब चीजें करें, जो नियम कानून है उसको कैसे फॉलो करें। बड़ा कष्ट होता है जब मैं देखता हूँ कि ट्रैफिक सिग्नल लोग खूब तोड़ते हैं। इलाहाबाद जैसी जगह पे अगर हम ये सिखा ले जाएं कि नहीं भाई ट्रैफिक का ऑनर करिए, जो विदेशों होता है खूब होता है, मजाल क्या है कि सिग्नल अगर रेड हो गया तो कोई भी आदमी, वहां कोई ट्रैफिक पुलिसमैन की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप लोग फॉलो करते हैं। तो रोबोट अगर रहेंगे और रोबोट को खड़े कर दिए जाएं या रोबोटिक से कुछ वहां पे डिवाइसेस डेवलप कर दिए जाएं तो कंट्रोल भी करना बड़ा आसान हो जाएगा लोगों को। तो हम रोबोट्स की पॉजिटिव साइड देखें।
1: श्रोताओं, ये थे प्रोफेसर रविन्द्र धर, जिनसे हम बात कर रहे थे रोबोटिक्स के ऊपर, रोबोटिक्स के भविष्य के ऊपर, रोबोटिक्स के वर्तमान के ऊपर। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, भविष्य की तकनीकी या नई वैज्ञानिक क्रांति, इस पर जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर आशुतोष शुक्ला, जो कि जुड़े हुए हैं भौतिकी विभाग इवन क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज से। प्रोफेसर आशुतोष कुमार शुक्ला, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत धन्यवाद।
1: क्वांटम कंप्यूटर्स, हम सिर्फ कंप्यूटर्स जानते थे, वो कंप्यूटर्स जिनमें एक मॉनिटर होता था, एक सीपीयू होता था, एक कीबोर्ड होता था और एक यूपीएस होता था।
2: हाँ, बिल्कुल।
1: ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है और ये पारंपरिक कंप्यूटिंग से किस तरह से अलग है, संक्षेप में हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: देखिए, ऐसा है कि हम अगर कहें कि क्वांटम कंप्यूटिंग इंसानों की कुछ सबसे मुश्किल समस्याओं को हल करने के लिए अभूतपूर्व कंप्यूटिंग क्षमताएं लेकर आई है, और ये ऐसा कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से उभरती हुई एक नई डेटा प्रोसेसिंग तकनीक है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिक्स के बुनियादी सिद्धांतों पर काम करते हैं और इसी वजह से जो क्लासिकल कंप्यूटर है उससे कहीं ज्यादा क्षमताएं हैं, और बहुत ज्यादा क्षमता वाले ये क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं।
1: क्वांटम का मतलब क्या होता है डॉक्टर साहब?
2: देखिए, अगर हम शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो क्वांटम का मतलब है, जैसे ऊर्जा के क्वांटीकरण की बात करें तो ऊर्जा किस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स में होती है, तो वहां से यह शब्द क्वांटम लिया गया है।
1: जरूरत क्या पड़ी इसकी, क्या सामान्य जो हमारे कंप्यूटर्स थे वो उस प्रकार से काम नहीं कर पा रहे थे?
2: अब देखिए, जब भी नई तकनीक आती है तो उसके पीछे ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो समस्याओं का वांछित रूप से समाधान प्रस्तुत नहीं कर पा रही हैं। यानी आवश्यकता ही आप कह सकते हैं कि आविष्कार की जननी है। तो जब आवश्यकता हुई तब देखा गया, जब हमारे पास इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस की बात है, जैसे आप किसी भी सेक्टर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, ये सब अपने आप में बहुत जटिल कैलकुलेशंस पर आधारित होते हैं। तो इन जटिल कैलकुलेशंस तक पहुंचने के लिए क्लासिकल कंप्यूटिंग से काम नहीं चलने वाला है, और यहीं से इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि अब क्वांटम

0: मैकेनिक्स यानी क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित क्वांटम कंप्यूटर्स की जरूरत है।
1: ये क्वांटम सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट क्या है, इनका क्या महत्व है क्वांटम कंप्यूटिंग में?
0: बहुत अच्छी बात की आपने, पर उससे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग में तेज गति और पैरेलल प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं वो कहां से आ रहा है। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम स्टेट्स का इस्तेमाल करके बड़े डेटा वॉल्यूम के मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग को बेहतर बनाते हैं। ये जो क्षमता है यही सुपरपोजिशन से आती है, जिससे क्वांटम कंप्यूटर्स एक साथ कई डेटा सेट्स को मैनेज कर पाते हैं। इसके अलावा इंटेंगल्ड क्यूबिट्स यानी एक दूसरे से संलग्न क्यूबिट्स जो हैं, वो जटिल डेटा संबंधों को स्टोर और ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये क्लासिकल सिस्टम की क्षमताओं से कहीं ज्यादा है, और क्वांटम इंफॉर्मेशन स्टोरेज जो है वो क्वांटम एल्गोरिदम को चलाने में मदद करता है, जिससे बड़े पैमाने पर सिमुलेशन जैसे मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन का सिमुलेशन और बड़े सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा कुशलता से हो जाता है।
1: आज का दौर एक एआई का दौर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर, और एक तरह से अगर कहें हमने एक कृत्रिम बुद्धि तैयार कर ली है, क्या इसका एआई का और क्वांटम कंप्यूटिंग का जो मिश्रण है ये भविष्य में बहुत अधिक शक्तिशाली होने वाला है? इसके किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस देखने में सामने आ सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक में दोनों आपसे जानना चाहूंगा।
0: बहुत बढ़िया प्रश्न आपने सामने रखा है। देखिए, असली बात जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई दोनों क्षेत्रों के बीच में एक बेहतर तालमेल की बात है, तभी जो है हमको जो अपेक्षित फायदा है, जो अपेक्षित लाभ है वो मिलने वाला है। क्वांटम कंप्यूटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और डिवाइस डिजाइन से लेकर एप्लीकेशन तक अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकें उपयोगी क्वांटम कंप्यूटिंग को विकसित करने के लिए जरूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की चुनौतियों को हल करने में मदद कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यूबिट्स को डिजाइन करने से लेकर क्वांटम एल्गोरिदम तैयार करने, डिवाइस को कंट्रोल और कैलिब्रेट करने, रियल टाइम में गलतियों को ठीक करने और क्वांटम कंप्यूटिंग से मिलने वाले आउटपुट को समझने तक हर चीज में बड़ी भूमिका निभा सकता है।
1: डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने कहा था कि पेड़ों में जीवन होता है।
0: बिल्कुल,
1: हम इतनी भारी भरकम क्वांटम कंप्यूटिंग की बातें कर रहे हैं, कोई पेड़ अगर ये बातें सुन रहा होगा तो उसके मन में क्या विचार आ रहा होगा?
0: बहुत बड़े पैमाने पर संसाधनों का इस्तेमाल होता है, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करते हैं, यानी पर्यावरण के ऊपर असर पड़ रहा है। देखिए, वो बोल नहीं पा रहा है, वो एक उसकी कैपेसिटी नहीं है तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो न बोल करके भी अगर वो प्रकृति का घटक अगर घुट रहा है तो उसको हम ही को भोगना पड़ेगा, तो ये डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली फिर हम उससे प्रभावित होंगे। तो ये आप कह सकते हैं एक बड़ी चुनौती है, विकास के साथ साथ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं।
1: बिल्कुल, तो ये थे प्रोफेसर आशुतोष शुक्ल जो हमें जानकारी दे रहे थे क्वांटम कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में।
2: नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र, एक पत्रकार। आज का हमारा विषय है मेघालय सहित पूर्वोत्तर भारत में आधारभूत संरचनाओं के विकास पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आधारभूत संरचना विकास को नई गति मिली है। प्रधानमंत्री ने कई बार अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, कनेक्टिविटी और आर्थिक संभावनाओं का विशेष उल्लेख किया है। पूर्वोत्तर भारत लंबे समय तक विकास की मुख्य धारा से अपेक्षाकृत दूर माना जाता रहा है, लेकिन अब यह धारणा तेजी से बदल रही है। मेघालय को देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल करना इस बात का प्रमाण है कि राज्य ने विकास के नए मानक स्थापित करने की कोशिश की है। खास तौर पर राज्य सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति निजी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। यह नीति न केवल निवेश को बढ़ावा देने का माध्यम है, बल्कि रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण आधार भी। सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि मेघालय अब केवल प्राकृतिक संसाधनों और पर्यटनों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि तकनीक और उद्यमशीलता के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहा है। राज्य में मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकसित होना इस बात का संकेत है कि युवा पीढ़ी अब पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर नवाचार की राह पर चल रही है। राज्य का पहला आईटी पार्क पूरी क्षमता के साथ संचालित होना और दूसरे आईटी पार्क की बढ़ती मांग यह दर्शाती है कि मेघालय डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिजिटल इंडिया सपने को साकार कर रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती रुचि इस दिशा में राज्य की संभावनाओं को और मजबूत करती है। केंद्र सरकार की भूमिका भी इस परिवर्तन में अहम है। यह सर्वविदित है कि श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के विकास के केंद्र में रखा है। उनकी सोच स्पष्ट रही है कि जब तक देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र तेज गति से आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक भारत के समग्र विकास की कल्पना अधूरी रहेगी। पूर्वोत्तर को केवल भौगोलिक दृष्टि से नहीं देखा।

0: बल्कि इसे भारत की अष्ट लक्ष्मी के रूप में पहचान दी। उन्होंने इस क्षेत्र की अपार संभावनाओं को समझते हुए आधारभूत संरचनाओं के विकास पर विशेष जोर दिया है। पिछले वर्षों में पूर्वोत्तर में सड़क, रेल, हवाई संपर्क और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। बोगीबिल ब्रिज जैसे रणनीतिक महत्व के पुलों का निर्माण, विभिन्न राज्यों में नए रेलवे ट्रैक का विस्तार और क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत नए हवाई मार्गों की शुरुआत ने पूर्वोत्तर की तस्वीर बदलने का काम किया है। आज गांव-गांव तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच रही है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रशासनिक सेवाओं में नई क्रांति आई है। बजट में भी इस क्षेत्र को पहले से बहुत ज्यादा मदद मिली है। वर्ष 2004-05 से वर्ष 2013-14 के बीच जितना पैसा पूर्वोत्तर को मिलता था, उसकी तुलना में अब सकल बजटीय समर्थन GBS 208% बढ़ गया है। इसके अलावा क्षेत्र के लिए खास योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजना में भी इस क्षेत्र ने अच्छी प्रगति की है। इसके प्रमुख उदाहरणों में सौभाग्य योजना के तहत पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों में 100% घरों तक बिजली पहुंचाना और हर घर जल योजना के तहत लगभग सभी घरों को पानी पहुंचाना शामिल है। पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ा और साफ बदलाव कनेक्टिविटी यानी आने जाने की सुविधा में हुआ है। उड़ान योजना के तहत अब इस क्षेत्र में हवाई सेवाएं काफी बढ़ गई हैं। वर्ष 2014 तक जहां 68 साल में सिर्फ 9 हवाई अड्डे थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 17 हो गई है। वर्ष 2023 में इस क्षेत्र को पहली बार वंदे भारत ट्रेन मिली, जो गुवाहाटी से नई जलपाईगुड़ी से जोड़ती है। इससे तेज रफ्तार रेल सेवा की शुरुआत हुई। पूर्वोत्तर के विकास के लिए केंद्र सरकार ने केवल आधारभूत संरचना तक ही सीमित प्रयास नहीं किए, बल्कि पर्यटन, कृषि, स्टार्टअप और औद्योगिक निवेश को भी बढ़ावा दिया है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर ने जितनी तेजी से विकास की रफ्तार पकड़ी है, वह ऐतिहासिक है। स्पष्ट है कि मेघालय अब संभावनाओं की भूमि से आगे बढ़कर उपलब्धियों की धरती बनने की ओर अग्रसर है। यदि यह गति बनी रही तो आने वाले वर्षों में मेघालय पूर्वोत्तर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए विकास और नवाचार का प्रेरक उदाहरण बन सकता है।
1: इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की पहली मजलिस का अब आगाज होता है। नजर डालते हैं आज की मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से थोड़ी ही देर के बाद सुबहग्राही प्रोग्राम होगा। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे भजन। 9:45 पर आज सवेरे प्रोग्राम नशर किया जाएगा। खबरें नशर होंगी 9:50 पर और 10 बजे आप सुनेंगे अखबार जर्री का प्रोग्राम शम्मे फरोजा। 10:05 पर हुस्ने गजल प्रोग्राम में गैर फिल्मी गजलें नशर की जाएंगी और 10:30 पर आप सुन सकते हैं प्रोग्राम चर्चा का विषय है। 11 बजे मेरी पसंद प्रोग्राम में सुनिएगा फिल्मी नगमे। 11:30 पर एक ड्रामा नशर किया जाएगा तीसरा डंक। दिन में 12 बजे खबरें नशर की जाएंगी और 12:10 से आप सुन सकते हैं प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। दौरानी प्रोग्राम 12:40 पर तारीख साज प्रोग्राम होगा। 1 बजे आप आलमी खबरें सुन सकेंगे और 1:15 पर आज की पहली मजलिस का वक्त खत्म हो जाएगा। ये थी एक नजर इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव एक 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है प्रोग्राम सुबगाही, सुनिए नंदनी शरण से भजन।

0: अभी आप भजन सुन रहे थे नंदनी शरण का गाया हुआ। प्रोग्राम था सुबगाही, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे,
1: और आगे बढ़ते हैं। समय के पन्नों पर कुछ तारीखें यूं ही गुजर जाती हैं, तो कुछ तारीखें अपने साथ बदलाव की एक पूरी कहानी लेकर आती है। 27 अगस्त भी कुछ ऐसी ही तारीख है। अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और जानने का कि आज के दिन क्या कुछ खास हुआ। 1859 में एडविन ड्रेक ने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के टाइटन्सविल में सफलतापूर्वक कच्चे तेल की खोज की, जिससे आधुनिक व्यावसायिक तेल उद्योग की शुरुआत हुई। वही 1939 में आज ही के दिन जर्मनी में विमानन के इतिहास का एक नया अध्याय लिखा गया।

0: एंकर है 178 नाम के विमान ने दुनिया की पहली जेट इंजन चालित उड़ान भरी। रोस्टॉक के हैंकल एयरफील्ड से उड़ान भरने वाले इस विमान को टेस्ट पायलट एरिस वार्जिट्स ने महज 6 मिनट तक हवा में रखा। ये वो पल था जब पहली बार किसी विमान ने प्रोपेलर के बिना सिर्फ जेट इंजन की ताकत पर उड़ान भरी और यहीं से शुरू हुआ आधुनिक जेट युग। और 1991 में मोल्दोवा ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा की। बाद में 27 अगस्त को देश के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और 1999 में आज ही के दिन भारत ने मानवीय संवेदनशीलता की एक बड़ी मिसाल पेश की। करगिल संघर्ष के दौरान बंदी बनाए गए 8 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के माध्यम से रिहा कर पाकिस्तान को सौंपा था। ये फैसला उस दौर में आया था जब करगिल युद्ध की तलखी अभी ताजा थी, लेकिन भारत ने वैश्विक मानवीय मानकों और सद्भावना का परिचय देते हुए कदम उठाया था।
1: एंड वेन वी रिमेम्बर सम ऑफ द पर्सनैलिटीज हु ईदर हैव देयर बर्थ और डेथ एनिवर्सरीज, तो इस फेरिस्ट में सबसे पहला नाम किसका है वैष्णवी?
0: सबसे पहले बात करते हैं रविन्द्र केलकर के बारे में। कोंकणी भाषा को केवल बोलचाल की भाषा नहीं बल्कि साहित्य और विचार की सशक्त भाषा बनाने में जिन लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया उन्हें रविन्द्र केलकर का नाम सबसे प्रमुख है। वे स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी चिंतक और प्रख्यात साहित्यकार थे। उन्होंने कोंकणी भाषा, संस्कृति और गोवा की पहचान के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। उनके लेखन में गांधीवादी विचारों की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। कोंकणी साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें पद्मभूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। आज ही के दिन 2010 को उनका निधन हुआ था, लेकिन कोंकणी भाषा और साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी सिनेमा में जब फिल्मों का मतलब अक्सर बड़े सितारे और भव्यता समझा जाता था, तब एक निर्देशक ने रोजमर्रा की जिंदगी, साधारण लोगों और रिश्तों की असाधारण कहानियों को पर्दे पर उतारा। वे थे ऋषिकेश मुखर्जी। उन्हें भारतीय सिनेमा में मिडल सिनेमा का प्रमुख हस्ताक्षर माना जाता है। संपादन से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाले ऋषिकेश मुखर्जी ने निर्देशक के रूप में आनंद, गुड्डी, बावर्ची, अभिमान, चुपकी चुपकी और गोलमाल जैसी यादगार फिल्में दी थी।
1: That's right, Vaishnavi. Today we are remembering Rishi Da on his death anniversary, regarded as one of the greatest filmmakers of Indian cinema. He directed 42 films during his career that spanned over 4 decades, and he's probably named as the pioneer of the middle cinema of India, because of course jo middle class ki life thi usko wo sabse achhi tarah darshate the. Renowned for his social films that reflected the changing middle class ethos, Mukherjee carved a middle path between the extravagance of mainstream cinema and the stark realism of parallel cinema. And he's known for a number of films jinka aapne bhi kuch naam liya: Nadi, Satyakam, Chupke Chupke, Anupama, Anand, Abhiman, Guddi, Golmaal, Majni Didi, Ashirwad, Bavarchi, Khoobsurat, Kisi Se Na Kehna and Namak Haram. He also remained the chairman of the Central Board of Film Certification, that is CBFC, and of NFDC, the National Film Development Corporation. The Government of India honored him with the Dada Saheb Phalke Award in 1999 and the Padma Vibhushan in 2001.
0: सर, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में आज भी मुस्कुराने और जीवन को नए नजरिए से देखने को मजा देती है। तो आइए अब श्रोताओं को सुनाते हैं उनकी फिल्मों के कुछ खूबसूरत गीत।

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। नेपाल में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से तकरीबन 160 अफराद की मौत हो गई। 133 भारतीय शहरियों समेत 750 से ज्यादा अफराद लापता हैं। नेपाल में सैलाब आने के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त चौकसी बरती जा रही है। भारत ने नेपाल के लिए इमदादी सामान की पहली खेप भेजी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करेंगे। मरकज ने बफर स्टॉक से मखसूस मकदार में प्याज जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है ताकि इसकी मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके और सीजन के एतबार से इसकी कीमत बढ़ने से रोकी जा सके। अमरीका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के तनाजुर में आलमी सतह पर वीजा की सभी दरख्वास्तों पर रोक लगा दी है। मेटा अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए बच्चों को नुकसान पहुंचने से मुतालिक दावों को निपटाने के लिए 18 अरब डॉलर अदा करेगा। और मर्दों के क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के करीब है। नेपाल के वस्ती हिस्सों में कल अचानक जबरदस्त सैलाब आने से तकरीबन 160 अफराद की मौत हो गई जबकि 133 भारतीय शहरियों समेत 750 से ज्यादा अफराद लापता हैं। तिब्बत से शुरू होते हुए यह सैलाब अपने साथ अहम पुलों को बहा ले गया, कई कस्बे और गांव तबाह हो गए और एक दर्जन पनबिजली प्रोजेक्ट दरहम बरहम होकर रह गए। नेपाल के वजीर खारिजा शिशिर खनाल ने पार्लियामेंट को बताया कि मुकामी वक्त के मुताबिक कल सुबह 8:37 पर तिब्बत के खित्ते में जलजला आया और इसके 3 मिनट बाद अचानक सैलाब आने की इत्तला मिली। इससे यह जाहिर होता है कि इस जलजले के झटकों की वजह से ग्लेशियर फट पड़ा और इसके सबब यह सैलाब आया। नेपाल पुलिस के मुताबिक अचानक सैलाब आने से 157 अफराद की मौत हुई।

सरकार ने कहा है कि तकरीबन 500 अफराद लापता हैं। उधर चीन के सरकारी कंट्रोल वाले न्यूज चैनल के मुताबिक चीन के इलाके में भी 3 अफराद मारे गए जबकि 265 लापता हैं। हुक्म ने बताया है कि नेपाल के मुख्तलिफ मुतासर इलाकों से लगभग 100 अफराद को बचाया गया है। इनमें से 30 अफराद काठमांडू में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी अस्पताल में जेर इलाज हैं। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह से फोन पर बात की और उन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। जनाब बालेंद्र शाह ने वजीर आजम मोदी की तरफ से गंगत के इजहार और इमदाद की पेशकश पर उनका शुक्रिया अदा किया। भारत पहले ही इमदादी सामान की पहली खेप नेपाल भेज चुका है। काठमांडू में भारतीय सिफारतखाने ने इमदाद बहम पहुंचाने और भारतीय शहरियों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। नेपाल में सैलाब आने के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त चौकसी बरती जा रही है। मुकामी इंतजामिया के साथ साथ एनडीआरएफ सख्त निगरानी कर रही है और सरहदी इलाकों में बचाव और इमदादी टीमों को तैयार रखा गया है। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से सूरत हाल और दरियाओं के पानी की सतह में मुमकिन इजाफे के बारे में फोन पर बात की। बिहार सरकार ने मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत गंडक दरिया से मुत्तसिल जिलों में चौकसी बरतने की हिदायत दी है। अलबत्ता गंडक दरिया में अब पानी उतरने का सिलसिला शुरू होने की इत्तला मिली है। बिहार सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो चौकस रहें, घबराए नहीं और अफवाहों पर ध्यान न दें। इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे हुए रियासत के लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया है। नेपाल में शदीद सैलाब के तनाजुर में उत्तर प्रदेश के सरहदी जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करेंगे। खेलों के कौमी दिन की तकरीबात के हिस्से के तौर पर इस प्रोग्राम का एहतमाम मेरा युवा भारत माई भारत कर रहा है। मरकज ने बफर स्टॉक से मखसूस मकदार में प्याज जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है ताकि इसकी मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके और सीजन के एतबार से इसकी कीमत बढ़ने से रोकी जा सके। सार्फीन के उमूर, खुराक और तकसीम आम्मा महकमे की वजारत ने कहा है कि आने वाले महीनों में घरेलू मांग पूरी करने के लिए प्याज मुनासिब मकदार में दस्तियाब है क्योंकि 2025-26 के सीजन में प्याज की पैदावार 307 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने का तखमीना लगाया गया है। वजारत ने कहा है कि मोबाइल वैंस और कौमी इमदाद बाहमी सारिफीन फेडरेशन नेफेड के साथ साथ सफल और केंद्रीय भंडार मराकज के जरिए प्याज 35 रूपए फी किलोग्राम की शरह पर फरोख्त की जाएगी। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। वो गुजरात विद्यापीठ के तकसीम असनाद की 72वीं तकरीब में शिरकत करेंगे और अहमदाबाद में आइंदा होने वाले ओलंपिक और दौलत मुश्तरक खेलों की तैयारियों के सिलसिले में जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। उत्तर प्रदेश में रियासती हुकूमत ने रक्षाबंधन के दौरान रियासत में ख्वातीन के लिए बस में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। ख्वातीन मुसाफिर आज से 29 अगस्त के निसफ शब तक उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन और शहर की बसों में एक फर्द के साथ मुफ्त सफर कर सकेंगी। यह सहूलत 900 से ज्यादा बसों में दस्तियाब होगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्राइवेट गाड़ियों को भी हिदायत दी है कि वो मनमाने तरीके से किराया वसूल न करें और मुसाफिरों से तयशुदा किराया ही लें। उन्होंने मजीद कहा कि गुंजाइश से ज्यादा सवारी बिठाने, ज्यादा किराया वसूल करने और मुसाफिरों के साथ बदसलूकी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा हुकूमत रक्षाबंधन के मौके पर हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट की आम बसों में ख्वातीन को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करेगी। ये सहूलत आज दोपहर से शुरू होकर कल आधी रात तक मुअसर रहेगी। 15 साल की उम्र तक के बच्चे भी ख्वातीन के साथ मुफ्त सफर कर सकेंगे। ये सहूलत दिल्ली और चंडीगढ़ समेत किसी भी मुकाम के सफर के लिए वैलिड रहेगी।

0: अमेरिका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के तनाजुर में आलमी सतह पर वीजा की सभी दरख्वास्तों पर रोक लगा दी है। अमरीकी महकमा खारजा के इस इकदाम का मकसद बंदिशों को सख्त बनाना और उन दरख्वास्त गुजारों के लिए रसाई को महदूद करना है जो बासलाहियत अमरीकियों के लिए मखसूस अवामी फायदों पर मुनहसर हो सकते हैं। ट्रंप इंतजामिया ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रखी है। इसे एक दिन पहले ही अमरीकी इंतजामिया ने H-1B वीजा के लिए 1,03,265 डॉलर की नई दरख्वास्त फीस तजवीज की थी। मेटा अपने प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए बच्चों को नुकसान पहुंचने से मुतालिक दावों को निपटाने के लिए 18 अरब डॉलर अदा करेगा। यह कदम एक अहम तारीखी तस्वीर के तहत सामने आया है। अदालत की जानिब से मंजूर होने पर इस समझौते से मेटा के खिलाफ मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों की जानिब से दायर मुकदमात का सिलसिला बंद हो जाएगा। कोलंबो में सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के आज आखिरी दिन श्रीलंका अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 229 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। भारत ने 9 विकेट पर 503 रन का बड़ा स्कोर बनाकर अपनी पहली इनिंग्स खत्म करने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद श्रीलंका की पूरी टीम को 290 के स्कोर पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। इस तरह श्रीलंका को अब तक सिर्फ 16 रन की सबकत हासिल है और दूसरी इनिंग्स में उसके 4 खिलाड़ी आउट होने बाकी हैं। भारत ने पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता था। सिक्किम से ताल्लुक रखने वाले ग्रैंड मास्टर त्रिलोक सुब्बा को आर्मी ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में भारत की नुमाइंदगी करने के लिए मुंतखब किया गया है। भारत के वीर चोटरानी और वेलवन सेंथिल कुमार पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। खास खबरें एक बार फिर। नेपाल में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से तकरीबन 160 अफराद की मौत हो गई। 133 भारतीय शहरियों समेत 750 से ज्यादा अफराद लापता हैं। नेपाल में सैलाब आने के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त चौकसी बरती जा रही है। भारत ने नेपाल के लिए इमदादी सामान की पहली खेप भेजी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करेंगे। मरकज ने बफर स्टॉक से मखसूस मकदार में प्याज जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है ताकि इसकी मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके। अमरीका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के इमिग्रेशन कार्रवाई के तनाजुर में आलमी सतह पर वीजा की सभी दरख्वास्तों पर रोक लगा दी है। मेटा अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए बच्चों को नुकसान पहुंचने से मुतालिक दावों को निपटाने के लिए 18 अरब डॉलर अदा करेगा। और मर्दों की क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के करीब है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है अकबाले जर्री का प्रोग्राम शमी फरोजा।
2: गमगुसारी। शरीयत इस्लामिया ने हर शख्स को मुकल्लफ बनाया है कि वह हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक की मुकम्मल तौर पर अदायगी करे। मालिक हकीकी ने अपनी किताबों और अपने नेक बंदों को दुनिया में भेजकर उनके कौल व अमल से लोगों के हुकूक अदा करने की जो बेशुमार मिसालें पेश की हैं वो रहती दुनिया तक पूरी इंसानियत के लिए मशअले राह है। मगर आज हम दूसरों के हुकूक को अदा नहीं करते, अलबत्ता अपने हुकूक का झंडा उठाए रहते हैं, दूसरों के हुकूक की कोई फिक्र नहीं करते, अपने हुकूक को हासिल करने के लिए मुतालबात करते रहते हैं। चुनांच हुकूक के नाम पर अंजुमने और तंजीमें बनाई जा रही हैं, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई अंजुमनें और तहरीकें या कोशिशें मौजूद नहीं है जिनमें यह तालीम दी जाए कि दूसरों के हुकूक जो हमारे जिम्मे है वो हम कैसे अदा करें। इंसानियत का असल मुतालबा यही है कि हम में से हर एक अपनी जिम्मेदारियों को यानी दूसरों के हुकूक अदा करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। हर शख्स पर जरूरी है कि वह तमाम कुव्वतों की तमाम लोगों के हुकूक को अदायगी करे, किसी के माल और जायदाद पर नाजायज कब्जा न करे, किसी को धोखा न दे, खाने की अशिया में मिलावट न करे, किसी को नाहक न सताए। अगर मोहल्ले में किसी की मौत

0: विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है परिचर्चा, भारत चीन संबंध, सीमा समाधान, शांति और स्थिरता पर विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: हिमालय की ऊंचाइयों पर खींची एक ऐसी रेखा जिसे दोनों देश अपने अपने नक्शों में अलग अलग तरह से देखते हैं, एक ऐसी सीमा जो सिर्फ भूगोल का सवाल नहीं है बल्कि सुरक्षा का सवाल है, संप्रभुता का सवाल है, विश्वास का सवाल है और शायद एशिया की भविष्य की राजनीति का भी सवाल है। भारत और चीन, दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश, दो प्राचीन सभ्यताएं, दो उभरती हुई वैश्विक शक्तियां, लेकिन इनके रिश्तों का सबसे संवेदनशील बिंदु है सीमा। साल 2020 के बाद पूर्वी लद्दाख में पैदा हुआ तनाव, गलवान की हिंसक झड़प, भारी सैन्य तैनाती और कई वर्षों तक चला गतिरोध, इन सब ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति केवल सीमा तक सीमित मुद्दा नहीं है। सीमा पर तनाव बढ़ता है तो उसका असर व्यापार पर पड़ता है, कूटनीति पर पड़ता है, राजनीतिक विश्वास पर पड़ता है और पूरे द्विपक्षीय संबंधों की दिशा बदल जाती है। अक्टूबर 2024 में देपसांग और डेमचौक सहित 2020 के फ्रिक्शन पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट और पेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर समझौते के बाद दोनों देशों के बीच बीजिंग में हुई भारत चीन विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में उभरी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई इस मुलाकात का केंद्रीय बिंदु यही रहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता ही द्विपक्षीय संबंधों के विकास का मुख्य आधार है। आज की चर्चा में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या 25वीं दौर की ये बातचीत सीमा विवाद के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस आधार तैयार कर पाई है या फिर ये प्रक्रिया केवल विश्वास की बहाली तक ही सीमित है। इस गंभीर और रणनीतिक मुद्दे पर गहन विश्लेषण के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार सेवानिवृत्त और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष वी पंत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल अशोक कुमार, आपके साथ शुरुआत करते हैं। देपसांग और डेमचौक जैसे फ्रिक्शन पॉइंट से पेट्रोलिंग और बफर जोन की व्यवस्था के संदर्भ में डोभाल और वांग यी की वार्ता को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या हम केवल टैक्टिकल डिसएंगेजमेंट यानी रणनीतिक रूप से पीछे हटने की स्थिति में है या स्ट्रैटेजिक डी एक्सेलरेशन यानी सेनाओं की वापसी की दिशा में कोई वास्तविक प्रगति हो रही है? क्या लगता है आपको?
3: मेरे ख्याल से अगर आप इसका घटनाक्रम ध्यान से देखें तो अक्टूबर 24 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके पहले ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी और उसी मुलाकात के तहत एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दोनों कंट्रीज के लोगों को, डिसीजन मेकर्स को दिया गया कि हमें इस मुद्दे को सुलझाना है। और उसके बाद पिछले जो 24वें मीटिंग हुई थी ऐसा रिप्रेजेंटेटिव्स की, उसमें तो उन्होंने यहां तक कहा कि हम पहले जो अर्ली हार्वेस्ट वाले ऑप्शन है उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो मुद्दों पर जहां पर ज्यादा विवाद है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आपको पता ही होगा कि सिक्किम का इलाका और हिमाचल प्रदेश का इलाका और उत्तराखंड इलाका, ये तीन जगह ऐसे हैं जहां पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है भारत और चीन के अप्रोच में। इतना ही नहीं, यहां पर जहां विवाद है भी और उस पर भी भारत अपने क्लेम के मुताबिक उन जगहों पर उसकी मौजूदगी है जबकि चाइना का सिर्फ क्लेम है। और केवल उत्तराखंड में बाराहोती का मामला ऐसा है जहां पर उसमें ग्रेजिंग के दौरान में अक्सर हर साल आता है और फिर उसके बाद में वापस चला जाता है। इसके पहले दोनों देशों ने अपने नक्शे भी एक्सचेंज किए थे, दोनों को मिलाकर के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर के मिडिल सेक्टर माना जाता है, उसके नक्शे एक्सचेंज हुए थे और दोनों ने अपनी पोजीशन डिलिनेट की थी। तो वहां पर एकदम से क्लैरिटी है कि हम क्या क्लेम कर रहे हैं और चाइना क्या क्लेम कर रहा है और गैप बहुत थोड़ा है जो रिजॉल्व किया जा सकता है। पहली बातचीत में हम वहां तक पहुंच चुके हैं, उस बातचीत के बाद में बाकी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं। और इस बार चूंकि 12-13 सितंबर को इंडिया में ब्रिक्स की समिट होने वाली है तो काफी कयास लगाए जा रहे थे कि इस

0: इस मीटिंग में कोई बड़ा निर्णय सामने आएगा जिससे इस दिशा में एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन में कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन जब बातचीत खत्म हुई कल बीजिंग में, तो वहां पर ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। इनफैक्ट इतना ही नहीं, जो पहले लो हैंगिंग फ्रूट की बात हो रही थी उसको रिजॉल्व करने की, उसका भी जिक्र ना तो चाइनीज के स्टेटमेंट में आया ना भारतीय स्टेटमेंट में आया। हाँ, मोटे तौर पे ये कहा गया कि 24वीं मुलाकात के बाद में दोनों देशों के बीच में प्रगति हुई है। ये चीज तो स्पष्ट नहीं है कि प्रगति किस किस फील्ड में हुई है, लेकिन पूरा टोन आप देखेंगे उस भाषा का, जो बातचीत के जो अंश बाहर सामने आए हैं, उससे लगा है कि दोनों देशों में एक आंतरिक इच्छा है कि इस मामले को स्ट्रेटजिक लेवल पर सुलझाया जाए। भारत ने ये चीज स्पष्ट मेंटेन किया है कि जब तक सीमाओं पर शांति नहीं रहती है, ये चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे कूटनीतिक क्षेत्र हो, या और भी कोई रिलेशनशिप का क्षेत्र हो, उसमें रिलेशंस स्टेबल नहीं हो पाएंगे। और इसलिए उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम्स में जब WMCC की मीट होगी, तो शायद इस दिशा में और प्रगति हो। मेरा मानना यह है कि दोनों देशों की तरफ इसको रिजॉल्व करने की इच्छा है, लेकिन दोनों की अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं और इसलिए इसका रिजोल्यूशन होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो विश्व में मौजूदा परिस्थिति चल रही है उसको देखते हुए, मैं इस कदम को और जो स्टेटमेंट आए हैं उनको काफी पॉजिटिव तरीके से देखता हूं।
1: हर्षी, अगर आपसे समझना चाहें और अपने श्रोताओं को थोड़ा बैकग्राउंडर बताएं, तो 2020 में कन्फ्रंट्रेशन और गंभीर संकट रहा, 2024 में डिसएंगेजमेंट अरेंजमेंट्स की बात हुई, 2025 में डी एक्सकेलेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट और अर्ली हार्वेस्ट जैसे विचारों पर संस्थागत चर्चा हुई, इस वर्ष यानी 2026 में बाउंड्री डिलिमिटेशन, राजनीतिक समाधान की दिशा में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बातचीत। क्या यह कहना सही होगा कि भारत चीन संबंध अब क्राइसिस मैनेजमेंट, स्टेबलाइजेशन, पॉसिबल रेजोल्यूशन की तीन स्तरीय प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, या जैसा कि अभी जनरल अशोक बता रहे थे कि रेजोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल करना अभी जल्दीबाजी होगी? क्या कहेंगे आप?
2: मुझे भी ऐसा लगता है कि रेजोल्यूशन तो ही कुछ दूर दिख रहा है, रेजोल्यूशन नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जो क्राइसिस में ये संबंध थे और जो बॉर्डर इश्यूज जिस तरह से सेंटर स्टेज पर आ गए थे 2020 के बाद, उसके बाद ये सतत प्रयास मुझे लग रहा है भारत की तरफ से और चीन की तरफ से कि कैसे डीएस्केलेशन हो और उससे ज्यादा एक पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस दोनों साइड्स में बने, क्योंकि संबंध जो भारत ने एक अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया था कि जब तक बाउंड्री में एलओसी में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं होगी, तब तक ये मानना कि भारत और चीन के संबंध एक नॉर्मल दो देशों के जैसे संबंध होते हैं उस तरह से हो जाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। भारत ने लगातार इस बात पर जोर दिया था 2020 के बाद, और लगातार इस बात पर भारत आ रहा कि जब तक हम बॉर्डर पर एक नॉर्मल सी नहीं देखेंगे, तब तक जो ब्रॉडर रिलेशनशिप है ये नॉर्मल नहीं होगी। तो मुझे लगता है उसको देखते हुए स्टेबलाइजेशन बॉर्डर पर हो गया है, उसको देखते हुए एक कॉन्फिडेंस दोनों देशों से निकल कर आ रहा है कि दोनों देश ये चाहते हैं और टॉप लीडरशिप दोनों देशों की चाहती है कि जो मुद्दे हैं, खासकर बॉर्डर का जो मुद्दा है, उसको पॉजिटिवली डील किया जाए। लेकिन रेजोल्यूशन अभी भी काफी दूर नजर आता है, क्योंकि रेजोल्यूशन के लिए कुछ जो प्रीरिक्विजिट्स हैं वो होने पड़ेंगे। एक तो दोनों देशों को स्ट्रेटेजिकली वो रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजिकली कंपैटिबल होने पड़ेंगे। देखिए, अगर हम चीन की विदेश नीति को इस समय समझें, जैसे दुनिया में बहुत बदलाव आ रहा है और अमेरिका जिस तरह से अपने पार्टनर्स और एलाइज के साथ डील कर रहा है, उसको देखते हुए कहीं पर चीन को ऐसा लगता है कि अगर वो एक रिस्पॉन्सिबल पावर के तौर पर खड़ा नजर आएगा तो उसके संबंध अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ बेहतर हो पाएंगे। तो चीन ये दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है कि वो उस तरह का एक एग्रेसिव प्लेयर नहीं है जिस तरह का वो कुछ सालों पहले नजर आता था, एटलीस्ट पॉलिसी वाइज। तो उसको देखते हुए वो ये चाहेगा कि भारत भी कुछ कदम बढ़ाए और भारत और चीन के बीच में कुछ सामंजस्य बने जो एक स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में ला पाए। अब सवाल यहाँ पर ये होगा कि क्या ये चीन की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है या ये टैक्टिकल एडजस्टमेंट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को देखते हुए, और उस टैक्टिकल एडजस्टमेंट पर भारत कितना विश्वास कर सकता है। क्योंकि भारत के साथ और

0: बातचीत संबंधों में एक बात जो लगातार होती रही है कि ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल मिसिंग रहा है। भारत क्यों और किन मुद्दों को लेकर चीन के ऊपर ट्रस्ट करे, ये बहुत बड़ा विषय है भारत चीन संबंधों में। और अभी तक मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियां पैदा नहीं हुई हैं जहां पर भारत की तरफ से ये 100% कहा जा सके कि हम चीन को ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है जो ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का 25th राउंड हुआ है टॉक्स का, ये उसी दिशा में संकेत दे रहा है कि दोनों देश ये चाहते हैं कि बॉर्डर पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे। और इसी बात को कमेंट भी किया दोनों इंटरलॉक्यूटर्स ने, वांग यी ने और अजीत डोवल ने। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इस बात के लिए एक दूसरे की तारीफ और प्रशंसा की कि दोनों देश कमिटेड है इस समय कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे। यहां तक तो हम पहुंच गए हैं और ये मुझे लगता है पॉजिटिव डेवलपमेंट है पीपल टू पीपल टाइज के परस्पेक्टिव से, लेकिन क्या ये हमको एक लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन की तरफ ले जा रहा है, मुझे लगता है ये कहना भी जल्दबाज।
1: जी हाँ, बिल्कुल जल्दीबाजी होगा ये कहना। मेजर जनरल, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम थोड़ी बात सीमा प्रबंधन की करें तो एलएसी की अस्पष्टता और विभिन्न अवधारणाओं के कारण अक्सर लोकल फ्लैश पॉइंट्स बनते हैं। इस बातचीत में बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर जो सहमति बनी है, क्या वो 1993, 1996 और 2013 के द्विपक्षीय समझौतों के ढांचे को पुनर्जीवित कर पाएगी, या आपको लगता है कि एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की आवश्यकता है?
2: हमारे पास में 1993, 1996, 2005 और 2013 में जो एग्रीमेंट्स हुए थे और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स डिसाइड हुए थे, उन्होंने बहुत हद तक दोनों तरफ की सेनाओं को ग्राउंड पर भी आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करने से बहुत हद तक रोका है। 2020 के गलवान क्रैश में, हालांकि ये बहुत दुखद घटना हुई है, बावजूद इसके दोनों तरफ से किसी ने भी आर्म्स का, शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया है। हम लोगों ने तो रायट कंट्रोल इक्विपमेंट होता है उसका भी इस्तेमाल नहीं किया था, चीन ने उनका इस्तेमाल किया, पहले से तैयार हुए लेजर्स का इस्तेमाल किया और इस तरह से हमको वहां पर थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन मोटे तौर पर जहां पर भी चाइनीज ट्रांसग्रेशन होता है या दोनों तरफ के पेट्रोलों में क्लैश होता है, मोटे तौर पर वो चीज ग्राउंड पर एग्जिस्ट करती है, धक्का मुक्की होती है, पुश होता है, बट फायरिंग के जैसे केसेस जो सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल कर दें वो अभी तक सीमित रहा है। लेकिन गलवान वाला जो क्लैश था उसने इन आत्मविश्वास के पॉइंट्स पर एक नया मेजरमेंट लाने की कोशिश की है और हमको जरूरत है कि हम अपने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं और जो बॉर्डर पे क्लैश होते हैं उनको हैंडल करने के तरीकों में और पॉजिटिव डेवलपमेंट लाएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो लोकल लेवल पे क्लैश होते हैं, अगर वहां पर कोई भी लोकल कमांडर बहुत मैच्योर नहीं है और अपने देश द्वारा किए गए एग्रीमेंट्स को फुली ऑनर नहीं करता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को नहीं मानता है और इनएडवर्टेंटली या थोड़े से उग्रवादिता की वजह से गोली चल जाती है, तो जाहिर है दूसरा पक्ष भी उसका रिस्पॉन्ड करेगा और वह मामला काफी तूल पकड़ सकता है। कभी कभी वो मामला टैक्टिकल लेवल से बढ़ करके स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट के लेवल तक जा सकता है। तो इसलिए अब जरूरत है कि हम इस चीज पर और संजीदगी से काम करें और उस संजीदगी को ग्राउंड पर उतारने का मेरी समझ से सबसे बढ़िया मॉडल यह है कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिलिनेट करें। बॉर्डर का जो रिजोल्यूशन है वो तो लॉन्ग टर्म इश्यू है, उसके अपने बहुत ढेर सारे चैलेंजेस हैं, बट मेरा मानना यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अगर दोनों देशों में पॉलिटिकल विल हो तो उसको डिलिनिएट करना और ग्राउंड में आइडेंटिफाई करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं। लेकिन मुझे लगता है मौजूदा समय में दोनों देश के सबसे पावरफुल लीडर्स हिस्ट्री में एक साथ हैं, शी जिनपिंग का चाइना में कंट्रोल एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की इंडिया में लोकप्रियता और जो पॉलिटिकल पावर है, अगर दोनों में एक पॉलिटिकल विल हो तो मेरे ख्याल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिलिनिएट करके, डिमार्केट करके आगे बढ़ना कोई असंभव सी चीज नहीं लगती। मुझे लगता है कि ये किया जा सकता है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे दोनों देशों में विश्वास की कमी है और इसका जीता जागता उदाहरण आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉन्च किया था, उसमें चीन का कोई लेना देना नहीं था। बावजूद इसके चीन ने पूरा सेटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करना, सारा इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, वहां पर कमांड कंट्रोल सेंटर एस्टेब्लिश करना, हर तरह की मदद पाकिस्तान को की। और इस समय ये माना जा सकता है कि जो वेपन सिस्टम चीन में है वो पाकिस्तान को भी अवेलेबल होंगे, सबमरीन्स मिल रहे हैं, ढेर सारी चीजें हो रही हैं। और ऐसे में भारत का चीन के इंटेंशन पर विश्वास करना और भी मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी दोनों देश डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे, तब तक इस मुद्दे पर पॉजिटिव सिग्नलिंग हो सकती है, पूछनी हो सकती है, लेकिन ग्राउंड पर हकीकी बदलाव होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक छोटी सी मुझे आशा इसलिए दिखती है कि इस समय जो विश्व में बदलाव हो रहे हैं, जो ग्रुपिंग्स बन रही है डिफरेंट कंट्रीज की रीजनल सिक्योरिटी में, जो यूएस का अप्रोच चल रहा है, और कभी कभी तो ब्रिक्स को नाटो के अगेंस्ट एक बुलवर्क भी माना जा रहा है, जिसमें रशिया, चाइना और इंडिया का एक साथ आना उसके विरोध में खड़ा हो सकता है। तो अगर एक इंटरनेशनल कंपल्शन हुआ और इस कंपल्शन को रशिया, चाइना और इंडिया तीनों के अपेक्स लीडर्स ने, यानी प्रेसिडेंट पुतिन, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समझा, आपसी विश्वास को बढ़ाया और एकजुट हुए, जो उसका स्पाइरल बेनिफिट होगा वो आपसी संबंधों में भी होगा, वो रिश्ते को रिजॉल्व करेगा, इंडिया और चाइना के बढ़ते हुए रिश्ते, इंडिया पाकिस्तान के बीच की डायलॉग को भी बेहतर कर सकते हैं। रशिया, चाइना और इंडिया के जो रिलेशनशिप में अगर बेहतरी हुई तो उससे भी इंडिया चाइना के रिश्ते को फर्दर इम्पेटस मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि मौजूदा समय में विश्वास की जो कमी है उस पर काम करना जरूरी है, साथ ही साथ एलएसी को डिलीमिनेट करना, उस पर काम होना चाहिए। बॉर्डर रेजोल्यूशन वो तो थोड़ा सा बाद में ही रखना पड़ेगा।
1: प्रोफेसर पंत, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारत का स्पष्ट रुख रहा है कि जब तक सीमा पर शांति नहीं तब तक अन्य द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते। इसके विपरीत चीन व्यापार और कूटनीति को सीमा विवाद से अलग रखने की बात करता है। 25वें दौर की इस बातचीत के बाद आपको क्या लगता है कि भारत अपनी इस लिंकेज नीति पर अडिग रहने में सफल रहा है?
2: और भारत का मानना यह था कि दोनों सेनाओं का विड्रॉल हो वो इक्वल रिस्पांस टाइम के बेसिस पे, क्योंकि दोनों तरफ के टेरेन डिफरेंट है, तो एक तो वो रियलिटी होना जरूरी है। दूसरे क्या है कि चीन ने 2015 में थिएटर कमांड बनाया था, जो उसका वेस्टर्न थिएटर कमांड है, जो कम्प्लीट चाइना बॉर्डर जो इंडिया को देखता है उसमें बनाया गया है। इसमें कुछ एक खामियां भी हैं, बट बावजूद इसके उसके ज्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो सिंगल कमांडर के तहत सेंटर हैं। हमारे पास उस समय एक समय ऐसा था कि जिसमें हमारा जो चाइना का बॉर्डर है उसमें नॉर्दर्न कमांड भी शामिल था, वेस्टर्न कमांड भी शामिल था, सेंट्रल कमांड भी शामिल था, ईस्टर्न कमांड भी शामिल था। और उसके बाद में कुछ एडजस्टमेंट हुए जिससे थोड़ा सा वेस्टर्न कमांड को जो हिमाचल प्रदेश का इलाका था वहां से करके उसको सेंट्रल कमांड के अंदर लाया गया, बट अभी भी तीन कमांड्स में वो बायफर्केटेड है। उसके अलावा उसमें एरिया रिस्पांसिबिलिटी के लिए एयरफोर्स एंड उनकी भी जिम्मेवारियां हैं। लेकिन अब जो थिएटर कमांड की बात इंडिया में चल रही है वहां पे कंप्लीट नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे एक सिंगल थिएटर होगा, तो वो भी फोर्सेस को ऑप्टिमाइज करेगा हमारे रिस्पांस मैकेनिज्म को बेहतर करने के लिए। दूसरा है कि हमने 2014 के बाद में पिछले 12 सालों में बॉर्डर्स में अभूतपूर्व सुधार किया है। अगर आप वहां पे जाएं तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप उसी इलाके में आ रहे हैं जहां पर उसकी स्थिति 2013-14 में हुआ करती थी। चाहे वो अरुणाचल का इलाका हो, चाहे लद्दाख का इलाका हो, टनल्स बन गई हैं, रोड्स बन गए हैं, रोड्स चौड़े हो गए हैं, लेटरल कनेक्टिविटी बढ़ गई है, एयरफील्ड्स आ गई एकदम फॉरवर्ड एरियाज में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया का भी बहुत जोर है। लेकिन यह है कि चूंकि हमने शुरुआत थोड़ी लेट की थी और इसलिए अभी हमको अपना फुल पोटेंशियल पाने के लिए और भी मिशन मोड में काम करना पड़ेगा। जोजीला का सुरंग बन रही है, अभी जल्दी ही ऐसा होगा कि हमारा बॉर्डर का एरिया जो है और बॉर्डर के लोग जो हैं वो सब लैंड रूट से कनेक्टेड हो जाएंगे, कोई मौसम के मोहताज नहीं होंगे और फोर्सेस को भी इस बेहतर कनेक्टिविटी से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूवमेंट करना इजी हो जाएगा। हमारा जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है फोर्सेस का, जैसे एयरफोर्स की लिफ्ट कैपेबिलिटी है, हम ओन एयरक्राफ्ट C-295 बना रहे हैं, जिससे क्या होगा कि अगर लॉन्गर डिस्टेंस में भी फोर्सेस को शिफ्ट करना पड़ा तो वो सब भी संभव हुआ। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट था जिसमें चीन को एडवांटेज मिला था, उसको गैप को खत्म करने के लिए इंडिया बहुत तेजी से काम कर रहा है। आपको याद होगा अगर आप वर्बेटिम पढ़े, 2005 का जो एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें यह भी कहा गया था दोनों देशों के बीच में कि किसी फ्यूचर बॉर्डर सेटलमेंट में वहां की जो सेटल्ड पॉपुलेशन है हम उसका ध्यान जरूर रखेंगे। और इसलिए भारत के बहुत जरूरी है कि वाइब्रेंट विलेजेस के माध्यम से अपने फॉरवर्ड एरियाज में, क्लेम एरियाज में लोगों को बसाए। लेकिन लोग तभी बस सकते हैं जब वहां बुनियादी ढांचा, एजुकेशन की फैसिलिटीज, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज और वहां पर उनके एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, सेना को, सबको एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। ऑलरेडी काफी काम हो रहा है, उसको और भी ज्यादा तीव्र दिशा देने की आवश्यकता है।
1: प्रोफेसर पंत, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि चीन की वर्तमान आर्थिक चुनौतियां, अमेरिका चीन की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की मजबूत स्थिति, इन वैश्विक कारकों ने क्या बीजिंग को भारत के साथ वार्ता के लिए आने पर प्रेरित किया है? और साथ ही साथ क्या ये चीन का एक टैक्टिकल एडजस्टमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म रणनीतिक बदलाव की दिशा में उठाया गया कदम, क्या लगता है?
0: जो आपका दूसरा सवाल है कि ये टैक्टिकल एडजस्टमेंट है या स्ट्रेटेजिक रियलाइनमेंट है, मुझे लगता है इसका जवाब तो कुछ समय बाद ही मिल सकता है हमको, जब हमको ये समझ में आए कि ये एक क्लियर पता चले कि चीन क्या, जो उसने पॉलिसी अप्रोच अभी लिया है, क्या इस पर वो ठीक रहेगा। क्योंकि चीन में हमने देखा है बहुत चेंजेस, बदलाव आते हैं और चीन की पॉलिसी से बदलाव आते हैं, और वो बदलाव ऐसे होते हैं कभी कभी कि वो जो, जैसा भारत ने कहा है कि जो अग्रीड होता है उसको ओवरटर्न कर देते हैं। और इसीलिए जब जो गलवान इतना बड़ा शॉक हुआ, वो इसलिए हुआ कि ये तो एक अग्रीड था कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलॉन्ग द बॉर्डर जो अग्रीमेंट भारत और चीन के बीच में था, उसको ओवरटर्न करके वहां पर जो गलवान वाला एपिसोड हुआ, तो उससे ट्रस्ट में बहुत बड़ी कमी आई। अब देखना पड़ेगा लगातार आगे आने वाले समय में कि किस तरह से चीन बिहेव करता है, क्या चीन अपनी पॉलिसीज पर अडिग रहता है, क्या चीन भारत के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ाने में कुछ गुड फेथ नेगोशिएट करता है। लेकिन मेरे ख्याल से इसका जिक्र पहले भी हो चुका है, देखिए समस्याएं और भी हैं चीन के भारत संबंधों में, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के समय में हुआ, चीन और पाकिस्तान के संबंध जिस तरह के हैं, चीन जिस तरह से इंडोनेशिया में प्रेजेंस अपनी बढ़ा रहा है, वो सारी जो समस्याएं हैं वो अपनी जगह बनी हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चीन अपनी कोई रणनीतिक जो उसकी समझ है भारत के बारे में, भारत के बढ़ते हुए जिसका आपने जिक्र किया, भारत का प्रभुत्व है, प्रभाव है दुनिया में, वो बढ़ रहा है और चीन के लिए बिल्कुल एक परेशानी का सबब होगा कि चीन जो अपना प्रभुत्व चाहता है इंडो पैसिफिक में, हिंद प्रशांत में, उसमें भारत जैसा देश अगर उसको चैलेंज करता है तो चीन साम दाम दंड भेद सब कुछ करके उसको कोशिश करेगा कि भारत एक सेकेंड टियर पावर के तौर पर ही खड़ा रहे। मुझे लगता है इसीलिए ये बात को मानना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि चीन दूरगामी पॉलिसी अप्रोच भारत के लिए ले रहा है और वो अपने संबंधों को इस कदर ठीक करना चाहता है भारत के साथ कि बॉर्डर इशू जो भारत चीन संबंधों के कोर में है उस पर वो उसको टारगेट करके उसको सॉल्व करे। तो मुझे लगता है कि जो बदलाव आ रहे हैं दुनिया भर में वो एक रोल प्ले कर रहे हैं, चीन के अंदर भी समस्याएं हैं, चीन बाहर से भी थोड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से टारगेट कर रहा है, और मुझे लगता है उसको देखते हुए चीन को भी लगता होगा कि एक अच्छा मौका है कि भारत के साथ अपने संबंधों को सुधार कर ट्रस्ट डेफिसिट जो है भारत के साथ उसको कम किया जा सकता है। लेकिन क्या ये हो पाएगा चीन से, और क्या भारत चीन को इस नजरिए से और अपना नजरिया भारत बदल पाएगा पूरी तरह से, ये मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा आगे आने वाली चीजों पर।
1: श्रोताओं, शांति और समाधान में अंतर होता है। शांति का अर्थ है टकराव न होना, स्थिरता का अर्थ है टकराव की संभावना को कम करना, लेकिन समाधान का अर्थ होता है उस मूल समस्या को समाप्त करना जिससे टकराव बार बार जन्म ले सकता है। भारत और चीन के सामने आज शायद सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या वे सीमा विवाद को केवल मैनेज करेंगे, क्या वे इतिहास के इस लंबे अध्याय को धीरे धीरे समाधान की दिशा में लेकर आगे बढ़ाएंगे। इसका जवाब केवल बीजिंग या नई दिल्ली की एक बैठक में नहीं मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा सीमा पर ग्राउंड रियलिटी से, सैन्य तैनाती के फैसलों से, कूटनीतिक निरंतरता से और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक इच्छा शक्ति से, क्योंकि दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देशों के बीच शांति केवल द्विपक्षीय हित नहीं है, ये एशिया की स्थिरता से जुड़ा प्रश्न है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक सकारात्मक समाधान देखने को मिलेगा। मेजर जनरल अशोक कुमार जी और प्रोफेसर हर्ष वी पंत जी, चर्चा का विषय है कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
0: जय हिंद।
3: आप सुन रहे थे भारत चीन संबंध, सीमा समाधान, शांति और स्थिरता पर विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम चर्चा का विषय है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

सामीन, जब हम मुकेश का जिक्र करें और राज कपूर साहब का जिक्र ना हो तो ये तो मुमकिन हो ही नहीं सकता है। मुकेश की आवाज गोया राज कपूर की ही आवाज समझी जाती है। दोनों की जोड़ी ने हिंदी फिल्म सनत को बहुत सारे खूबसूरत यादगार फिल्मी नगमे दिए। राज कपूर की फिल्मों में मुकेश की आवाज ने उनके किरदार को एक खास पहचान बख्शी। आवारा फिल्म की बात की जाए, जिसका नगमा अभी हमने आपको सुनवाया, या फिर श्री 420 फिल्म की बात की जाए, मुकेश की आवाज राज कपूर के किरदार के साथ इस कदर खूबसूरती से मैच हुई कि दोनों को एक दूसरे से अलग तस्वर करना मुश्किल हो गया। यही वजह है कि न सिर्फ हिन्दुस्तान बल्कि बैरून ममालिक भी इन फिल्मों ने खूब कामयाब बिजनेस किया।

राम राम मुसलमान को सलाम, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सत श्री अकाल। मेरी तरफ देखिए, मेरे लिबास का मुआयना कीजिए, मेरे जूते हैं जापानी, ये पतलून

आकाश वाणी की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरी पसंद और आज के प्रोग्राम में हम आपको मुकेश के गाये हुए नगमे सुनवा रहे हैं। आज ही के दिन उन्होंने वफात पाई थी। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस खराज अकीदत पेश कर रही है इस अजीम गुलूकार को जिसे दर्द का गुलूकार भी कहा जाता था। मुकेश की आवाज में एक अजीब सी उदासी और एक अजीब सी रजाइत थी। यही वजह है कि उन्हें अक्सर दर्द का गुलूकार कहा जाता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने खुशी के या फिर रोमानी नगमे नहीं गाए। उन्होंने मोहब्बत के भी नगमे गाए, खुशी के भी नगमे गाए, तन्हाई भी कहीं उनके नगमों में नजर आई, कहीं जिंदगी तो कहीं उम्मीद। जिंदगी का हर रंग मुकेश की आवाज में हमें नजर आता है। उनका कमाल ये था कि जब वो कोई उदासी वाला नगमा गाया करते थे तो सुनने वालों को महसूस होता था जैसे ये दर्द खास उसका ही दर्द है।

नगमे अलग अलग थे, जैसे जिस देश में गंगा बहती है का नगमा, होठों पे सच्चाई रहती है, संगम फिल्म का नगमा, दोस्त दोस्त न रहा, मिलन फिल्म सावन का महीना, पहचान बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, मेरा नाम जोकर जाने कहां गए वो दिन, आनंद फिल्म का नगमा कहीं दूर जब दिन ढल जाए, शोर फिल्म का नगमा एक प्यार का नगमा है, रोटी कपड़ा और मकान मैं ना भूलूंगा, धर्म कर्म फिल्म का नगमा एक दिन बिक जाएगा, कभी कभी फिल्म का नगमा मैं पल दो पल का शायर हूं, मुक्ति फिल्म का नगमा जो मुझे भी बहुत पसंद है, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, या फिर सत्यम शिवम सुंदरम, चंचल शीतल निर्मल कोमल, ये तमाम के तमाम नॉमिनेशन के लिए गए नगमे, तो काफी बड़ी फहरिस्त है। और ये जरूरी भी हो जाता है कि किसी भी फनकार को उसके फन के बदले में सराहा जाए तो काम करने का जज्बा दोबाला हो जाता है। बहरहाल मुकेश के बारे में आमतौर पर यह तासुर मिलता है सामेईन कि वो एक सादा मिजाज और नर्म तबीयत के इंसान थे, और जब आप उनकी आवाज में नगमे सुनते हैं तो यही सादगी उनकी आवाज में या उनके नगमों में भी महसूस होती है, और यही उनका कमाल था। वो अपनी आवाज के जरिए बड़े बड़े दावे तो नहीं करते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आहिस्ता रवि में या फिर कहिए कि धीमे धीमे सुरों में दिलों की बात कह जाते हैं, और इस अंदाज में कह जाते हैं कि वो बात फिर हमें बरसा बरस तक याद रहती है। आज ही के दिन 27 अगस्त का वो दिन था, सन था 1976, अमेरिका में उनका इंतकाल हो गया था, ये अचानक वफात थी और हिंदी फिल्म मौसीकी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान। लेकिन जैसे कि कहते हैं ना कि फनकार तो चले जाते हैं लेकिन जो उनका फन होता है वो हमेशा मौजूद रहता है, सराहा जाता है। हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चिराग जलाओगे रोशनी के लिए।

आप सुन रहे थे प्रोग्राम मेरी पसंद। आज के प्रोग्राम में हमने याद किया गुलकार मुकेश को। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी है। अब सुनिए जनाब आर के शर्मा का तहरीर करदा ड्रामा तीसरा डंक।

0: स्टेनो को बुलाओ।
1: यस।
0: हेलो, सुधीर स्पीकिंग। यस यस यस। नो नो नो नो नो नो, हमारे यहां ये बात नहीं। वी बिलीव इन फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग। अच्छा, कुछ करेंगे, कल 4 बजे आ जाना। मैं सुनीता
2: जी,
0: मैं एक जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ, मुझे कुछ देर हो जाएगी। वापस आकर मुझे कुछ जरूरी डिक्टेशन देना है, मेरा इंतजार करना। दफ्तर के बाद आज तुम्हें यहाँ देर तक ठहरना होगा।
2: जी,
0: दैट्स ऑल राइट। क्या मतलब
2: जी? अच्छा ठीक है।
0: क्यों, क्या 5 बजे के बाद तुम्हें काम करने में कुछ एतराज है?
2: हाँ जी, वो
0: यू विल गेट ओवर टाइम।
2: नहीं सर, मेरा मतलब ये था कि मैं
0: सुनीता, मुझे बहुत जरूरी डिक्टेशन देना है।
2: राइट सर।
0: अच्छा, अब मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, कोई मिलने आया तो कह देना, मैं कल मिलूंगा।
2: ठीक है सर। हे भगवान, आज फिर वही बात, वही सवाल। छुट्टी के बाद ठहरना होगा, जब दफ्तर में और कोई नहीं होगा। डिक्टेशन देने से पहले चाय बनानी पड़ेगी, और फिर ये कहेगा कितना सुहाना मौसम है। इसके बाद वही बातें। तुम बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो। काश मैं सुंदर न होती, खूबसूरत न होती। हिरन का शिकार किया जाता है क्योंकि वो सुंदर है। फूल को टहनी से तोड़ लिया जाता है क्योंकि वो सुंदर है। ये दुनिया सुंदरता की दुश्मन है। औरत होना ये गुनाह है। ये मर्द सब एक से होते हैं। जहां मैंने पहले पहल नौकरी की थी, उसका मैनेजर कितना शरीफ लगता था।

0: क्या कर रही हूँ विमला? ये नॉवेल पढ़ रही हूँ।
1: तेरे पास कोई काम नहीं है क्या?
0: अभी तो कुछ नहीं है, मैं भी सुबह से मक्खी मार रही हूँ।
1: साहब ने सुबह से कोई डिक्टेशन ही नहीं दी,
0: मैं तो बोर हो गई हूँ। धीरे धीरे सब बोरियत दूर हो जाएगी, लेकिन मैं तो मेहनत करना चाहती हूँ, और कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती।
1: मेहनत से कामयाबी नहीं मिलती तो और कैसे मिलती है?
0: हाँ, सब धीरे धीरे पता चल जाएगा। इससे पहले तुमने कहीं नौकरी की थी?
1: नहीं, मैं इससे पहले बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और शाम को शॉर्ट हैंड सीखती थी।
0: तेरी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग तो रेलगाड़ी की तरह चलती है।
1: मैं टेस्ट में फर्स्ट आई थी।
0: तुम तो गुणों की पोटली हो, बहुत जल्द तरक्की करो।
2: सुनीता जी, आपको शाम बुला रहे हैं।
1: अच्छा विमला, अच्छा मैं चलती हूँ।
0: ओके।
3: कौन? वर्मा जी। हाँ देखिए, अभी आपको कुछ दिन और रुकना होगा। नहीं, इतनी जल्दी माल सप्लाई करना इम्पॉसिबल है भाई, शिपमेंट अभी पहुंचा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप, आपसे ज्यादा तो हम बेचैन हैं। सिर्फ कुछ दिनों की तो बात है, मैं खुद आपको फोन करूंगा। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया।
0: कैबिन सर।
3: आओ सुनीता बैठो, जस्ट अ मिनट। हेलो। अच्छा अच्छा जनाब, बोल रहे हैं? क्या हाल है डियर? भाई हमारे यहाँ एक रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है, हमें सुंदर सलोनी स्मार्ट और होशियार लड़की की जरूरत है। कौन है वो? तो ठीक है, भेज देना। वो बम्बई ऑफिस को लेटर भेज दिया?
1: यस सर, वो तो उसी वक्त भेज दिया था।
3: गुड गुड, तुमने सब काम बहुत जल्द पिकअप कर लिया है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। यू आर ए गुड गर्ल।
1: मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही
3: हूँ। अगर तुम इसी तरह काम में दिलचस्पी लेती रही तो मैं अगले साल तुम्हें 100 रुपए का इंक्रीमेंट दिला दूंगा।
1: थैंक यू सर।
3: सुनो, यहाँ तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं है?
1: जी नहीं।
3: आज मुझे बहुत जरूरी डिक्टेशन देना है।
1: यस सर। जी।
3: अरे अभी नहीं भाई, शाम को। आज तुम देर तक दफ्तर में बैठोगी।
1: छुट्टी के बाद डिक्टेशन देंगे?
3: हाँ, अगले हफ्ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, इसलिए आज से शाम को देर तक बैठकर काम करना होगा।
1: आज? आज तो माँ मेरा इंतजार करेंगी, 6 बजे घर नहीं पहुँची तो माँ घबरा जाएंगी।
3: तुम्हारे आसपास कोई टेलीफोन नहीं है क्या?
1: जी नहीं।
3: तुम कहाँ रहती हो?
1: पश्चिम बिहार।
3: ठीक है, तुम चपरासी को अपना एड्रेस दे दो, वो तुम्हारे घर कह देगा। और हाँ, कल अपनी मदर से कहकर आना कि जिस दिन भी दफ्तर में काम होगा तुम्हें देर हो सकती है।
1: सब बात ये है।
3: आई एम सॉरी, यू हैव टू स्टे। 5 बजे के बाद मेरे पास आओ। ओके।

0: क्या हुआ सुनीता?
1: आज साहब ने 5 बजे के बाद बैठने के लिए कहा है।
0: क्यों?
1: जरूरी डिक्टेशन देना है। अगले हफ्ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है।
0: अगले हफ्ते मीटिंग तो है
1: जमला, पता नहीं कितनी देर बैठना पड़ेगा।
0: भाई स्टैंडर्ड को तो बैठना ही पड़ता है, नौकरी में नखरा नहीं चलता। अच्छा घर कहलवा दिया है ना?
1: अब साहब कह रहे हैं कि चपरासी मेरे घर कह देगा कि मैं देर से आऊंगी। बेचारी माँ परेशान होगी।
0: तो क्या पिताजी?
1: पिताजी होते तो मैं नौकरी के लिए मारी मारी न फिरती। पिताजी की कपड़े की दुकान थी, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ था, लेकिन हमारी किस्मत ने हमें धोखा दिया और एक दिन पिताजी अचानक किसी हादसे के शिकार हो गए। चाचा जी ने दुकान संभाल ली और ऐसी संभाली कि हम सबको अलग कर दिया। हम मोहताज हो गए, हर चीज के लिए तरस गए। हमारे पेट खाली और आंखें भरी रहती थी। मेरी मां ने कपड़े सीने शुरू कर दिए और मैंने बच्चों को पढ़ाना। किसी तरह गुजर होने लगा और अब मुझे नौकरी मिल गई है तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपने भाई को इंजीनियर और बहन को टीचर बना सकूंगी। लो 5 बज गए।

0: जी लीजिए सर।
1: टाइप कर लिया?
0: जी।
1: ये लो, इसे कल सुबह डिस्पैच कर देना।
0: जी सर, अब मैं चलूं?
1: भैया अभी नहीं, अभी तो तुम्हें दो चार इम्पोर्टेंट डिक्टेशन लेने हैं।
0: जी।
1: घबराती क्यों हो? तुम्हारे घर तो कलवा दिया है।
0: जी जी लिखवाइए।
1: अब तो मैं बहुत थक गया हूँ, पहले एक कप चाय हो जाए।
0: मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगी।
1: दफ्तर में और कौन है?
0: चपरासी के सिवाय और कोई नहीं है।
1: तो बाहर अकेले बैठकर क्या करोगी? यहीं बैठो, चाय पियो।
0: चाय तो सर मैं पीती ही रहती हूँ।
2: शायद चाय
1: यहीं रख दो। नहीं नहीं, हाँ हम खुद चाय बना लेंगे। सुनो तुम अब छुट्टी करो, सुबह जल्दी आ जाना।
2: जी बहुत अच्छा। नमस्ते सर।
1: नमस्ते। सुनीता चाय बनाओ भाई।
0: जी चीनी?
1: पीता तो एक चम्मच हूँ, तुम आधा चम्मच भी डालोगी तो भी ठीक है, ना भी डालो तब भी चलेगा।
0: I'm sorry, sir.
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम पश्चिम बिहार रहती हो ना?
0: जी।
1: कंपनी एक और कार खरीद रही है, मैं तुम्हारे आने जाने का बंदोबस्त कर दूंगा।
0: मुझे तो बहुत आसानी से बस मिल जाती है सर।
1: तुम चाय क्यों नहीं पी रही?
0: जी इस वक्त तो चाय पीने का जी नहीं हो रहा है।
1: चलो मैं भी नहीं पीऊंगा।
0: जी सर, सर ये अच्छा नहीं लगता।
1: क्या?
0: हमारा इकट्ठे चाय पीना।
1: मुझे तो अकेले चाय पीने में मजा ही नहीं आता।
0: सर मेरा मतलब था कि सर मेरा मतलब
1: भी समझो।
0: आपका मतलब?
1: हाँ इस वक्त तो मेरा मतलब है चाय पियो।
0: सर हमें इस तरह।
1: किस तरह?
0: मेरा मतलब है कि ये अच्छा नहीं लग रहा सर।
1: क्या अच्छा नहीं लगता? किसे अच्छा नहीं लगता? मैंने तो तुम्हें चाय पीने को कहा है, तुमने इसका अफसाना बना दिया। नहीं पीती तो मत पियो।
0: आप तो नाराज हो गए सर। I'm sorry,
1: sir. तुम नाराज होने वाली बात ही करती हो, तुम क्या समझती हो मैंने इस चाय में जहर मिला दिया?
0: सर मैं चाय पी लेती हूँ।
1: भाई ना रास्ते पर, जरा खिड़की खोल दो। हाँ हाँ, जरा बाहर की बहार तो देखो।
0: बाहर तो कोई खास बात नहीं है।
1: कितना सुहाना मौसम है, कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चांद निकलने वाला है।
0: जी
1: क्या तुम्हें ये मौसम अच्छा नहीं लगता?
0: अब मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं।
1: तो अब सोच लो कि ये मौसम क्या कहता है।
0: सर वो डिक्टेशन।
1: भाई अभी तो काम करने का मूड ही नहीं रहा।
0: तो मैं जाऊं सर?
1: मैं भी चलता हूँ। सुनो परसों मैं दो दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम भी छुट्टी करना।
0: छुट्टी?
1: तुम मेरी स्टेनो, पर्सनल सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी हो, तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ मुझसे है। अगर मैं बाहर जाऊं तो तुम छुट्टी कर सकती हो, और अगर मैं छुट्टी वाले दिन दफ्तर आऊं तो तुम्हें भी दफ्तर आना पड़ेगा।
0: आप छुट्टी वाले दिन भी दफ्तर आते हैं?
1: हाँ काम ज्यादा या जरूरी हो तो आना ही पड़ता है।
0: और उस दिन मुझे भी आना पड़ेगा?
1: तुम बहुत भोली हो, मेरा तुम्हारे बगैर काम नहीं चल सकता, और तुम्हारा मेरे बगैर, समझ गई?
0: सर क्या करें सर?
1: तुम्हारी पीठ पर कीड़ा चल रहा था।
0: लेकिन मुझे तो महसूस नहीं हुआ।
1: हाँ तुम्हें तो तब पता चलता जब वो काट खाता।
0: सर मैं चलूं?
1: चलो मैं भी अब चलता हूँ। चौकीदार
2: जी हजूर।
1: भाई हम जा रहे हैं, कमरा बंद कर देना।
2: जी सर।
1: चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ।
0: सर आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं चली जाऊंगी।
1: अरे भाई चलो भी, मेरे साथ जाते हुए क्या तुम्हें डर लगता है? मैं कोई हवा हूँ।
0: सर ठीक है मैं पीछे बैठती हूँ।
1: पीछे नहीं, मेरे पास यहाँ।

0: अच्छा नहीं लगता।
1: मेरे हाथ लगाने से क्या पिघल जाओगी? बहुत नफरत दिखा रही हो।
0: मैं नौकरी करने आई हूँ, न कि अपने आप को बेचने।
1: तो जाओ, रखो अपने आप को संभाल के, कल से दफ्तर आने की जरूरत नहीं है।
0: ठीक है, नहीं आऊंगी।
1: पुलिस गर्ल।

तक मैं बेबसी को आंसुओं से ढक लेना चाहती थी, लेकिन कभी कभी आदमी कुछ नहीं कर पाता, रो भी नहीं सकता। मैं आंसू पी गई और किसी तरह घर आई। रात भर करवटें बदलती रही, दिल में टीस, जलन, आग। जी जाता था खुद को खत्म कर लो, लेकिन कुछ नहीं कर पाई।

0: पर, और फिर एक इंटरव्यू कॉल आई। मैं कम इन सर।
1: यस।
0: गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग विस्मिता, बैठिए आराम से बैठिए, टेक इट इजी।
0: जी
1: हाँ, आपकी शॉर्टन की कितनी स्पीड है?
0: 120।
1: श्योर?
0: यस सर।
1: और टाइप की?
0: 50।
1: गुड, आप तो हर तरह से नंबर वन हैं। लेकिन आपको यह मेहनत करनी पड़ेगी।
0: मैं कामचोर नहीं हूँ।
1: इससे पहले भी कहीं काम किया है आपने?
0: जी हाँ, मैं एक कंपनी के जनरल मैनेजर की सेक्रेटरी थी।
1: यू मीन पर्सनल सेक्रेटरी?
0: जी।
1: तो आपको काम क्या करना पड़ता था?
0: जी, डिक्टेशन लेना, टाइप करना और
1: मैं समझ गया उनका सारा प्राइवेट और पर्सनल काम।
0: मेरा मतलब है दफ्तर में जो भी उनका काम।
1: मैं समझ गया, सब काम दफ्तर के ही होते हैं। हाँ, वहां पे कितने दिन काम किया?
0: 3 महीने।
1: 3 महीने? क्या आपने रिजाइन किया?
0: जी।
1: क्यों?
0: बस यूं ही वहां दिल नहीं लगा।
1: दिल की तो सारी बात है
0: जी।
1: मेरा दिल कह रहा है कि आपका दिल हमारे यहाँ जरूर लग जाएगा। हाँ, वहां क्या मिलता था?
0: 500 रुपए।
1: हम आपको 600 रुपए देंगे।
0: जी।
1: बोनस और डीए अलग।
0: मुझे मंजूर है।
1: 6 महीने तक आपको यही तनख्वाह मिलेगी, और अगर आपने हमें खुश कर दिया तो 100 रुपए बढ़ जाएंगे।
0: थैंक यू सर।
1: कल से काम पर आ जाइए।
0: जी।
1: 30 लड़कियां इंटरव्यू के लिए आई थी, मुझे बस आप ही अच्छी लगी। बस जरा दिल लगाकर काम कीजिए।
0: सर, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी।
1: क्या बात है, तुम बहुत समझदार।
0: अच्छा, नमस्ते सर।
1: नमस्ते नमस्ते।

0: सर आपने बुलाया?
1: ओ हाँ, आज तुम्हें कुछ देर रुकना होगा मिस सुनीता
0: जी,
1: बहुत जरूरी काम है। तुम तो जानती हो कल मैं टूर पर जा रहा हूँ और सारे काम आज ही खत्म करने हैं।
0: ठीक है सर, मैं वो कॉन्ट्रैक्ट टाइप कर रही हूँ, जब जरूरत हो तो बुला लीजिएगा।
1: कॉन्ट्रैक्ट को मारो गोली, यहाँ बैठो।

0: एक कप चाय पी लें फिर काम करेंगे।
1: जी मैं तो चाय नहीं पीऊंगी।
0: क्यों, कोई नाराजगी है?
1: जी नहीं, मैंने अभी पी है।
0: हमारे साथ भी पी लो, चाय बनाओ पियो और पिलाओ।
1: आज आज फिर मेरी आजमाइश है, मैं क्या करूं? नौकरी छोड़ दूं या अपने आप को बेच दूं? नहीं मैं बिकाऊ नहीं हूं।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
1: सर,
0: इस वक्त शायद हमारी किस्मत में चाय ही नहीं।
1: सॉरी।
2: यस सर।
0: ये मैं साफ कर दूं।
2: अभी ठीक है साहब। और तुम जाओ?
0: नहीं, तुम जाओ। तुम्हें 4 महीने हो गए हैं यहाँ।
1: जी।
0: तुम्हें 6 महीने बाद तुम्हें परमानेंट कर दूंगा।
1: थैंक यू सर।
0: मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मेरी सिलेक्शन हमेशा बढ़िया होती है, तुम बहुत अच्छी हो।
1: सर डिक्टेशन दीजिए।
0: जरा ठहर जाओ, सुबह से काम कर रहा हूं।
1: मैं फिर आ जाऊंगी।
0: अरे जाती कहां हो, यहां बैठो।
1: जी।
0: तुम सामने बैठोगी तो थकावट अपने आप दूर हो जाएगी।
1: सर
0: कुछ नहीं, कुछ नहीं, कंधे पर चींटी चल रही थी। कितना अच्छा मौसम है, बादल छाए हुए हैं, चांद निकला हुआ है।
1: बादलों में चांद कहाँ है?
0: बादल आसमान में हैं और चांद मेरे सामने जमीन पर।
1: आपको ऐसी बातें जेब नहीं देती।
0: डोंट बी सिली।
1: छोड़िए मेरा, छोड़िए ना। मैं नौकरी करने आई हूँ, बिकने नहीं।
0: तुम्हें कौन खरीद सकता है, हम तो दिल का सौदा कर रहे हैं। दिल लो और दिल दो।
1: आप मेरी बेबसी और लाचारी का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं?
0: मैं तुम्हारी बेबसी को सुख में और लाचारी को खुशहाली में बदल देना चाहता हूँ मिस सुनीता।
1: नहीं, मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, छोड़िए मुझे।
0: तो मैं कौन सा तुम्हें घर से बुलाने गया था?
1: आपको शर्म आनी चाहिए।
0: ओह शट अप। तुम जैसी दर्जनों लड़कियां यह नौकरी के लिए ना कर करती हो, तो वो अपने आप को समझती क्या हो?
1: ठीक है, मैं जा रही हूं।
0: गेट आउट।

मैं फिर बेइज्जत हुई, दफ्तर से बाहर निकाल दी गई, नहीं फेंक दी गई जैसे कोई रद्दी कागज। मेरा गुनाह यही ना कि मैं एक औरत हूं, खूबसूरत हूं,

0: दिव्या आगे?
1: हाँ डिंपल आ गई।
0: दीदी दीदी आज हमारी मैडम ने बहुत अच्छा जोक सुनाया। एक आदमी ने एक दुकानदार से छतरी खरीदी और उससे पूछा ये छतरी मजबूत भी है, साल दो साल में खराब तो नहीं होगी। दुकानदार ने जवाब दिया इसे धूप और बारिश से बचा कर रखना, कभी खराब नहीं होगी। दीदी तुम हंसी नहीं?
1: दीदी आज हमारे टीचर ने मुझसे पूछा तुम क्या बनोगे, तो मैंने जवाब दिया मैं इंजीनियर बनूंगा।
2: हाँ हाँ भैया इंजीनियर बनेगा। दिनभर माँ कहाँ है?
0: माँ ने वो कोने वाली कोठी है ना, उनकी लड़की का सूट सिया था, वो ही देने गई हैं। दीदी कल हमारा स्कूल पिकनिक पर जा रहा है, मैं भी जाऊंगी, बस 5 रुपए चंदा देना है।
1: दीदी तुम बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों हो?
3: इन बड़े घर की लड़कियों को तो बात करने की भी तमीज नहीं है। पहले कहती थी कुर्ता ढीला रखना और अब कहने लगी ढीला क्यों रखा है, तुमने सारा कपड़ा खराब कर दिया। तू तलाक से बात करती थी, मैंने भी सोच लिया है अब ऐसे लोगों के कपड़े नहीं सीऊंगी, मेरी सुनीता की नौकरी लग गई है,

0: तो आ गई सुनीता। अरुण तू स्टोव जला दे बेटा, मैं चाय बना दूं इसके लिए।
1: क्या बात है सुनीता, तू उदास क्यों है बेटा?
2: कोई बात नहीं है माँ।
0: बेटा आज वो मकान मालिक आया था, तकाजा कर रहा था। मैंने कह दिया अब सुनीता की नौकरी लग गई है, अब आपका सब कर्ज उतार देंगे।
3: दीदी मेरे लिए बॉल पेन लाई हो?
2: आज तो बहुत अनचाही चीज लाई हो।
0: क्या मतलब?
2: गरीबी।
0: गरीबी? इसे तो हम बरसों से ओढ़ते बिछाते आ रहे हैं बेटा, क्या ये पीछा नहीं छोड़ेगी हमारा? सुनीता साफ साफ बता बेटा क्या हुआ है।
2: मेरी नौकरी नहीं रही।
0: क्या उन्होंने तुझे
2: मुझे निकाल दिया? बाहर फेंक दिया रद्दी कागज की तरह।
0: मगर बेटा तू तो बहुत काम करती थी।
2: पर उनके काम की नहीं थी ना।
0: सुनीता तू ठीक है ना बेटा?
2: ठीक हूँ
0: मेरी बेटी सुनीता।
1: आज मुझे फैसला करना है, जहां भी जाऊंगी यही सवाल होगा, और अगर नौकरी नहीं तो गरीबी बेकारी भुखमरी और उनकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, टिम्पल को स्कूल छोड़ना पड़ेगा। नहीं मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती, मेरी नौकरी अरुण और टिम्पल का मुस्तकबिल और मां की जिंदगी है। और फिर गरीबी में तो औरत को इज्जत संभालनी और भी मुश्किल हो जाती है। मैं नौकरी करूंगी, कुछ भी हो मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। ठीक है आज से एक नई सुनीता जन्म लेगी जो तरक्की करेगी, पैसे बटोरेगी और गरीबी के फंदे को तोड़ देगी काट देगी और खुशहाल जिंदगी बिताएगी। और जो करना है रोकर क्यों, हंसकर क्यों नहीं किया जाए?

0: मीटिंग खत्म हो गई सर।
1: अरे तुम अभी तक यहीं हो?
0: आप ही ने तो कहा था कि छुट्टी के बाद ठहरना।
1: हाँ हाँ
0: हाँ। सर मेरा काम तो आपका हुक्म मानना है, आपको खुश करना है।
1: अच्छा अच्छा, तुम उस सीट पर बैठो, जब जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा।
0: मालूम होता है सर आप बहुत थक गए हैं।
1: हाँ, मीटिंग कुछ लंबी हो गई।
0: हाँ तो पहले चाय पी लीजिए ना, फिर काम कीजिएगा।
1: हाँ हाँ ठीक है।
0: चीनी
1: एक चम्मच, तुम ही पियो।
0: क्यों नहीं, आपके साथ तो चाय जरूर पीऊंगी।
1: आज तुमको काफी देर हो गई, घर वाले इंतजार करेंगे।
0: कोई बात नहीं, आज तो मैं आपके साथ ही जाऊंगी। मुझे कनॉट प्लेस उतार दीजिएगा, वहां से मुझे बस मिल जाएगी।
1: ओके ओके।
0: कितना बढ़िया मौसम है। कितनी ठंडी हवा चल रही है, बादल गिर रहे हैं।
1: अरे ये तुम क्या कर रही हो? मेरा मतलब है...
0: मैं आपका मतलब समझती हूँ। हाँ, पहले नहीं समझती थी, अब सब कुछ समझती हूँ।
1: अरे ये क्या कर रही है?
0: आप बहुत अच्छे हैं सर।
1: सुनीता ये क्या कर रही
0: है? सर आपके गाल पे चींटी थी। अरे आप घबरा क्यों रहे
1: हैं? सुनीता
0: सर ये फूल मेरे जूड़े में लगा दीजिए ना।
1: फूल
0: लगा दीजिए ना। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं?
1: तुम्हें क्या हो गया सुनीता?
0: अचानक से मैं आपके कोट में लगा।
1: अरे ये मतलब सुनीता दूर हटो, क्या करती हो?
0: सर अब तो मुझे 4 महीने हो गए हैं नौकरी करते हुए।
1: हाँ ठीक है।

0: अब तो मुझे परमानेंट कर दीजिए ना।
1: ओके ओके।
0: और हाँ, अगले साल 4 इंक्रीमेंट से कम नहीं लूंगी।
1: अरे बाबा, तुम दिल लगाकर काम करो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा।
0: अब तो मैंने दिल लगाकर ही काम करने का फैसला कर लिया है।
1: सुनीता, ये क्या करती हो? दूर रखो ये बाहें, मैं कहता हूँ। सुनीता
0: सर,
1: हमारे दफ्तर में शरीफ लड़कियों की जरूरत है, तुम्हारी जैसी बदचलन और आवारा लड़कियों की नहीं। तुम्हें कल से दफ्तर आने की जरूरत नहीं है।
0: सर, मैं सर,

सर्वे आप सुन रहे थे जनाब आर के शर्मा का तहरीर करदा ड्रामा तीसरा डंक, पेशकश योगराज टंडन की थी। हिस्सा लेने वाले फनकार थे श्याम अरोड़ा, वीना होरा, आर के शर्मा, एस के बैक्टर, सरोज भार्गव, मधुलिका कौशिक, माला कुमार, संदीप सक्सेना और इकबाल वारसी। मुआविन थे सरफराज अहमद। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दिन के 12 बजे हैं, अब खबरें नशर होंगी।

ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। नेपाल में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से तकरीबन 162 अफराद की मौत हो गई। 300 भारतीय शहरों समेत 1000 से ज्यादा अफराद लापता हैं। भारत ने इमदादी सामान की दूसरी खेप रवाना की है। नेपाल में सैलाब आने के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त चौकसी बरती जा रही है। अमेरिका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के तनाजुर में आलमी सतह पर वीजा की सभी दरख्वास्तों पर रोक लगा दी है। मेटा अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए बच्चों को नुकसान पहुंचने से मुतालिक दावों को निपटाने के लिए $18 अरब अदा करेगा। और मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम की पोजीशन मुस्तहकम है। मेजबान टीम ने कोलंबो टेस्ट के पांचवें और आखिरी दिन 110 रन से ज्यादा बना लिए हैं। नेपाल तिब्बत के सरहदी इलाकों में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से हजारों अफराद मुबैना तौर पर लापता हो गए हैं, जिनमें तकरीबन 300 भारतीय सैयाह शामिल हैं। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल ने आज कहा कि सैलाब में मुबैना तौर पर लापता होने वाले अफराद में तकरीबन 300 भारतीय शहरी हैं। इस दौरान आज नेपाल पुलिस ने बताया कि कल तीन जिलों में भोटेकोशी दरिया में आए अचानक सैलाब की वजह से मची तबाही में मरने वालों की तादाद 162 हो गई है। तिब्बत से शुरू होते हुए ये सैलाब अपने साथ अहम पुलों को बहा ले गया। कई कस्बे और गांव तबाह हो गए और एक दर्जन पनबिजली प्रोजेक्ट दरहम बरहम होकर रह गए। मुकामी वक्त के मुताबिक कल सुबह 8:37 पर तिब्बत के खित्ते में जलजला आया और इसके 3 मिनट बाद अचानक सैलाब आने की इत्तला मिली। इससे ये जाहिर होता है कि जलजले के झटकों की वजह से ग्लेशियर फट पड़ा और इसके सबब ये सैलाब आया। चीन के सरकारी कंट्रोल वाले न्यूज चैनल के मुताबिक चीन के इलाके में भी 3 अफराद मारे गए जबकि 265 लापता हैं। हुकाम ने बताया है कि नेपाल के मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों से लगभग 100 अफराद को बचाया गया है। इनमें से 30 अफराद काठमांडू में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी अस्पताल में जेर इलाज हैं। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह से फोन पर बात की और उन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। भारत ने नेपाल के लिए इंसानी इमदाद और आफात में मदद के सामान की 37.5 टन की दूसरी खेप रवाना की है। इसमें दवाएं और गजाई पैकेट भी शामिल हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि इमदादी सामान लेकर दूसरी परवाज रवाना हुई है। भारत ने कल इंसानी इमदाद के तौर पर 10 टन सामान और जरूरी दवाएं रवाना की थी। काठमांडू में भारतीय सिफारतखाने ने इमदाद बहम पहुंचाने और भारतीय शहरों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए इमरजेंसी नंबर

तरीके हैं। बाजू में भी भारतीय सफारतखाने ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिस पर व्हाट्सएप के जरिए राबता कायम किया जा सकता है। जो भारतीय शहरी लापता हैं उनमें से कम 50 अफराद कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्री थे। भारतीय शहरियों के साथ साथ 2 दर्जन से ज्यादा मुल्कों के सयाह लापता बताए गए हैं। इनमें अमरीका, मलेशिया, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड शामिल हैं। नेपाल में सैलाब आने के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त चौकसी बरती जा रही है। मुकामी इंतजामिया के साथ साथ एनडीआरएफ सख्त निगरानी कर रही है और सरहदी इलाकों में बचाव और इमदादी टीमों को तैयार रखा गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से सूरत हाल और दरियाओं के पानी की सतह में मुमकिन इजाफे के बारे में फोन पर बात की। बिहार सरकार ने मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत गंडक दरिया से मुतसिल जिलों में चौकसी बरतने की हिदायत दी है। अलबत्ता गंडक दरिया में अब पानी उतरने का सिलसिला शुरू होने की इत्तला मिली है। बिहार सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो चौकस रहें, घबराएं नहीं और अफवाहों पर ध्यान न दें। इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे हुए रियासत के लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया है। नेपाल में शदीद सैलाब के तनाजुर में उत्तर प्रदेश के सरहदी जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के तनाजुर में आलमी सतह पर वीजा की सभी दरख्वास्तों पर रोक लगा दी है। अमरीकी महकमे खारजा के इस इकदाम का मकसद बंदिशों को सख्त बनाना और उन दरख्वास्त गुजारों के लिए रसाई को महदूद करना है जो बासलाहियत अमरीकियों के लिए मखसूस अवामी फायदों पर मुनहसिब हो सकते हैं। ट्रंप इंतजामिया ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रखी है और ग्रीन कार्ड्स जारी करने से मुतालिक जाब्तों को भी सख्त बना दिया है। इससे एक दिन पहले ही अमरीकी इंतजामिया ने H-1B वीजा के लिए $1,03,265 की नई दरख्वास्त फीस तजवीज की थी। अमरीका ने अपने शहरियों को मगरबी किनारे का सफर करने से पहले दोबारा गौर करने की हिदायत दी है। अमरीकी महकमे खारजा ने गुज़िश्ता एक साल के दौरान दहशतगर्दाना हमलों, तशद्दुद और इसराइल की फौज की जानिब से कार्रवाईयों में इजाफे के पेश नजर ये हिदायत जारी की है। महकमे खारजा ने अपने 4 सतही सफरी इंतबाही निजाम के तहत मगरबी किनारे को Level 3 पर रखा है। इसके अलावा इसराइल में काम करने वाले अमरीकी हुकूमत के मुलाजमीन और उनके अहले खाना की नकलो हरकत पर भी बंदिशें आयद की गई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वाशिंगटन के साथ तनाजा के खात्मे के लिए ईरान के मुजाकरात की मेज पर वापस आने की उनकी कोई मुकर्रा वक्त की हद नहीं है। एक प्राइवेट न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत दोबारा शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है। जनाब ट्रंप ने अपने मौकफ की वजाहत करते हुए कहा कि अमरीका बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है और उन्होंने ईरान की इकतसादी मुश्किल की तरफ इशारा किया। इस दौरान कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम आले सानी आज तेहरान पहुंचेंगे ताकि ईरानी हुकाम से मुलाकात करके कशीदगी को कम करने और बातचीत के लिए साजगार हालात पैदा करने के तरीकों पर तबादले ख्याल करेंगे। मेटा अपने प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए बच्चों को नुकसान पहुंचने से मुतालिक दावों को निपटाने के लिए $18 अरब अदा करेगा। ये कदम एक अहम तारीखी तस्वीर के तहत सामने आया है। अदालत की जानिब से मंजूर होने पर इस समझौते से मेटा के खिलाफ मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों की जानिब से दायर मुकदमात का सिलसिला बंद हो जाएगा। अलबत्त कंपनी को पूरे अमरीका में मुख्तलिफ अफराद और स्कूल डिस्ट्रिक्ट की जानिब से मुकदमात का सामना है। मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम की पोजीशन मुस्तहकम है। मेजबान टीम ने कोलंबो टेस्ट के पांचवें और आखिरी दिन 110 रन से ज्यादा बना लिए हैं। भारत ने 9 विकेट पर 503 रन का बड़ा स्कोर बनाकर अपनी पहली इनिंग्स खत्म करने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद श्रीलंका की पूरी टीम को 290 के स्कोर पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। इस तरह श्रीलंका को अब तक सिर्फ 16 रन की सबकत हासिल है और दूसरी इनिंग्स में उसके 4 खिलाड़ी आउट होने बाकी हैं। भारत ने पहला टेस्ट मैच

0: आचरण से जीता था। सिक्किम से ताल्लुक रखने वाले ग्रैंड मास्टर तिरुलोक सुब्बा को आलमी ताइक्वांडो पोमसे चैंपियनशिप में भारत की नुमाइंदगी करने के लिए मुंतखब किया गया है। बैन अलाक्वामी सतह पर मारूफ ताइक्वांडो खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर सिक्किम के तिरुलोक सुब्बा को जनूबी कोरिया के शहर चुनचांग में आलमी ताइक्वांडो पोमसे चैंपियनशिप में भारत की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया गया है। यह चैंपियनशिप 16 से 20 सितंबर तक होगी। सुब्बा मर्दों के अंडर 60 इंफरादी पोमसे और सीनियर जुमरे के टीम मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। इस सिलेक्शन से पहले सुब्बा ने जुलाई 2026 में महाराष्ट्र में मुनक़िद हुई नेशनल ताइक्वांडो पोमसे चैंपियनशिप में नेशनल टीम के लिए सोने का तमगा जीता था। खास खास खबरें एक बार फिर। नेपाल में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से तकरीबन 162 अफराद की मौत हो गई। 300 भारतीय शहरियों समेत 1000 से ज्यादा अफराद लापता हैं। भारत ने इमदादी सामान की दूसरी खेप रवाना की है। नेपाल में सैलाब आने के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त चौकसी बरती जा रही है। अमरीका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के तनाजुर में आलमी सतह पर वीजा की सभी दरख्वास्तों पर रोक लगा दी है। मेटा अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए बच्चों को नुकसान पहुंचने से मुतालिक दावों को निपटाने के लिए 18 अरब डॉलर अदा करेगा। और मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम की पोजीशन मुस्तहकम है। मेजबान टीम ने कोलंबो टेस्ट के पांचवें और आखिरी दिन 110 रन से ज्यादा बना लिए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। पेशी खिदमत है प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।
2: ये तस्वीर तो मेरी है।
3: नहीं, ये तस्वीर है जो हमेशा मेरे ख्यालों में आता है। और इससे मैं कहती हूँ

बावरे नैन फिल्म का नगमा आपने गीता दत्त और मुकेश की आवाजों में सुना। अब सुनिए मुकेश के साथ आशा भोसले को। फिल्म का नाम है जंगली।

कैलाश और लता मंगेशकर की आवाजों में ये नगमा अभी आप सुन रहे थे मदारी फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश है इन्हीं दोनों आवाजों में, फिल्म है मल्हार।

मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ये नगमा था मेरा घर मेरे बच्चे फिल्म से। और सुनिए गोरा और काला फिल्म का नगमा, आवाजें मुकेश और लता मंगेशकर की।

0: आप सुन रहे हैं फिल्मी दोगानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये प्रोग्राम अभी जारी है, वक्त हुआ है तारीख साज प्रोग्राम का। मौजू है रोशनाई।
1: इल्म फन की तखलीक के लिए कलम के अलावा रोशनाई भी दरकार होती है। आज की अहद में जबकि हजारों किस्म की रोशनाइयां दस्तियाब हैं, कोई मुश्किल से ही सोचेगा कि वो पहला इंसान कौन होगा जिसने रोशनाई ईजाद की होगी। हिंदुस्तान की कदीम तरीन तारीख में रोशनाई ईजाद करने वाले शख्स का नाम तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन कबल मसीह के अहद से हिंदुस्तान में रोशनाई के वजूद की शहादतें जरूर मिलती हैं। इससे साबित होता है कि हिंदुस्तान में फन तहरीर कदीम तरीन जमाने में मौजूद था। रोशनाई से मुतालिक अवलीन शहादत दो यूनानी मुसनिफों ने की है, नियरकॉस और क्यूकैटिस ने लिखा है कि ईसवी कैलेंडर शुरू होने से कबल हिंदुस्तान में रोशनाई का इस्तेमाल आम था। इन तहरीरी शवाहिद के अलावा दूसरी सदी कबल मसीह में बने हुए अंधेर के स्तूप में एक बर्तन पर रोशनाई से तहरीर का बराह रास्त नमूना भी दस्तयाब हुआ है। कंधा करने से कबल अशोक के कुछ फरमान रोशनाई के नुक्तों के जरिए हरूफ बनाकर लिखे गए थे। ईसवी कैलेंडर के इब्तदाई दौर में गर्मी और गोष्ठी दस्तावेजी जो रोशनाई से तहरीर की हुई थी हिंदुस्तान में कई जगह दरियाफ्त हुई थी। कदीम हिंदुस्तान में कई रंगों की रोशनाई इस्तेमाल होती थी जिनमें काला रंग आम था। दूसरे रंगों में सुर्ख, सुनहरी और रुपैली रंगों की रोशनाई शामिल थी। कुशान अहद में ऐसी स्याही भी इस्तेमाल होती थी जो आज के कार्बन पेपर की तरह एक से ज्यादा नकलें तैयार करने में काम आती थी। सुर्ख रोशनाई का इस्तेमाल वेदों में हरूफ इल्लत की निशानदेही के लिए और हाशिए बनाने के लिए होता था। कुंडली बनाने वाले नजूमी सुर्ख दायरा सुर्ख रोशनाई से बनाते थे। कदीम अहद के हिंदुस्तानी उमरा और साहिबान दौलत सुनहरी और रुपैली रोशनाई से

अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में ये नगमा था दागदत फायर फिल्म से। अब सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक को, फिल्म है मुझसे शादी करोगी।

0: इस दो गाने के साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप फैसल खान से आलमी खबरें सुनिए। नेपाल में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से तकरीबन 162 अफराद की मौत हो गई। 300 भारतीय शहरियों समेत 1000 से ज्यादा अफराद लापता है। भारत ने इमदादी सामान की दूसरी खेप रवाना की। नेपाल में सैलाब आने के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त चौकसी बरती जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत 21वीं सदी में भारत के लिए खेलों का एक जदीद माहौलियाती निजाम बनाने के लिए पूरी तरह प्रयत्न है। अमरीका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के तनाजुर में आलमी सतह पर वीजा की सभी दरखास्तों पर रोक लगा दी है। मेटा अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए बच्चों को नुकसान पहुंचने से मुतालिक दावों को निपटाने के लिए 18 अरब डॉलर अदा करेगा। और मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम की पोजीशन मुस्तहकम है। अब खबरें तफसील से। नेपाल तिब्बत के सरहदी इलाकों में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से हजारों अफराद मुबैना तौर पर लापता हो गए हैं, जिनमें तकरीबन 300 भारतीय सैलाब शामिल हैं। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल ने आज कहा कि सैलाब में मुबैना तौर पर लापता होने वाले अफराद में तकरीबन 300 भारतीय शहरी हैं। इस दौरान आज नेपाल पुलिस ने बताया कि कल 3 जिलों में भोटेकोशी दरिया में आए अचानक सैलाब की वजह से मची तबाही में मरने वालों की तादाद 162 हो गई है। तिब्बत से शुरू होते हुए ये सैलाब अपने साथ अहम पुलों को बहा ले गया। कई कस्बे और गांव तबाह हो गए और एक दर्जन पनबिजली प्रोजेक्ट दरहम होकर रह गए। मकामी वक्त के मुताबिक कल सुबह 8:37 पर तिब्बत के खित्ते में जलजला आया और उसके 3 मिनट बाद अचानक सैलाब आने की इत्तला मिली। इससे यह जाहिर होता है कि जलजले के झटकों की वजह से ग्लेशियर फट पड़ा और इसके सबब यह सैलाब आया। और चीन के सरकारी कंट्रोल वाले न्यूज चैनल के मुताबिक चीन के इलाके में भी 3 अफराद मारे गए जबकि 265 लापता हैं। हुकम ने बताया कि नेपाल के मुख्तलिफ मुतासर इलाकों से लगभग 100 अफराद को बचा लिया गया है। इनमें से 30 अफराद काठमांडू में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी अस्पताल में जेर इलाज हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वज़ीर आज़म बालेन्द्र शाह से फोन पर बात की और उन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। भारत ने नेपाल के लिए इंसानी इमदाद और आफात में मदद के सामान की 37.5 टन की दूसरी खेप रवाना की। इसमें दवाएं और गजाई पैकेट भी शामिल हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने बताया कि इमदादी सामान लेकर दूसरी प्रवास रवाना हुई है। भारत ने कल इंसानी इमदाद के तौर पर 10 टन सामान जरूरी दवाएं रवाना की थी। काठमांडू में भारतीय सफारतखाने ने इमदाद बयान पहुंचाने और भारतीय शहरियों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। पेजिंग में भी भारतीय सफारतखाने ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिस पर व्हाट्सएप के जरिए राब्ता कायम किया जा सकता है। जो भारतीय शहरी लापता हैं उनमें से कम से कम 50 अफराद कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्री थे। भारतीय शहरियों के साथ साथ 2 दर्जन से ज्यादा मुल्कों के सैयाह लापता बताए गए हैं। इनमें अमरीका, मलेशिया, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड शामिल हैं। नेपाल में सैलाब

0: के इतराजों में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त चौकसी बरती जा रही है। मुकामी इंतजामिया के साथ साथ एनडीआरएफ सख्त निगरानी कर रही है और सरहदी इलाकों में बचाव और इमदादी टीमों को तैयार रखा गया है। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से सूरतेहाल और दरियाओं के पानी की सतह में मुमकिन इजाफे के बारे में फोन पर बात की। बिहार सरकार ने मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत गंडक दरिया से मुत्तसिल जिलों में चौकसी बरतने की हिदायत दी है। अलबत्ता गंडक दरिया में अब पानी उतरने का सिलसिला शुरू होने की इत्तला मिली है। बिहार सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो चौकस रहें, घबराएं नहीं और अफवाहों पर ध्यान न दें। इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे हुए रियासत के लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया है। नेपाल में शदीद सैलाब के तनाजुर में उत्तर प्रदेश के सरहदी जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत के लिए खेलों का जदीद इकोसिस्टम तैयार करने के लिए हुकूमत पूरी तरह पुरज़्म है। वजीर आजम ने कहा कि खेलों की यूनिवर्सिटियों से जदीद तरबियती मराकज तक पूरे मुल्क में ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जहां हुनरमंद खिलाड़ियों को हर सतह पर ताउन फराहम किया जाएगा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि खेल सिर्फ तमगे जीतने तक ही महदूद नहीं है बल्कि ये तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में नौजवानों और खेल की ताकत को मुत्तहिद करने का एक मिशन है। उन्होंने कहा कि हर जिले में आलमी खेलों के नक्शे पर चमकने की सलाहियत मौजूद है। मेरा युवा भारत माई भारत के जरिए खेलों के कौमी दिन 2026 के हिस्से के तौर पर यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। अमरीका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के तनाजुर में आलमी सतह पर वीजा की सभी दरखास्तों पर रोक लगा दी है। अमरीकी महकमे खारजा के इस इकदाम का मकसद बंदिशों को सख्त बनाना और उन दरखास्त गुजारों के लिए रसाई को महदूद करना है जो बसलाहियत अमरीकियों के लिए मखसूस अवामी फायदों पर मुनहसर हो सकते हैं। ट्रंप इंतजामिया ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रखी है और ग्रीन कार्ड जारी करने से मुतालिक जाब्तों को भी सख्त बना दिया है। इससे एक दिन पहले ही अमरीकी इंतजामिया ने H-1B वीजा के लिए 1,03,265 डॉलर की नई दरखास्त फीस तजवीज की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वाशिंगटन के साथ तनाजे के खात्मे के लिए ईरान के मुजाकरात की मेज पर वापस आने की उनकी कोई मुकर्रर वक्त की हद नहीं है। एक प्राइवेट न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत दोबारा शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है। जनाब ट्रंप ने अपने मौकफ की वजाहत करते हुए कहा कि अमरीका बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है और उन्होंने ईरान की इकतसादी मुश्किल की तरफ इशारा किया। इस दौरान कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम आल सानी आज तेहरान पहुंचेंगे ताकि ईरानी हुक्काम से मुलाकात करके कशीदगी को कम करने और बातचीत के लिए साजगार हालात पैदा करने के तौर तरीकों पर तवज्जो ख्याल करेंगे। अमरीका ने अपने शहरियों को मगरबी किनारे का सफर करने से पहले दोबारा गौर करने की हिदायत दी है। अमरीकी महकमे खारजा ने गुज़श्ता एक साल के दौरान दहशतगर्दाना हमलों, तशद्दुद और इसराइल की फौज की जानिब से कार्रवाईयों में इजाफे के पेश नजर यह हिदायत जारी की है। महकमे खारजा ने अपने चार सतही सफरी इंतबाही निजाम के तहत मगरबी किनारे को लेवल 3 पर रखा है। मेटा अपने प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए बच्चों को नुकसान पहुंचने से मुतालिक दावों को निपटाने के लिए 18 अरब डॉलर अदा करेगा। यह कदम एक अहम तारीखी तस्वीर के तहत सामने आया है। अदालत की जानिब से मंजूर होने पर इस समझौते से मेटा के खिलाफ मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों की जानिब से दायर मुकदमात का सिलसिला बंद हो जाएगा। अलबत्ता कंपनी को पूरे अमरीका में मुख्तलिफ अफराद और स्कूल डिस्ट्रिक्ट की जानिब से मुकदमात का सामना है। مردوں کی کرکٹ میں کولمبو میں سری لنکا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں بھارتی ٹیم کی پوزیشن مستحکم ہے. میزبان ٹیم نے کولمبو ٹیسٹ کے پانچویں اور آخری دن کے لنچ تک کا کھیل ختم ہونے تک 116 رن کی سبقت لے لی تھی. سری لنکا کی طرف سے سونل دنوشا نے نصف سینچری بنائی. پانچویں دن کا میچ شروع ہونے پر میزبان ٹیم نے 6 وکٹ کے نقصان پر 229 رن کے آگے کھیلنا شروع کیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. نیپال میں اچانک زبردست سیلاب آنے سے تقریباً 162 افراد کی موت ہو گئی. 300 بھارتی شہریوں سمیت 1000 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں. بھارت نے امدادی سامان کی دوسری کھیپ روانہ کی ہے. نیپال میں سیلاب آنے کے تناظر میں بہار اور اتر پردیش میں سخت چوکسی برتی جا رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ حکومت 21ویں صدی میں بھارت کے لیے کھیلوں کا ایک جدید ماحولیاتی نظام بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے. امریکہ نے صدر ٹرمپ کی امیگریشن کارروائی کے تناظر میں عالمی سطح پر ویزا کی سبھی درخواستوں پر روک لگا دی ہے. اور مردوں کی کرکٹ میں کولمبو میں سری لنکا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں بھارتی ٹیم کی پوزیشن مستحکم ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज पर हमें आप सुन रहे हैं। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। नेपाल में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से तकरीबन 162 अफराद की मौत हो गई। 300 भारतीय शहरियों समेत 1000 से ज्यादा अफराद लापता हैं। भारत ने इमदादी सामान की दूसरी खेप रवाना की है। नेपाल में सैलाब आने के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त

चौकसी बरती जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत 21वीं सदी में भारत के लिए खेलों का एक जदीद माहौलियाती निज़ाम बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। अमरीका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के तनाजुर में आलमी सतह पर वीजा की सभी दरख्वास्तों पर रोक लगा दी है। मेटा अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए बच्चों को नुकसान पहुंचने से मुतालिक दावों को निपटाने के लिए 18 अरब डॉलर अदा करेगा। और मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम की पोजीशन मुस्तहकम है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर अभी तक आप सुन रहे थे उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दिन के 1:15 होने को है। पहली मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। दीगर प्रोग्रामों के अलावा 3:30 पर आप सुन सकेंगे मुबाहिसा अंदाज़े नज़र प्रोग्राम के तहत। फिलहाल दीजिए इजाजत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
0: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं वर्ष 2001 में रिलीज हुई फिल्म अजनबी के बारे में। इस फिल्म का निर्देशन अब्बास मस्तान ने किया है और विजय गलानी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, बॉबी देओल, करीना कपूर और बिपाशा बसु शामिल हैं। साथ ही जॉनी लिवर, दलीप ताहिल, नरेंद्र बेदी और शरद सक्सेना सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म 1992 की अमेरिकी थ्रिलर फिल्म कॉन्सेंटिंग एडल्ट्स का अनौपचारिक रूपांतरण है। यह फिल्म एक्शन, सस्पेंस और ड्रामा से भरपूर है।

श्रोताओं, 21 सितंबर 2001 को जब यह फिल्म अजनबी रिलीज हुई तब फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षाएं मिली, जिसमें अक्षय कुमार और बिपाशा बासु के अभिनय की खूब प्रशंसा की गई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रूप से सफल रही और 17 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले 31 करोड़ की कमाई की। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार को नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला, साथ ही बिपाशा बासु को सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू का फिल्मफेयर अवार्ड मिला। और श्रोताओं, रही बात इस फिल्म के संगीत की, तो इसे संगीत अनु मल्लिक जी ने दिया है और गीत समीर के लिखे हैं, और फिल्म के सारे गीत आज भी उतना ही पॉपुलर हैं जितना कि पहले था।

श्रोताओं, अजनबी फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो राज यानी बॉबी देओल और प्रिया यानी करीना कपूर शादी के बाद स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक दूसरे इंडियन कपल विक्रम यानी अक्षय कुमार और सोनिया यानी बिपाशा बासु से होती है। देखते ही देखते दोनों जोड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब विक्रम वाइफ स्वैपिंग यानी पत्नी की अदला बदली का प्रस्ताव रखता है, जिससे राज नाराज हो जाता है। इसके बाद एक सुबह सोनिया मृत पाई जाती है और इसका इल्जाम राज पर आ जाता है। राज अपनी बेगुनाही साबित करने और सच्चाई का पता लगाने के लिए वहां से भाग निकलता है। कहानी के अंत में विक्रम हिंसक हो जाता है और प्रिया का पीछा करता है ताकि उसे मार सके। राज प्रिया को बचा लेता है और विक्रम और राज की लड़ाई में क्रूज के लंगर से विक्रम की मौत हो जाती है। इसके बाद राज निर्दोष साबित हो जाता है और राज और प्रिया वापस भारत लौट आते हैं।

बताऊं, इस फिल्म में विक्रम के नेगेटिव रोल के लिए पहले शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन नेगेटिव रोल के लिए उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद ही ये किरदार अक्षय कुमार को ऑफर किया गया, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया और उन्हें इसके लिए काफी प्रशंसा मिली और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। श्रोताओं, यह फिल्म बिपाशा बासु के लिए भी टर्निंग प्वाइंट रही और पहली ही फिल्म में डेब्यू करने के बाद उन्हें पहचान मिल गई।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। इस बुलेटिन में अमन देव पहला खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार 21वीं सदी के भारत लिए आधुनिक खेड प्रणाली बनाने लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। नेपाल में अचानक आए हड़ा 160 तो वध लोगों की मौत हो गई है। लापता हुए हजारा लोगों की लगभग 300 भारतीय सैलानी शामिल ने। भारतीय नेपाल में हड़ प्रभावित लोगों ने 37 टन तो वध मानवीय सहायता से राहत समग्री की दूजी खेप भेजी है। गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह अज अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेडां दी तैयारियां दी समीक्षा करनगे। केंद्रीय वाणिज्य ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सैमी कंडक्टर इलैक्ट्रॉनिक हिस्से पुर्जा अते स्टील निर्माण दे खेत्र च भारत जापान साझेदारी वधाउण बारे चर्चा कीती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार 21वीं सदी के भारत लिए एक आधुनिक खेड प्रणाली बनाने लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेड यूनिवर्सिटियों तो लैके आधुनिक सिखलाई केन्द्र तक देश भर में एक अजिहा खेड तंत्र विकसित किया जा रहा है जिस नाल हर पद्धर के खिडारियों की प्रतिभा को सहयोग मिले।
2: भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: आज वीडियो कॉन्फ्रेंस राही खेलो इंडिया संवाद को संबोधन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि खेडां सिर्फ तमगे जीतने तक सीमित नहीं ने, यह देश की खेड प्रतिभा के नौजवानों को एक विकसित भारत के निर्माण नाल जोड़ने की मुहिम है।
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की फसील तो 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों में खेड प्रतिभा की खोज करने लिए एक वड्डी प्रतिभा खोज मुहिम का ऐलान किया है। श्री मोदी ने खुशी प्रगट की कि खेडां अज भारत विच एक बेहतर करियर अते पेशे वजो उभर रही ने। श्री मोदी ने कहा कि खेडां ना सिर्फ एक चैंपियन बनना सगो एक बेहतर मुकाबलेबाज बनना भी सिखाउंदियां ने। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया संवाद सिर्फ खेडां ते चर्चा करन दा प्रोग्राम नहीं सगो गलबात दा एक मंच है जिथे हर विचार देश के खेड खेत्र नूं एक नवी दिशा दे सकदा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नौजवानों की शक्ति राही पैदा किए गए ये नवे विचार एक विकसित भारत के संकल्प नूं पूरा करन लई शक्ति बन गए। इस मौके पर नौजवान मामलों के खेड मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई हेठ खेल एक राष्ट्रीय तरजीह नौजवानों के शक्तिकरण लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गई ने। उन्होंने कहा कि भारत की खेड प्रणाली हुण बुनियादी ढांचे के तमगियां तक सीमित नहीं है।
3: हमारा स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को, लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। प्रधानमंत्री जी, सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले।
1: उन्होंने कहा कि सरकार का टीचा नौजवानों को विकसित भारत वाल यात्रा विच सरगर्म भागीदार बनाना है। पंजाब विच राष्ट्रीय खेड दिवस 2026 के संबंध में सूबे ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दी 51 सिक्ख्या संस्थावां दे हजारां विद्यार्थियों अते एन

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत 21वीं सदी में भारत के लिए खेलों के जदीद इकोसिस्टम के क़याम के तय अहद बस्ता है। वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब किया। नेपाल में आए जबरदस्त अचानक सैलाब में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 300 भारतीयों समेत हजारों अफराद लापता हैं। भारत ने राहत के साजो सामान की दूसरी खेप रवाना की है। बिहार और उत्तर प्रदेश में सैलाब जैसी किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। भारतीय महकमा समियात ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और शिमाल मचल की रियासतों में हफ्ते के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग के खात्मे की खातिर मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने के लिए ईरान के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है। और मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो में जारी दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका ने भारत पर 146 रन की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी में भारत के लिए खेलों का जदीद इकोसिस्टम तैयार करने के लिए हुकूमत पूरी तरह पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खेलों की यूनिवर्सिटियों से जदीद तरबियती मराकज़ तक पूरे मुल्क में ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जहां हुनरमंद खिलाड़ियों को हर सतह पर तआवुन फराहम किया जाएगा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि खेल सिर्फ तमगे जीतने तक महदूद नहीं है बल्कि ये तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में नौजवानों और खेल की ताकत को मुत्तहिद करने का एक मिशन है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हर जिले में आलमी खेलों के नक्शे पर चमकने की सलाहियत मौजूद है।
1: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: नेपाल तिब्बत के सरहदी इलाकों में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से हजारों अफराद मुबैना तौर पर लापता हो गए हैं जिनमें तकरीबन 300 भारतीय सयाह भी शामिल हैं। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल ने आज कहा कि सैलाब में मुबैना तौर पर लापता होने वाले अफराद में तकरीबन 300 भारतीय शहरी हैं। इस दौरान आज नेपाल पुलिस ने बताया कि कल 3 जिलों में बोडेक्षी दरिया में आए अचानक सैलाब की वजह से मची तबाही में मरने वालों की तादाद 162 हो गई है। तिब्बत से शुरू हुआ यह सैलाब अपने साथ अहम पुलों को बहा ले गया, कई कस्बे और गांव तबाह हो गए और एक दर्जन पन बिजली प्रोजेक्ट दरहम बरहम होकर रह गए। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल ने पार्लियामेंट को बताया कि मकानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 8:37 पर तिब्बत के खित्ते में जलजला आया और इसके 3 मिनट बाद अचानक सैलाब आने की इत्तला मिली। इससे यह जाहिर होता है कि जलजले के झटकों की वजह से ग्लेशियर फट पड़ा और इसके सबब यह सैलाब आया। नेपाल की कुदरती आफात से निपटने वाली कौमी अथॉरिटी ने बताया कि नेपाल तिब्बत सरहद पर लेंडे नदी के तुम्यानी में रसुआ जिले के तिमूर में भोते कुशी होता हुआ तिरुशी दरिया में यह सैलाब दाखिल हुआ। इसके बाद ये दरिया के रास्ते दीगर जिलों में दाखिल हो गया। उधर चीन के सरकारी कंट्रोल वाले न्यूज चैनल के मुताबिक चीन के इलाके में भी 3 अफराद मारे गए हैं जबकि 265 लापता हो गए हैं। हुकाम ने बताया कि नेपाल के मुख्तलिफ मुतासर इलाकों से लगभग 100 अफराद को बचा लिया गया है। इनमें 30 अफराद काठमांडू में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में जेर इलाज हैं। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह से फोन पर बात की और उन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। भारत ने नेपाल के लिए इंसानी इमदाद और आफात में मदद के सामान की 37.5

0: 5 टन की दूसरी खेप रवाना की है। इसमें दवाएं और गजाई पैकेट भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि इमदादी सामान लेकर दूसरी परवाज रवाना हुई है। भारत ने कल इंसानी इमदाद के तौर पर 10 टन साजो सामान और जरूरी दवाएं रवाना की थी। काठमांडू में भारतीय सफारतखाने ने इमदाद पहुंचाने और भारतीय शहरियों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। बीजिंग में भी भारतीय सफारतखाने ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर व्हाट्सएप के जरिए राब्ता कायम किया जा सकता है। जो भारतीय शहरी लापता हैं, उनमें से कम अज कम 50 अफराद कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्री थे। भारतीय शहरियों के साथ साथ 2 दर्जन से ज्यादा मुल्कों के सयाह लापता बताए जाते हैं। इनमें अमरीका, मलेशिया, बर्तानिया, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड शामिल हैं। इधर कुदरती आफात से निपटने की कौमी फोर्स एनडीआरएफ ने आज कहा कि नेपाल में आए तबाहकुन सैलाब से बिहार और उत्तर प्रदेश के सरहदी इलाकों पर कोई असर नहीं पड़ा है। तहम बिहार और उत्तर प्रदेश की रियासती हुकूमतों के साथ तालमेल के साथ सूरत हाल पर लगातार निगाह रखी जा रही है। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर जनरल नरेंद्र सिंह मुंडेला ने बताया कि दोनों रियासतों में एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें 11 टीमों को उत्तर प्रदेश और 9 टीमों को बिहार में तैनात किया गया है। ये टीमें सैलाब या पानी भर जाने की सूरत में इनखिला, राहत और बचाव कार्रवाईयों के लिए तैयार हैं।
1: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी, जो सीडब्ल्यूसी का भी इम्पोर्ट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इसकी स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
0: पड़ोसी मुल्क नेपाल के कई जिलों में तबाहकुन सैलाब आने के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त चौकसी बरती जा रही है। मुकामी इंतजामिया के साथ साथ एनडीआरएफ सख्त निगरानी कर रही है और सरहदी इलाकों में बचाव और इमदादी टीमों को तैयार रखा गया है। बिहार हुकूमत ने मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत गंडक नदी से मुत्तसिल जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। उत्तर प्रदेश में रियासती हुकूमत ने नेपाल में फंसे लोगों की जानकारी हासिल करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया है। भारत 18वीं ब्रिक्स सरबरा कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। ये कॉन्फ्रेंस 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनाकिद की जाएगी। इस छोटी कॉन्फ्रेंस में ब्रिक्स मेंबर मुल्कों और शराकतदार और मधु ममालिक के लीडरान शिरकत करेंगे। भारत की ब्रिक्स सदारत की थीम लचक के लिए तामीर, इख्तरा, ताउन और पायदारी से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंसानियत पहले के जज्बे पर मबनी अवाम मरकूज विजन की अक्कासी होती है। इसके अलावा लीडरान ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान मुश्तरक तरजीहात पर ताउन को बढ़ाने पर अपने तबादले ख्याल करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और शुमाल मशरकी रियासतों में हफ्ते के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा ओडिशा, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी कल तक मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। वहीं ओडिशा के मुख्तलिफ मकामात पर हफ्ते और इतवार के रोज शदीद बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने मजीद बताया कि अंडमान और निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और अकाराईकल में अगले 2 दिन के दौरान गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वाशिंगटन के साथ तनाजे के खात्मे के लिए ईरान की मुजाकिरात की मेज पर वापस आने की उनकी कोई मुकर्रर वक्त की हद नहीं है। प्राइवेट न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत दोबारा शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है। जनाब ट्रंप ने अपने मौकफ की वजाहत करते हुए कहा कि अमरीका बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है और उन्होंने ईरान की इकतसादी मुश्किल की जानिब इशारा किया। इस दौरान खतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल सानी आज तेहरान पहुंचेंगे ताकि ईरानी हुकाम से मुलाकात करके कशीदगी को कम करने और बातचीत के लिए साजगार हालात पैदा करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया जा सके। मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका ने दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में भारत के खिलाफ 146 रन की सबकत बना ली है। श्रीलंका की टीम ने अब से कुछ देर पहले तक 8 विकेट के नुकसान पर 359 रन बना लिए थे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत 21वीं सदी में भारत के लिए खेलों के जदीद इकोसिस्टम के कायम के तहत बसता है। वजीर आजम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब किया। नेपाल में आए जबरदस्त अचानक सैलाब में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 300 भारतीयों समेत हजारों अफराद लापता है। भारत ने राहत

0: نیازو سامان کی 217 روانہ کی ہے۔ بہار اور اتر پردیش میں سیلاب جیسی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے این ڈی آر ایف کی ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ بھارتی موسمیات نے بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور شمال مشرق ریاستوں میں ہفتے کے روز تک شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کی خاطر مذاکراتی میز پر واپس آنے کے لیے ایران کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. Addresses Khelo India dialogue through video conferencing. 100 Indians among thousands missing in massive flash flood in Nepal, over 160 dead. India sends second tranche of relief materials. NDRF teams deployed in Bihar and Uttar Pradesh to respond to any flood-like situation. Forecast of heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. U.S. President Donald Trump says no fixed timeline for Iran to return to negotiating table. And in men's cricket, Sri Lanka extend their lead over India to 147 runs in second innings of the second and final test at Colombo. Mr. Narendra Modi has said the government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. He said from sports universities to modern training centers, an ecosystem is being developed across the country where talent receives support at every stage. Addressing the Khelo India dialogue through video conferencing today, Mr. Modi said, sports is not limited merely to winning medals. Rather, it is a mission to unite India's sporting prowess and youth power in the building of a developed India.
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
1: He said every district has the potential to shine on the global sports map. The Prime Minister said he had announced from the ramparts of the Red Fort a big talent hunt to identify kids from 5 to 15 years of age in sports.
2: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है, और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
1: The Prime Minister expressed happiness that today sports has emerged as an excellent career and profession in India. Mr. Modi said sports does not just teach to become champions, but also to become better competitors. He said the Khelo India Samvad is not merely a program for discussing sports, but it is a platform for dialogue where every single idea can give a new direction to the nation's sports vision.
2: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: Speaking on the occasion, Union Minister for Youth Affairs and Sports, Mansukh Mandavia said, under the leadership of Prime Minister Modi, sports has emerged as a national priority and an important instrument of youth empowerment.
3: Our sports ecosystem, India's sports ecosystem, is not limited to infrastructure and medals. From connecting millions of

10 northeastern states till Saturday. U.S. President Donald Trump says no fixed timeline for Iran to return to negotiating table. And in men's cricket, Sri Lanka extends their lead over India to 151 runs in second innings of the second and final test at Colombo. With that, we end the midday news. नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़

0: नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत की कोई निश्चित समय सीमा नहीं। और कोलंबो में दूसरे तथा अंतिम टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 151 रन की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खेलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खेलना मतलब व्यक्तित्व का खेलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी।
1: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
0: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है।
2: स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को, लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना साबित करने का समान मंच मिले।
0: ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया था। देश भर में राज्यों और

0: मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत को अपनी खेल परंपराओं को एक जीवंत खेल संस्कृति में विकसित करना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली के हिंदू कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद में हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक मजबूत खेल तंत्र विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
1: इंटरनेशनल लेवल में हमारा मेडल्स बढ़ रहे हैं। पहले तो हम एक मुश्किल से दो मेडल मिलते थे, अब तो हम हर कंपटीशन, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, और मल्टीपल मेडल्स जीतते हैं इंडियन प्लेयर्स। ये तो बहुत फख्र की बात है।
0: कश्मीर के सभी 10 जिलों के हजारों छात्रों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल माध्यम से आयोजित खेलो इंडिया संवाद में भाग लिया। प्रतिभागियों ने युवा पीढ़ी को खेल अपनाने और खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। चंडीगढ़ के 51 शिक्षण संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों और राष्ट्रीय खेल सेवा स्वयंसेवकों ने आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पठानकोट स्थित आर्य महिला महाविद्यालय की छात्रा शिव्या ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश हमेशा युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित रूप से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद के सर्किट हाउस एनेक्सी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृहमंत्री गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से टी सीरीज टैंकों के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पन बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी का कारण भूकंप के झटकों से ग्लेशियर फट जाने को माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है +9779851316807 और +9779701075000। विश्व बैंक ने भी प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। इसके अलावा नेपाल में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी है। डॉ जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव और काठमांडू और पेचिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पर्यटन संचालकों और परियोजना अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राहत सहायता प्रदान करने के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया

0: खुफिया बल एनडीआरएफ ने कहा है कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 20 टीम तैनात की गई है, जिनमें से 9 बिहार में और 11 उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बल की एक टीम तैनात की गई है।
1: छोटी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। जो सीडब्ल्यूसी का भी इम्पोर्ट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
0: इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार और रविवार को ओडिशा के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर अपने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी न करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि डीए अभी तक जारी नहीं होने के कारण 3 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है। उन्होंने ईरान की आर्थिक मुश्किलों का भी उल्लेख किया। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी आज ईरान पहुंचेंगे। वे ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। श्रीलंका ने चायकाल तक दूसरी पारी में 155 रन की बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को उनकी पहली पारी में 290 रन पर ऑल आउट करके फॉलो ऑन दिया है। दो मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 143 अंक गिरकर 77,330 जबकि निफ्टी 36 अंक की गिरावट के साथ 24,171 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत 1,000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और कोलंबो में दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 155 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, टीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। अश्रोताओं, अब कार्यक्रम प्रस्तुत है एक ही कलाकार। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ हूं ये कार्यक्रम लेके, आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सिनेमा की दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं दोस्तों, जिन्हें किसी एक किरदार, किसी एक दौर या किसी एक पहचान में बांधना मुश्किल हो जाता है। कभी चुलबुली लड़की, कभी शानदार डांसर, तो कभी कॉमेडी के रंग में रंगने वाली, कभी खलनायिका के रूप में दिखाई देने वाली और कभी माँ की ममता के रूप में, और कभी ऐसे चरित्र अभिनेत्री जिसकी मौजूदगी से पूरा जो फिल्म का सीन होता है वो यादगार बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसी एक बहुमुखी अदाकारा की जिनका नाम है अरुणा ईरानी। दोस्तों, अरुणा ईरानी का फिल्मी सफर बाल कलाकार के रूप में शुरू हुआ था। 1961 में फिल्म गंगा जमुना में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। उस समय उनकी उम्र करीब 9 वर्ष रही होगी। इसके बाद अनपढ़, जहां आरा, फर्ज, उपकार और आया सावन झूमके जैसी फिल्मों में उन्होंने छोटे बड़े किरदार निभाए। यानी जिस उम्र में बच्चे स्कूल की दुनिया में होते हैं ना दोस्तों, वो कैमरा के सामने अपनी पहचान बनाना शुरू कर चुकी थी। लीजिए अब इस सफर को संगीत के साथ आगे बढ़ाते हैं।

दोस्तों साल था 1971 और फिल्म आई थी कारवां। वैसे तो फिल्म में थे आशा पारेख और जितेंद्र, लेकिन अरुणा रानी ने भी अपने डांस और स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों का इतना ध्यान खींचा था दोस्तों कि शायद हीरो हीरोइन को तो सभी याद रखते हैं, लेकिन उस फिल्म में अरुणा रानी को बहुत याद रखा गया था और खासकर गीत चढ़ती जवानी मेरी चाल बस्तानी। अरुणा रानी को एक अलग पहचान मिली इस फिल्म से। इन गीतों में उनका जो डांस था, उनका अंदाज और कैमरे के सामने उनकी जो ऊर्जा आज भी याद की जाती है। कारवां उनके करियर के महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक गिनी जाती है।

दोस्तों, ये वही दौर था जब अरुणा ईरानी सिर्फ सहायक अभिनेत्री नहीं रही, बल्कि वह अपनी अलग पहचान बना चुकी थी। अरुणा ईरानी के करियर का एक दिलचस्प अध्याय है महमूद जी। जी हाँ, उनके साथ उनका काम। दोनों ने औलाद, हमजोली, जवाब, मन मंदिर, नया जमाना जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। महमूद की कॉमेडी और अरुणा ईरानी की सहज अभिनय शैली ने कई फिल्मों के दृश्यों को यादगार बना दिया था। साथ ही उनकी फिल्मों में अभिनय के साथ साथ कॉमेडी और डांस का भी एक खास स्थान रहता था।

दोस्तों, अगर अरुणा ईरानी की स्क्रीन इमेज की बात हो जाती है तो संगीत की बात ना हो तो बात अधूरी ही रह जाती है। बात करें 70 के दशक की फिल्मों की तो एक तरफ रोमांस था, दूसरी तरफ एक्शन बढ़ रहा था, कॉमेडी का अपना मजबूत स्थान था और चरित्र भूमिकाएं भी तेजी से महत्वपूर्ण हो रही थी। इसी दौर में अरुणा ईरानी ने अलग अलग तरह के किरदार निभाए, जैसे बॉम्बे टू गोवा में, गरम मसाला में, दो फूल, बॉबी और फकीरा, सरगम जैसी फिल्मों में उनकी मौजूदगी दिखाई दी। खास बात यह थी कि वह किसी एक तरह की भूमिका में सीमित नहीं रही, कभी डांस, कभी हास्य, कभी गंभीर और कभी एक नकारात्मक शेड में।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से।

सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से, सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से, कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से।

0: आशिक मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के चाहे खेलो चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे
1: लिए। दोस्तों बात करें 1973 की फिल्म बॉबी, तो हिंदी सिनेमा की बेहद लोकप्रिय फिल्म थी ये। राज कपूर की इस फिल्म में ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया की प्रेम कहानी केंद्र में थी, लेकिन फिल्म के सहायक कलाकारों में थी अरुणा ईरानी। यही अरुणा ईरानी की खासियत थी कि वह फिल्म में मुख्य नायिका ना होकर भी अपनी उपस्थिति उस फिल्म में और दर्शकों के बीच दर्ज करा देती थी।

0: मैं दुश्मन तो नहीं।
1: दोस्तों, एक ऐसा नाम जिसे हिंदी सिनेमा के इतिहास में किसी एक भूमिका में बांध कर रहना नामुमकिन है, उनके लिए बस इतना ही कहना काफी होगा। चेहरा भले ही हर फिल्म में अलग था, लेकिन अभिनय की पहचान हमेशा वही रही

इसी गीत के साथ आज का ये एक ही कलाकार कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप अब अपनी दोस्त शिल्पा को अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।

मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस के नशरियात। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी। आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप फैसल खान से खबरें सुनिए। नेपाल में आए जबरदस्त अचानक सैलाब में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 300 भारतीयों समेत हजारों अफराद लापता हैं। भारत ने राहत सारो सामान की दूसरी खेप रवाना की है। बिहार और उत्तर प्रदेश में सैलाब जैसी किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत 21वीं सदी में भारत के लिए खेल के जदीद इकोसिस्टम के कयाम के तई अहम बस्ता है। वज़ीर आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब किया और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग के खात्मे की खातिर मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने के लिए ईरान के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है। अब खबरें तफसील से। नेपाल तिब्बत के सरहदी इलाकों में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से हजारों अफराद मुबैना तौर पर लापता हो गए हैं, जिनमें तकरीबन 300 भारतीय सैयाह शामिल हैं। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल ने आज कहा कि सैलाब में मुबैना तौर पर लापता होने वाले अफराद में तकरीबन 300 भारतीय शहरी हैं। इस दौरान आज नेपाली पुलिस ने बताया कि कल 3 जिलों में भोटेकोशी दरिया में आए अचानक सैलाब की वजह से मची तबाही में मरने वालों की तादाद 162 हो गई है। तिब्बत से शुरू हुआ यह सैलाब अपने साथ अहम पुलों को बहा ले गया, कई कस्बे और गांव तबाह हो गए और एक दर्जन पनबिजली प्रोजेक्ट दराम बराम होकर रह गए। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल ने पार्लियामेंट को बताया कि मुकामी वक्त के मुताबिक कल सुबह 8:37 पर तिब्बत के खिते में जलजला आया और उससे के 3 मिनट बाद अचानक सैलाब आने की इत्तला मिली। इससे यह जाहिर होता है कि जलजले के झटकों की वजह से ग्लेशियर फट पड़ा और इसके सबब यह सैलाब आया। उधर चीन के सरकारी कंट्रोल वाले न्यूज चैनल के मुताबिक चीन के इलाके में भी 3 अफराद मारे गए जबकि 265 लापता हैं। हुकाम ने बताया कि नेपाल के मुख्तलिफ मुतासर इलाकों से तकरीबन 100 अफराद को बचाया गया है। इनमें से 30 अफराद काठमांडू में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी अस्पताल में जेर इलाज है। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वजीर आजम बालेन्द्र शाह से फोन पर बात की और उन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हरबों की इमदाद का यकीन दिलाया। भारत ने नेपाल के लिए इंसानी इमदाद और आफात में मदद के सामान की 37.5 टन की दूसरी खेप रवाना की है। इसमें दवाएं और गजाई पैकेट भी शामिल हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने बताया कि इमदादी सामान लेकर दूसरी प्रवास रवाना हुई है। भारत ने कल इंसानी इमदाद के तौर पर 10 टन सामान और जरूरी दवाएं रवाना की थी। काठमांडू में भारतीय सफारतखाने ने इमदाद बम पहुंचाने और भारतीय शहरियों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। पिछले महीने भी भारतीय सफारतखाने ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिस पर व्हाट्सएप के जरिए राब्ता कायम किया जा सकता है। जो भारतीय शहरी लापता हैं उनमें से कम अज कम 50 अफराद कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्री थे। भारतीय शहरों के साथ साथ 2 दर्जन से ज्यादा मुल्कों के सयाह लापता बताए गए हैं। इनमें अमरीका, मलेशिया, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड शामिल हैं। कुदरती आफात से निपटने की कौमी फोर्स एनडीआरएफ ने आज कहा है कि नेपाल में आए तबाहकुन सैलाब से बिहार और उत्तर प्रदेश के सरहदी इलाकों में कोई असर नहीं पड़ा है। ताहम बिहार और उत्तर प्रदेश की रियासती हुकूमतों के तालमेल के साथ सूरत हाल पर लगातार निगाह रखी जा रही है। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर जनरल नरेंद्र सिंह बोमेरा ने बताया कि दोनों रियासतों में एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें 11 टीमों को उत्तर प्रदेश और 9 टीमों को बिहार में तैनात किया गया है। ये टीमें सैलाब या पानी भर जाने की सूरत में इनखला, राहत और बचाव कार्रवाईयों के लिए तैयार हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत के लिए खेलों का जदीद इकोसिस्टम तैयार करने के लिए हुकूमत पूरी तरह पुरज़ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खेलों की यूनिवर्सिटियों से जदीद तरबियती मराकज तक पूरे मुल्क में ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जहां हुनरमंद खिलाड़ियों को हर सतह पर तआवुन फराहम किया जाएगा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करते हुए

0: चावला ने भी कहा कि खेल सिर्फ तमगे जीतने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में नौजवानों और खेल की ताकत को मुत्तहिद करने का एक मिशन है। उन्होंने कहा कि हर जिले में आलमी खेलों के नक्शे पर चमकने की सलाहियत मौजूद है। भारत 18वीं ब्रिक्स संग्रह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। ये कॉन्फ्रेंस 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनाकिद की जाएगी। इस छोटी कॉन्फ्रेंस में ब्रिक्स मेंबर मुल्कों और शराकतदार और मधु ममालिक के लीडरान शिरकत करेंगे। भारत की ब्रिक्स सदारत की थीम लचक के लिए तामीर, इख्तरा, ताउन और पायदारी से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इंसानियत पहले के जज्बे पर मबनी अवाम मरकूज विजन की अक्कासी होती है। इसके अलावा लीडरान ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान मुश्तरक तरजीहात पर ताउन को बढ़ाने पर अपने ख्याल पेश करेंगे और बाहमी मफादात के आलमी और इलाकाई मौजूदात पर तबादले ख्याल करेंगे। इस साल भारत की सदारत के तहत पूरे मुल्क के 25 शहरों में 350 से ज्यादा मीटिंगें और आला सतह के मुज़ाकरात हो चुके हैं। मुंबई की जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली कंटेनर्स बंदरगाह के तौर पर उभरी है। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह साल 2026 के पहले निसफ हिस्से के दौरान कंटेनर के मामले में 13.6% तरक्की दर्ज करते हुए आलमी तौर पर 21वें मुकाम पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कल अपने 12 साल मुकम्मल करेगी। ये स्कीम भारत के इक्तसादी मंजरनामे को तब्दील करने में एक अहम संग मील है। इस स्कीम को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया था। वज़ारत खजाना ने बताया कि इस स्कीम के तहत अब तक 69 करोड़ से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं, जिसमें कुल मजमूनी रकम 3,17,000 करोड़ रूपये है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वाशिंगटन के साथ तनाजे के खात्मे के लिए ईरान की मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने की उनकी कोई मुकर्रर वक्त की हद नहीं है। एक प्राइवेट न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत दोबारा शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है। जनरल ट्रंप ने अपने मौकफ की वजाहत करते हुए कहा कि अमरीका बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है और उन्होंने ईरान की इक्तसादी मुश्किलात की तरफ इशारा किया है। इस दौरान कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम आल थानी आज तेहरान पहुंचेंगे ताकि ईरानी हुकाम से मुलाकात करके कशीदगी को कम करने और बातचीत के लिए साजगार हालात पैदा करने के तरीकों पर तबादले ख्याल करेंगे। अमरीका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन कार्रवाई के तराजू में आलमी सतह पर वीजा की सभी दरखास्तों पर रोक लगा दी है। अमरीकी महकमे खारजा के इस इकदाम का मकसद बंदिशों को सख्त बनाना और उन दरखास्त गुजारों के लिए रसाई को महदूद करना है जो बसलाहियत अमरीकियों के लिए मखसूस अवामी फायदों पर मुंहसर हो सकते हैं। मेटा अपने प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए बच्चों को नुकसान पहुंचने से मुतालिक दावों को निपटाने के लिए 18 अरब डॉलर अदा करेगा। यह कदम एक अहम तारीखी तस्वीर के तहत सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद केंद्र के ऑल इंडिया सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके ए बालाकृष्णन के इंतकाल पर गम का इजहार किया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और शुमाल मशरक की रियासतों में हफ्ते के रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा उड़ीसा, ज़ैली हिमालयी, मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी कल तक मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। नेपाल में आए जबरदस्त अचानक सैलाब में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 300 भारतीयों समेत हजारों अफराद लापता हैं। भारत ने राहत साजो सामान की दूसरी खेप रवाना की है। बिहार और उत्तर प्रदेश में सैलाब जैसी किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत 21वीं सदी में भारत के लिए खेलों के जदीद इकोसिस्टम के कायम के तई अहदबस्ता है। वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब किया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1073 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर। पेशे खिदमत है फिल्मी नगमों पर पब्लिक प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। सामईन, आज के प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं राज कपूर की आवाज कहे जाने वाले मारूफ सिंगर मुकेश के कुछ चुनिंदा फिल्मी नगमे जिनका आज यौम वफात है। मुकेश सन 1923 को दिल्ली में पैदा हुए और आज ही के दिन यानी 27 अगस्त को 1976 में मिशिगन में उनका इंतकाल हुआ। उन्हें अटैक हुआ, वहां प्रोग्राम में गए हुए थे लेकिन वो जाबर ना हो सके। आज के मेरी पसंद प्रोग्राम में हम उन्हीं के कुछ नगमे आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और ये नगमे वह हैं जिनमें से ज्यादातर के लिए उनको फिल्म फेयर नेशनल अवार्ड से नवाजा गया।

0: खिलाड़ी सामने आज की मेरी पसंद प्रोग्राम में आप सुन रहे थे मुकेश के गाए कुछ फिल्मी नगमे। आज उनका यम वफात है। ये प्रोग्राम खिलाज अकीदत था उर्दू सर्विस की जानिब से मारूफ सिंगर मारूफ गुलकार मुकेश के लिए। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। विशेष खिदमत प्रोग्राम अंदाजे नजर
1: ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। सामीन अंदाजा नजर के तहत आज के मुजाकरे का मौजू है सामने माशरा की तश्कील में गर्ल चाइल्ड का रोल, और इस मुजाकरे में हमारे साथ हैं प्रोफेसर अब्दुल हक साहब, डॉक्टर शकील अख्तर साहब, सीनियर प्रोड्यूसर जामिया मिल्लिया इस्लामिया, और डॉक्टर सैयद रजा हैदर साहब, डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट, और मैं इफ्तिखार उज़्ज़मा। आज के इस मुजाकरे में आप सभी का इस्तकबाल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की गर्ल चाइल्ड मुस्तकबिल की औरत होती है। औरत न सिर्फ अपने घर में अहम रोल अदा करती है बल्कि हमारे समाज और कौम की तश्कील में भी अहम रोल अंजाम देती है। इस हकीकत के बावजूद कि अभी भी उसे आमतौर पर मसावी हकूक हासिल नहीं है, उसे कई लिहाज से घर, समाज और कौम के मामार की हैसियत से नहीं देखा जाता है। इन बातों के पेश नजर हमें गर्ल चाइल्ड को इसी पस मंजर में देखना चाहिए और उसकी तरक्की के लिए काम करना चाहिए। हालांकि लड़कियां घर की रौनक होती हैं, लड़कियों के बगैर घर का तस्वर करना नामुमकिन सा है। समाज में लड़कियां अलग अलग किरदार को बखूबी अंजाम देती हैं। बेटी के तौर पर, एक वफादार बीवी के तौर पर, एक बहन के तौर पर और एक माँ के तौर पर। गर्ल्स के अगर हम देखें तो समाज में लड़कियों का अहम किरदार है। ये कहना गलत न होगा कि किसी भी समाज का वजूद इसके बगैर मुमकिन नहीं है। हालांकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में लड़कियां मजबूर होती हैं, लेकिन बेबसी की हालत में भी वो समाज का एक सुतून है। हम देखते हैं कि समाज में लड़कियां ही हैं जो अपनी फैमिली को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाती हैं। दूसरे लफ्जों में अगर हम कहें तो गलत न होगा कि पूरी जिंदगी एक लड़की पर मुनहसर है। कई रियासतों में जैसा कि हरियाणा, राजस्थान और दीगर कई रियासतों में जहां लड़कियों की पैदाइश से पहले ही इसको खत्म करने का रुझान बढ़ता जा रहा था, ये बहुत ही अफसोस की बात है। लोगों को अपनी आंखें खोलना चाहिए और देखना चाहिए कि आज लड़कियां किस तरह हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं और जिंदगी के हर मैदान में कामयाब हो रही हैं। वज़ीर आज़म ने लड़कियों की इस बदहाली को देखते हुए बहुत अहम कदम उठाया है और लड़कियों की तालीम के लिए आगे आया है। कई तरह की स्कीम भी लॉन्च की गई है जिससे लड़कियों की फलाह हो सके। सबसे पहले हम चाहेंगे कि प्रोफेसर अब्दुल हक साहब से कि हमारा जो आज का जो मौजू है इस पर आप कुछ रोशनी डालें। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, बहुत अच्छे और ख्याल अफरोज मौजू का इंतखाब किया गया है जिससे हमारा पूरा समाज जो है वो ताजमा है। सूरतहाल समाजी हवाले से बच्चियों के बारे में बहुत ही नागुफ्ता है। पता नहीं क्यों दोनों के हुकूक बराबर होने के बावजूद हमारी नजरें बच्चों की तरफ ज्यादा मायल बल्तफात है। कुदरत का ये कोई कसूर नहीं है, ना निजाम कायनात है। दोनों की तख्लीक, दोनों की पैदाइश, दोनों की तरबियत और दोनों के हुकूक वाजबात भी एक जैसे हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे समाज में सिर्फ नाजुक के साथ एक दो तरह की नहीं बल्कि हर तरह की ज्यादती को जायज करार दिया गया। और शायद इसीलिए समाज का ये हिस्सा जिसे हम जैसे लतीफ कहते हैं वो हमारी पसगामी में एक इजाफे का सबब बना। इसे दूसरे जावी से भी देखें, इंसानी समाज की बहबूद का तकाजा ये है कि समाज के दोनों अनासिर और लड़के हों या लड़कियां, दोनों पर समाज की तश्कील की उतनी जिम्मेदारी है। एक हिस्सा अगर अपने फराइज या वाजबात से अगर मुनहरिफ हो जाए तो न लड़कों का हिस्सा और बसूरत दीगर न लड़कियों का हिस्सा इसमें मुआवन होगा, बल्कि समाज का जो तवाजुन है वो बिगड़ा हुआ नजर आएगा। मौजूदा जो सूरत हाल है ये अदम तवाजुन का शिकार है और यही वजह है कि हमारी फिक्र में भी एक कजरगी पैदा हो गई है। हम बच्चियों के बारे में या लड़कियों के बारे में या इस जिन से नाजुक के बारे में हमारा रवैया फिक्री तौर पर भी बहुत गलत और मजमूम है। जरूरत है कि ऐसे मौजूद

0: इसलिए कि अगर इन्हें हम तालीम के जेवर से आरास्ता कर दें तो हम बेतालीम के रह जाएं, तो ये पूरी जनरेशन को सिखा सकती है, पढ़ा सकती है। ये बड़ा संजीदा मौजू है, इस पर हुकूमत काम कर रही है, लेकिन बहुत कुछ काम करने की हिंदुस्तान में अब जरूरत है। दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चियों के हकूक के ताल्लुक से जो इस्तेहसान हो रहा है वो हिंदुस्तान में हमारे मुल्क में हो रहा है, इस पर अवेयर होने की जरूरत है। मुझे बड़ी खुशी है कि इन मौजूद के ऊपर गुफ्तगू हो रही है।
1: डॉक्टर साहब, आज लड़कियों के प्रति बेदारी लाना समाज का एक अहम फरीजा है, तो हम चाहेंगे कि किस तरह से बेदारी लाया जाए जिससे उसमें और तालीम के प्रति या उनको इंडिपेंडेंट बनने के तौर पर।
2: मैं जहां तक समझता हूं कि इस हवाले से सबसे पहले अपने ही रवैये में तब्दीली लाने की जरूरत है, इंसानी तौर पर
1: जी,
2: कि हमारे घर में हम अपने घर में उन बच्चों से काम ना कराएं जो बहुत छोटी उम्र की हैं, जिन्हें जरूरत है कि वो स्कूल में जाए। अगर हम उनको उनकी खुद की हिफाजत कर सकते हैं तो हम उनके किसी स्कूल में तालीम का इंतजाम कर दें ताकि वो तालीम हासिल करके आगे बढ़ें। लेकिन अगर हम अपने इस रवैये में तब्दीली नहीं लाते तो बहुत मुश्किल है कि हम किसी और तौर पर उनको एम्पावर कर पाएंगे।
1: हम कुछ चीजों का जिक्र करना चाहेंगे सुनील भाई, जैसा कि जो मामला आज लड़कियों के तय हो रहा है इसमें जो जिम्मेदार है वो जो चीजें, पहला ये कि समाज में लोग लड़की की पैदाइश पर खुशी मनाते हैं जबकि लड़कियों की पैदाइश पर नहीं, इसको बदलना होगा। ये मुझे कि लड़कियों की तफरीक से ही जो नाबराबरी आपने अभी बताया मुझे कर समाज अलग रास्ते पर चलना शुरू कर देता है, तो सबसे पहले यह है कि इस तफरीक को मिटाना होगा। और दूसरी चीज ये कि जो गरीबी है, गरीबी भी एक सी बड़ी वजह है कि जो लड़कियों पर लोग कम ध्यान देते हैं, सोचते हैं कि लड़कियां घर में काम करें कोई लड़कों करा के आगे बढ़ा देते हैं। और दूसरा मामला है कि जहेज का जो रिवाज जो आम होता जा रहा है जिसकी वजह से लोग लड़कियों की पैदाइश को अपने लिए जहमत समझते हैं, शायद इसकी एक ये भी बहुत बहुत
0: बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह,
1: सबसे बड़ी सोचते हैं कि लड़की पैदा हुई अब इसके लिए जहेज का इतना इंतजाम करना होगा, इस वजह से भी लोग उस तरफ से शर्मायूश नजर आते हैं।
2: तो यहाँ फिर हमें ये कमिटमेंट करना पड़ेगा कि हम किसी लड़की की शादी करेंगे तो न जहेज देंगे और न किसी से जहेज लेंगे। यही इंफरादी अमल का एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए कि हम इंफरादी तौर पर इस्तेमाली तौर पर हम फैसला कर लेते हैं लेकिन इंफरादी तौर पर हम उस काम को पसे पर्दा अंजाम देते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि मुल्क के कुछ हिस्सों में इस तरह की रवायत मिलती है कि वहां पर लोगों ने मिलकर कमिटमेंट किया है कि हम ना जहेज देंगे और ना जहेज लेंगे, तो इस तरह की मिसालें मिल रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये काम हो रहा है, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि अभी काम करने की बहुत जरूरत है।
3: डॉक्टर साहब, मैं माजरे के साथ यह करूं कि क्या हमें भरपूर तवज्जो दी है कि जो इस खाते हमल के जो इदारे बन गए हैं
2: जी,
3: फिजिशियन के, डॉक्टरों के, मॉर्जों के
2: जी,
3: इनको फांसी इस तरह नहीं दी जा सकती?
2: हो सकता है
3: अगर इन इदारों को जो इस तरह के फिजिशियन हैं और जो इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं या इस तरह के जो मतलब हैं बड़ी फरातों बड़ी दरीदा दही के साथ ये काम अंजाम दे रहे हैं, और गवर्नमेंट को चाहिए कि एक सख्त से सख्त कानून बनाए और इसकी तफ्तीश हो और ऐसे डॉक्टरों या ऐसे मॉर्ज को सख्त तरीके से जाए, इसलिए कि ये एक वबाई सूरत अख्तियार कर चुका है जिससे आपने कहा जहेज, इसका सिलसिला जहेज से, अब जहेज से केखाओं से, अब ये इसका कहमत जहेज की केखाओं से बच्चों की पैदाइश की शरह जो पैदाइश है वो कम से कम पूरे समाज को अगर आप एक इनकलाबी शिक्र नहीं देंगे और इंसानी अमन सुरक्षनाश नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं सारे माशरे का तस्वूर जो है वो एक बस ख्वाब है और जो किसी दीवाने का ख्वाब हो सकता है शेरी जबान में, लेकिन वो किसी फैजाने का ख्वाब नहीं हो सकता। जरूरत है कि बच्चियों के साथ या छोटी बच्चियों के साथ जो अभी शफी साहब ने कहा था कि नफ्सियाती तौर पर हर फर्द की जिम्मेदारी है
2: जी,
3: खासतौर से हर वालिद और वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के साथ उस हुस्न सलूक का मुजाहरा करें जिसका कि फितरत हमसे ताजा करती है।
0: बहुत सही बात कही प्रोफेसर अब्दुल्ला साहब ने कि जितने इदारे बच्चियों को बचाने के लिए हैं उतने ही इदारे बच्चियों को खत्म करने के लिए भी हैं। ये बड़ा अजीब व गरीब मुल्क है, इस पर गौर करने की जरूरत है कि जितने इदारे जिन बातों की तरफ आपने इशारा किया
2: बहुत सब
0: वो बचा रहे हैं उससे ज्यादा जो है इदारे इनको खत्म करें,
1: तो ये एक ऐसा मौजूद है जिस पर
0: गौर करने की जरूरत है और बहुत संजीदा मौजूद है जी।
1: आखिर में डॉक्टर साहब हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर लड़कियों को एम्पावर करके एम्पावर यानी कि उसको एजुकेशन अच्छी दिया जाए, नौकरियों में लड़कियां आए और जो जितने काम है हर मामले में अगर लड़कियां आगे बढ़ती हैं तो समाज खुद ब खुद ये तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएगा कि

0: कहते हैं अपने रवैये को अपने नजरिए को बदले।
1: बहुत अच्छी बात है। और ये आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सर 25-30 साल पहले की क्या सूरत हाल थी बच्चियों के तालीम से, क्या इनकलाबी तब्दीली आई है, हर फील्ड में बच्चियां लड़कियां खवातीन आगे बढ़ रही हैं और उम्मीद है कि आगे काम होता रहेगा।
0: जो आखिर में सबसे एक बात और कुछ एक मिनट का लेंगे आपका सबका, हम चाहेंगे कि जो एक मैसेज के तौर पर हम अपने सामीन को बताएं कि आखिरकार इस दुनिया में जो रंग भरने का काम है इसकी जरूरत है और कोई भी मुल्क इसके बगैर तरक्की नहीं कर सकती है। जाहिर सी बात है जब तक बच्चियां नहीं होंगी या गर्ल चाइल्ड नहीं होगी तो मुस्तकबिल में जिसको हम औरत के तौर पर देख सकते हैं वो नहीं हो सकता है। इसके एक एक मिनट का एक मैसेज हमारे सामीन को।
1: डॉक्टर जमा, मैं वो इकबाल के हवाले से कहना चाहूंगा कि इकबाल ने एक ऐसी हकीमाना बात कह दी है कि उसके बाद फिर वो या किसी और बात की मेरे नजदीक गुंजाइश नहीं रहती। उन्होंने जर्द कलीम का एक बाब जो कायम किया है जो औरतों से मुतालिक है, एक बड़ी दलील मुस्तहकम दलील दी है कि हम जिसे औरत समझते हैं, जिसे माशरे का विश्वसानी समझते हैं, जिसे कमतर भी समझते हैं, ये तसव्वुर ही बातिल है। अगर ये खवातीन इकबाल ने जो मकाम दिया है असरार खुदी में, इकबाल ने खातून को किसी भी खातून को अच्छा फातिमा जहरा का किरदार नाम लेके कहा है, लेकिन फातिमा जहरा तरह नहीं है, दुनिया की तमाम खवातीन की नुमाइंदा है। और अभी हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे कि उनकी एक मिसाली शख्सियत है जिसमें जावी से आप देखना चाहें वो एक अलग पहलू है। लेकिन इकबाल ने जो हकीमाना बात कही, अगर खवातीन न हो जिनके बदन से जिनके आगोश से अफलातून व अरस्तू राजी व गजाली पैदा होते हैं जी, उनकी पैदाइश दुनिया से मफकूत हो जाएगी।
2: अब मैं सर की बात को आगे बढ़ाते हुए एक मिसरा पढ़ना चाहूंगा कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, तो इस कायनात की तस्वीर को अगर खूबसूरत बनाना है तो हमें बच्चियों को भी देखना है, औरतों को भी देखना है, लड़कियों को भी देखना है, खवातीन के ऊपर भी काम करने की जरूरत है।
1: तो मैं ये समझता हूं कि अगर हमने अपने बच्चों की सही तरबियत की तो इससे दुनिया के लबो रुखसार भी संवरेंगे, दुनिया भी खूबसूरत नजर आएगी और इस दुनिया के बाद की जो दुनिया है जिसे हम आखिरत कहते हैं, जहां हमारा अकीदा है कि हमारी मंजिल वही है, वो मंजिल भी बहुत खूबसूरत बहुत हसीन होगी।
0: बहुत भाई मैं यस करना चाहूंगा, डॉक्टर रजा हैदर ने एक मिसरा सुनाया था उसका मिसरा इस्लामी मैं पेश करता हूँ ताकि जी उसी के जन से है तस्वीरें कायनात में रंग, उसी के शोर से टूटा शरारे अफलातून। जी जी बहुत खूब। इसी के साथ आज के इस मुजाकरे का खत्म होता है। हमारे साथ प्रोफेसर अब्दुल हक साहब, डॉक्टर सकीन अख्तर साहब, डॉक्टर सैयद रजा हैदर साहब और मैं इफ्तखारुज्जमा, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
3: सलाम, आप सुन रहे थे प्रोग्राम अंदाजे नजर, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है फिल्मी नगमे। आज के नगमे हम आपको सुनवा रहे हैं मारूफ गुलकार मुकेश की आवाज में, चूंकि आज उनका यौम वफात है। इब्तदा कर रहे हैं पहली नजर फिल्म के इस नगमे के साथ जिसे मौसीकी सजाया था अनिल विश्वास ने।

और सामान लीजिए, सुनिए, रोटी, कपड़ा और मकान। इस फिल्म का नगमा आवाजें हैं लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की, नंदनगार वर्मा मलिक, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारे।

वजीर आजम ने कहा कि खेलों की यूनिवर्सिटियों से जदीद तरबियती मराकज तक पूरे मुल्क में ऐसा इको सिस्टम तैयार किया जा रहा है जहां हुनरमंद खिलाड़ियों को हर सतह पर ताउन फराहम किया जाएगा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि खेल सिर्फ तमगे जीतने तक ही महदूद नहीं है बल्कि ये तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में नौजवानों और खेल की ताकत को मुत्तहिद करने का एक मिशन है। उन्होंने कहा कि हर जिले में आलमी खेलों के नक्शे पर चमकने की सलाहियत मौजूद है। भारत 18वीं ब्रिक्स सरबरा कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। ये कॉन्फ्रेंस 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़िद की जाएगी। इस छोटी कॉन्फ्रेंस में ब्रिक्स मेंबर मुल्कों और शराकतदार और मधु ममालिक के लीडरान शिरकत करेंगे। भारत की ब्रिक्स सदारत की थीम लचक के लिए तामीर इख्तरा तआवुन और पायदारी से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंसानियत पहले के जज्बे पर मबनी अवाम मरकूज विजन की अक्कासी होती है। इसके अलावा लीडरान ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान मुश्तरक तरजीहात पर तआवुन को बढ़ाने पर अपने ख्याल पेश करेंगे और बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मौजूद पर तबादले ख्याल करेंगे। इस साल भारत की सदारत के तहत पूरे मुल्क के 25 शहरों में 350 से ज्यादा मीटिंगें और आला स्तर के मुजाकरात हो चुके हैं। नेपाल तिब्बत के सरहदी इलाकों में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से हजारों अफराद मुबैन तौर पर लापता हो गए हैं जिनमें तकरीबन 300 भारतीय सैयाह शामिल हैं। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल ने आज कहा कि सैलाब में मुबैन तौर पर लापता होने वाले अफराद में तकरीबन 300 भारतीय शहरी हैं। इस दौरान आज नेपाल पुलिस ने बताया कि कल तीन जिलों में भोटेकोशी दरिया में आए अचानक सैलाब की वजह से मची तबाही में मरने वालों की तादाद 162 हो गई है। तिब्बत से शुरू हुआ यह सैलाब अपने साथ अहम पुलों को बहा ले गया। कई कस्बे और गांव तबाह हो गए और एक दर्जन पन बिजली प्रोजेक्ट धराम बरहम होकर रह गए। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल ने पार्लियामेंट को बताया कि मकामी वक्त के मुताबिक कल सुबह 8:37 पर तिब्बत के खित्ते में जलजला आया और इसके 3 मिनट बाद अचानक सैलाब आने की इत्तला मिली। इससे यह जाहिर होता है कि जलजले के झटकों की वजह से ग्लेशियर फट पड़ा और उसके सबब यह सैलाब आया। नेपाल की कुदरती आफात से निपटने वाली कौमी अथॉरिटी ने बताया कि नेपाल तिब्बत सरहद पर लेने नदी के तुगयानी में आने के सबब रासुवा जिले के तिमोर में भोटेकोशी होता हुआ त्रिशूरी दरिया में यह सैलाब दाखिल हुआ। इसके बाद यह दरिया के रास्ते कई जिलों में दाखिल हो गया। उधर चीन के सरकारी कंट्रोल वाले न्यूज चैनल के मुताबिक चीन के इलाके में भी 3 अफराद मारे गए जबकि 265 लापता हैं। हुकाम ने बताया है कि नेपाल के मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों से लगभग 100 अफराद को बचाया गया है। इनमें से 30 अफराद काठमांडू में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी अस्पताल में जेर इलाज हैं। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह से फोन पर बात की और उन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। भारत ने नेपाल के लिए इंसानी इमदाद और आफात में मदद के सामान की 37.5 टन की दूसरी खेप रवाना की है। इसमें दवाएं और गजाई पैकेट भी शामिल हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि इमदादी सामान लेकर दूसरी परवाज रवाना हुई है। भारत ने कल इंसानी इमदाद के तौर पर 10 टन सामान और जरूरी दवाएं रवाना की थीं। काठमांडू में भारतीय सफारतखाने ने इमदाद मुहिम पहुंचाने और भारतीय शहरियों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। बीजिंग में भी भारतीय सफारतखाने ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिस पर व्हाट्सएप के जरिए रब्ता कायम किया जा सकता है। जो भारतीय शहरी लापता हैं उनमें से कम अज कम 50 अफराद कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्री थे। भारतीय शहरियों के साथ साथ 2 दर्जन से ज्यादा मुल्कों के सैयाह लापता बताए गए हैं। इनमें अमरीका, मलेशिया, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के सैयाह शामिल हैं। कुदरती आफात से निपटने की कौमी फोर्स एनडीआरएफ ने आज कहा है कि नेपाल में आए तबाहकुन सैलाब से बिहार और उत्तर प्रदेश के सरहदी इलाकों में कोई असर नहीं पड़ा है। तमाम बिहार और उत्तर प्रदेश की रियासती हुकूमतों के तालमेल के साथ सूरत हाल पर लगातार निगाह रखी जा रही है। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर जनरल नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों रियासतों में एनडीआरएफ की

0: टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें 11 टीमों को उत्तर प्रदेश और 9 टीमों को बिहार में तैनात किया गया है। नेपाल में अचानक सैलाब आने के तनाजुर में किसी भी तरह के सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर जनरल नरेंद्र सिंह बुंडेला ने बताया कि एनडीआरएफ की एक टीम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के करीब कुशीनगर इलाके में तैनात की गई है। पड़ोसी मुल्क नेपाल के कई अजला में तबाहकुन सैलाब आने के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में सख्त चौकसी बरती जा रही है। बिहार हुकूमत ने मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत गंडक नदी से मुत्तसिल अजला को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश में रियासती हुकूमत ने नेपाल में फंसे लोगों की जानकारी हासिल करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वाशिंगटन के साथ तनाजे के खात्मे के लिए ईरान के मुजाकरात की मेज पर वापस आने की उनकी कोई मुकर्रर वक्त की हद नहीं है। एक प्राइवेट न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत दोबारा शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है। जनाब ट्रंप ने अपने मौकिफ की वजाहत करते हुए कहा कि अमरीका बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है और उन्होंने ईरान की इक्तिसादी मुश्किलात की तरफ इशारा किया। इस दौरान कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल सानी आज तेहरान पहुंचेंगे ताकि ईरानी हुकाम से मुलाकात करके कशीदगी को कम करने और बातचीत के लिए साजगार हालात पैदा करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया जा सके। स्क्वाश में वीर चौड़रानी और वेलवन सेंथिल कुमार बुडापेस्ट ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में चौड़रानी ने मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को 3-1 से हराया, जबकि वेलवन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के एन यो नेक को 3-0 से हराया। आज शाम सेमीफाइनल में दोनों भारतीय खिलाड़ियों का मुकाबला एक दूसरे से होगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत 21वीं सदी में भारत के लिए खेलों के जदीद इको सिस्टम के क्याम के तई अहद बस्ता है। वज़ीर आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब किया। नेपाल में आए जबरदस्त अचानक सैलाब में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 300 भारतीय समेत हजारों अफराद लापता हैं। भारत ने राहत का साजो सामान की दूसरी खेप रवाना की है। बिहार और उत्तर प्रदेश में सैलाब जैसी किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग के खात्मे की खातिर मुजाकरात की मेज पर वापस आने के लिए ईरान के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामने शाम के 5 बजे चाहते हैं यहां हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है। शब में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम बेहतरीन खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नशरियात के साथ हम बेहतरीन खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार। आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिन दिए पंजाबी सेवाएं शाम दे 5 बजे ने होर साड़ी दूजी सभा शुरू होंदी है। सभा दी शुरुआत कर रहा सराय के प्रोग्राम दे नाल समाज फरमाओ जोक माही दी।

ऑल इंडिया रेडियो दासराय की प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर आज तुहाडे किते घिम की आई हां कुछ बातां कुछ गीत जिस विच असां तुहाडे नाल गालां भी करेंदे हन ते पंजाबी गीत भी सुनवेंदे हन। सब तो पहला मैं तुहाकू सुनवेंदी हां एक गीत गावण आले हन हरभजन मान।

भेड़ो भरावो। आजकल लड़ाई झगड़े बहु वधंदे पए हन। आखा वेंदा कि लोगों इच धीरज कैनी, जदन के धीरज हर तकलीफ दा हल है। पर होंदा की है, लोग छोटी जही गाल ते झगड़न लग पौंदे हन। सड़क जरा कु अगू टक्कर थी जावे ते लोग केड़िया गाला कड़ेंदे, मारन ते उतर आंदे हन। हुन कह को आखे इस तरह ना करो, कुछ ता धीरज रखो। कावड़ नाल ता झगड़ा बिया वधंदा है, प्यार नाल गाल मुक वंजे ता झगड़ा होंदा ही क्या नी। कावड़ ता आंदा है पर नुकसान भी ता अपना ही होसी, के फायदा। बाबा फरीद कहंदे हिन, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग न लग गई, पल्ले सब किछ पाए। केडी चंगी गाल आखी है शेख फरीद ने, के कावड़ नाल रोग लगेंदे हिन। अजकल तुसा डेधे बीपी शुगर हां को लगन आले रोग, ये सारा कावड़ नाल ही थींदे पए हिन। धीरज जो कहनी, धीरज नाल प्रेम वधेंदा है, रिश्ते वधेंदे हिन। आखा लेदा कि परिवार तू घिन के पूरे संसार तीकन शांति ताही आसी जदन धीरज होसी। ते हुण वारी है गीत दी। गीत है, एक मेरी आख काशनी, दूजा रात दे उनींदरे ने मारिया, शीशे ते तरेड़ पै गई, वाल वांदी ने ध्यान जदो मारिया। गायिका हिन सुरिंदर कौर।

कश्मीर दे विच भारत दी सब तो खूबसूरत झील जो अपने शिकारे किश्तियां लई मशहूर है। चिल्का झील उड़ीसा भारत दे विच है। भारत दी सब तो वड्डी खारे पानी दी तटवर्ती झील जिन्हों आपां लगून भी कहने हैं। पंजाब दे संदर्भ विच देखा जावे तो हरीके पत्तन रोपड़ वैटलैंड अते कांचली वैटलैंड वर्गियां मनुख निर्मित झीलां छंभ मौजूद ने जो हर साल हजारां मील दूर साइबेरिया तो आने वाले प्रवासी पंछियों का रहन बसेरा बनदियां ने। झीलां दी संभाल लई कीते जाण वाले उपायां दी वी गल अज दे दिन तां बनदी है। विश्व झील दिवस नूं सानूं केवल भाषण देने तक सीमित नहीं रखना चाहिए सगो एक ठोस कदम चुकने की प्रेरणा भी मिलती है। कूड़ा कट्टन सुट्टन ते पाबंदी झीलों के आले दुआले प्लास्टिक ते उद्योगिक कूड़ा सुट्टन वालियां खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शहरां दे गंदे पानी अते सीवरेज नूं सीधा झीलों विच पाउण दी बजाए पहला उस नूं साफ किया जाना चाहिए है ताजो मिट्टी दे खोर नूं रोकिया जा सके। स्थानक भाईचारे दी भागीदारी पिंडां अते शहरां दे लोकां नूं झीलां दी सफाई मुहिम विच शामिल करना चाहिदा है जिवें कि भारत सरकार वल्लों चलाई गई अमृत सरोवर योजना तहत पुराने तालाबां अते झीलां दा पुनर उद्धार किया जा रहा है। संखेप विच गल करिए तां जल है तां जीवन है। झीलां धरती दीआं अखां वांग ने जे ए सुख गईआं तां धरती दा हरेक जीव प्यासा मर जावेगा। आओ इस विश्व झील दिवस ते असी सारे अहद करिए कि असी अपने आले दुआले दे जल स्रोतां नूं साफ रखांगे अते पानी दी इक इक बूंद दी कदर करांगे। समें अज दी गल दे विच झील दिवस दे मौके ते अज बस इन्ना ही। अगे वधदे आं जी, अगे है थोड़े लई प्रोग्राम माझे दी महक।

ਐਵੇਂ ਬਾਜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕੜਾ ਕਰ।

की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपनी मन की बात एतवार 3 अगस्त नु दिने 11 बजे आकाशवाणी के सारे केंद्र सारे चैनल इस नु प्रसारित करेंगे नालो नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नेशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी कीता जाएगा प्रधानमंत्री दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज डीटीएच एआईआर पंजाब सेवा डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज विविध भारती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज अमृतसर एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर

0: सदैव राष्ट्र हित के अनुरूप होना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में आज भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में राष्ट्रपति ने ये बात कही। उन्होंने राजनयिकों से निवेश, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर नजर रखने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी श्रृंखला के युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है।
1: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
0: सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रूपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मुकाबला ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन पर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी समाचार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसानवाड़ी।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन भोगी सुनिश्चित
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को सम्मान पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले किसान भाई बहनों को नमस्कार। जैसा कि हर बार की तरह हम इस कार्यक्रम में नए नए विषय लेकर आते हैं, तो आज का विषय है अपेक्षित एवं गौर फलों की खेती के उभरते हुए अवसर।
4: बिल्कुल सही कहा आपने मंजीत, और हम लोग अपने कार्यक्रम के दौरान सरकार के द्वारा चलाए गए योजनाओं पर भी बात करेंगे, अपने किसान भाइयों को जानकारियां देंगे, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कृषि सलाह, मौसम, बाजार भाव और मनोरंजन की भी बात हम लोग अपने कार्यक्रम के दौरान करेंगे मंजीत।
3: बिल्कुल, तो गौतम विभिन्न योजनाएं भी भारत सरकार द्वारा बनाई गई हैं और उनमें से एक योजना है राष्ट्रीय पशुधन मिशन। राष्ट्रीय पशुधन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है और इसका उद्देश्य पशुपालन, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी पालन और चारा उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना है।

0: पशुओं की नस्ल में सुधार करना है।
1: मंजीत, बहुत सही कहा आपने। ये जो उद्देश्य है इस योजना का, एक तो है कि सब्सिडी भारत सरकार देती है अपने किसान भाइयों को, जिससे उनको लाभ प्रदान होता है। अगर पात्र हैं इस योजना के तो आपको 50% तक सब्सिडी दिया जाता है। और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए अगर बात करें तो पशुओं की जो नस्ल है उसमें सुधार करना, मांस अंडा और उनका उत्पादन जो है वो बढ़ाना, चारा का विकास करना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। मंजीत,
0: इस मिशन का मुख्य उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना भी है। इससे युवा और किसान पशुपालन से जुड़े व्यवसाय शुरू करके अपनी आय बढ़ा सकता है। पशुधन की उत्पादकता बढ़ने से दूध, मांस, अंडा और अन्य पशु उत्पादकों का उत्पादन भी बढ़ता है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यदि किसान आधुनिक तकनीक, अच्छी नस्ल और वैज्ञानिक पशुपालन पद्धतियों को अपनाए तो पशुपालन उनकी आय को और मजबूत और साधन भी बना सकता है। और विशेषकर हम बात करें राष्ट्रीय पशुधन मिशन की, तो किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और देश के पशुधन क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
1: बिल्कुल सही कहा मंजीत आपने। और जो पशुधन मिशन है हमारा, किसान भाइयों के लिए पशुधन इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसान भाई कृषि के साथ साथ पशुधन रखें और पशुधन का पालन करें तो उससे इनका आमदनी दोगुना चौगुना बढ़ सकता है। तो इसके लिए किसान भाइयों को व्यवसाय में से इनको अपनाना चाहिए, क्योंकि वो पशुओं को अगर अपने साथ रखें, और एक तो आप पशुओं को पालन करेंगे जैसे आप कृषि के का व्यवसाय करते हैं, साथ साथ उनका जो चारा है वो आपके जो वेस्टेज है उससे भी निकल जाता है, तो आपके खर्च भी कम है और पशु से आपको दूध, घी, मक्खन जो भी है आप जिस तरह के उत्पाद बनाना चाहते हैं वो आपको मिल सकता है।
0: बिल्कुल, आम के आम और गुठलियों के दाम
1: जी।
0: तो गौतम, आज हम चर्चा कर रहे हैं अपेक्षित एवं गौर फलों की खेती के उभरते हुए अवसर, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ओपी अवस्थी, अध्यक्ष फल विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली से।
2: डॉक्टर अवस्थी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: तो डॉक्टर साहब, बहुत से ऐसे फल हैं जिनको हमारे किसान भाई या श्रोता नहीं जानते हैं, वो कौन कौन से हैं?
3: देखिए, जैसे कि आपने अभी चर्चा में आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे फल हैं जैसे आम है, अमरूद है, केला है
2: जी।
3: इन फलों को तो सभी लोग जानते हैं, किसान भी जानते हैं अच्छी तरह से, व्यापारी भी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फल होते हैं जो बिल्कुल शुष्क अवस्था में होते हैं और जिनकी औषधीय गुण जो है बहुत ज्यादा होती है। उदाहरण के रूप में जैसे मैं बताना चाहूंगा, जामुन। जामुन एक ऐसा फल है जो कि आज के समय में उसका अपना विशेष स्थान है। उसी तरह केर है। केर जो है रेगिस्तानी क्षेत्र में होता है जहाँ बिल्कुल वर्षा आधारित रहता है ये, और जहाँ पे पानी बिल्कुल उपलब्ध नहीं होता है वहाँ केर हो सकता है। फिर एक फल होता है लसोड़ा। लसोड़ा जो है वो सब्जी वगैरह बनाने में काम आता है। इसी तरह करौंदा है। करौंदा जो है आजकल बहुत किसान भाई जो है नींबू को काट करके जो है करौंदा की खेती कर रहे हैं। इसी तरह चिरौंजी है। इस तरह से कुछ फलें हैं जो अपना विशेष स्थान रखती हैं और ये औषधीय गुणों से जो है भरपूर होते हैं।
2: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा कि अगर हम जामुन की बात करें तो जामुन जिस समय आता है तो उसके कहते हैं कि पूरा फल, यहाँ तक कि गुठली भी लोग खाते हैं, क्योंकि इसके लिए जो हमारे मधुमेह के रोगी होते हैं या जिनको मधुमेह की समस्या होती है तो वो लोग इसका ज्यादातर सेवन करते हैं। और इसके अलावा जैसे आपने जिक्र किया लसोड़ा, ये कहाँ पाया जाता है, इसका किस तरीके से उत्पादन करते हैं?
3: जामुन के बारे में तो सभी जानते हैं कि आज जामुन जो कि बिल्कुल पहले जो है कि सड़क किनारे होता था और उस समय कोई किसान उसको लगाते नहीं थे
2: जी,
3: लेकिन आज मधुमेह के रोगियों के बीच में जो है जामुन काफी प्रचलित हो गया है और उस बीज को भी निकाल करके सुखा करके जो है उसका पाउडर बना करके जो है डायबिटिक पेशेंट उसको लेते हैं। तो जामुन का तो अपने विशेष महत्व है। और जहां तक लसोड़ा की आप बात करते हैं, लसोड़ा बिल्कुल शुष्क क्षेत्र में, शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र में, जैसे कि राजस्थान के बीकानेर है या बाड़मेर है या जैसलमेर है, जोधपुर है और दूसरे आदिवासी क्षेत्रों में जैसे कि गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं, वहां पे लसोड़ा बहुत सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। और लसोड़ा का खास महत्व यह है कि इसमें जो है गम, जो गोंद जैसे पदार्थ जो है, मिसलेजनस सब्सटेंस जो है वो बहुत अधिक होता है और ये पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और इसके अचार के साथ साथ जो है इसकी सब्जी बहुत बनाते हैं लोग, शुष्क क्षेत्र में जो कि सब्जी की बहुत कमी रहती है तो इसको सब्जी बना के में प्रयोग लेते हैं।
2: और डॉक्टर साहब, जो आपने कैर की बात करी, ये जो छोटा छोटा दाना होता है उसी की बात कर रहे हैं कि कोई और है?
3: नहीं नहीं, वही उसी की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि हमारे किसान भाई या कोई दूसरे जो है अगर कभी अचार खाते हैं, जैसे कि बाजार से हम मिक्स अचार खरीद के लाते हैं तो उसमें देखते होंगे कि छोटे छोटे जो है वो मटर के दाने का आकार का होता है, उसमें बीज जो है छोटी होती है, अब बीज जो है वो कड़ा होता है, उसका थोड़ा सा बीज होता है उसमें, इसको केर के नाम से जाना जाता है। और केर जो है आज के समय में बहुत ही एक महत्वपूर्ण फल है। इसमें जो है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है, ये एंटी कैंसरस होता है और इंडियन मेडिकल जो है IMR जो है उसको पेटेंट भी कर रहा है और ये कैंसर के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, इसके कैंसर की दवा बनती है। और केर की सबसे खास विशेषता है कि अचार के साथ साथ जो है इसका सब्जी भी बनाते हैं। राजस्थान वगैरह में आप अगर कभी जाइए तो इसकी सब्जी भी बनती है और इसकी सब्जी आम घरों में ही नहीं वो प्रचलित है, ये जो है 5-स्टार होटल में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और राजस्थान में एक पंचकुटा करके बनाते हैं, तो पंचकुटा में जो है केर को जो है डालना बहुत जरूरी होता है और ये बड़े बड़े होटल 5-स्टार और शादियों में काफी प्रचलित रहा है।
2: तो डॉक्टर साहब, इसी तरीके से जैसे अचार का जिक्र किया, ये करौंदा भी तो झाड़ियों की तरह लगता है, इसमें छोटे छोटे होते हैं और इसका भी अचार डालते हैं।
3: हाँ बिल्कुल, इसमें जो है करौंदा, देखिए क्या हो रहा है आजकल नींबू में बहुत सारी समस्या आ रही है। नींबू में क्या हो रहा है कि अचानक पेड़ सूखने लगा है, तो किसान क्या कर रहा है कि इस समय जो है नींबू को काट करके जो पौधे सूख गए हैं उसमें वो करौंदा लगा रहे हैं। अब देखिए करौंदा के बहुत सारे फायदे हैं, एक तो ये बहुत अच्छी झाड़ी बनती है इसकी, मतलब ये जानवरों से आप बचाव कर सकते हैं, इसको बाउंड्री में किसान भाई इसको लगा सकते हैं, इससे क्या होगा कि जानवरों से तो बचाव होगा ही होगा। अब जो दो इसमें फल आते हैं वो दो चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक तो इसका अचार बहुत अच्छा बनता है और दूसरा आजकल इसकी जेली बन रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अच्छे किस्म आ गए हैं जो बिल्कुल रंगीन होते हैं, जैसे कि मैरून रेड है या थार है, पंच सुजाता है, पंच सुवर्णा है, पंच शिवानी है, कई ऐसे किस्में हैं जो बिल्कुल गूदा जो है बिल्कुल गाढ़े लाल रंग का होता है, उससे जेली जो बनती है बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसमें स्टार्च कंटेंट बहुत ज्यादा होता है।
2: एक तो करौंदे का फायदा जो हमारे बागवान भाई हैं, अगर कहीं भी बागीचे लगाते हैं फलों के, तो उसके आसपास अगर उसको बाउंड्री के तौर पे लगाएं,
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: एक तो सुरक्षा होगी, दूसरे आपको इससे मिलने वाली फलस से आपको इनकम भी होगी।
3: और एक इसका और महत्व है
2: जी
3: कि करौंदा की जो पत्तियां गिरती हैं, आप जहां भी करौंदा लगा रहता है उसमें मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ती है। जैसे कि आप दूसरे फल वृक्ष लगाते हैं, आम लगाते हैं, अमरूद लगाते हैं, उसकी पतझड़ होती है, उससे जितना ऑर्गेनिक कार्बन जाता है उससे कई दोगुना या तीन गुना अधिक जो है ऑर्गेनिक कार्बन जो है ये करौंदा की पत्तियों से जो है मृदा में मिलती है।
2: मतलब जो हमारे मृदा की संरचना में भी बदलाव होता है उसके ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है।
3: बिल्कुल।
2: तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा आपने जिक्र किया था एक फल जो फालसा होता है, ये कहाँ होता है, इसका क्या महत्व है?
3: देखिए फालसा जो है बिल्कुल झाड़ी नुमा होता है और ये मई में जो है पक करके तैयार हो जाता है। अब फालसा का सबसे, चूंकि आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, महिलाओं के लिए जो है ये बहुत ही उपयोगी फल है, क्योंकि उनकी हीमोग्लोबिन की समस्या होती है, तो अगर ये फालसा का जूस पीते हैं तो इसमें जो है हीमोग्लोबिन की कंटेंट उनके उसमें बढ़ जाता है। अब फालसा जो है झाड़ी नुमा होता है, बस फालसा में एक ध्यान देना चाहिए कि जो भी किसान भाई अगर फालसा लगाते हैं तो उसमें जो है कटाई छटाई करना बहुत जरूरी होता है, और दिल्ली में इसकी कीमत करीब 150 से 200 रुपए किलो इस समय जो है रहता है गर्मियों के दिनों में।
2: तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। अच्छा, ये कहीं कहीं मैंने सुना है कि ये अपना नागफनी है, इसका भी फलों में ही बड़ा महत्व है।
3: आजकल देखिए बिल्कुल शुष्क क्षेत्र में जहाँ बिल्कुल जो है पानी की बहुत समस्या है या पानी नहीं मिल पाती है, आजकल शुष्क क्षेत्रों में जो है नागफनी की खेती करते हैं लोग, तो नागफनी में लोग सोच करके बहुत वो लगता है कि नागफनी से हाँ, क्या काटे होते होगा, उसमें तो काटे ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नागफनी में जो छोटे छोटे उसमें फल लगते हैं तो उसको जो है फूल जैसा दिखाई देता है, उसको निकाल करके जो है 5-स्टार होटल में या जो होटल्स में होते हैं वहाँ सप्लाई करते हैं, इससे जो है किसान भाई काफी अधिक आमदनी ले रहे हैं।
2: देश में भी और विदेशों में भी इसकी मांग है सर?
3: हाँ, विदेशों में खास करके मैक्सिको में, मैक्सिको में बहुत सारी अच्छी उन्नत किस्में भी वो विकसित की गई हैं, और मैक्सिको से बहुत सारी किस्म हमारे भारत में भी जो है लाई गई हैं, उनकी खेती जो है रेगिस्तान के ये बीकानेर या जोधपुर या जयपुर के इलाके में काफी कर रहे हैं आजकल।
2: डॉक्टर साहब, कहते हैं जलेबी तो लोगों ने खाई है, लेकिन एक नाम है जंगल जलेबी, तो ये भी कहीं कहीं पाया जाता है और इसकी भी मांग रहती है, इसका क्या महत्व है?
3: देखिए जंगल जलेबी, कभी हम लोग बचपन में जो है उसको जाते थे तो होता था तो उसको तोड़ करके खा लेते थे, उस समय ये मालूम नहीं था कि जंगल जलेबी आज के समय में इतना महत्वपूर्ण फल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो लोग कहते हैं कि जैसे कि आंवला में जो है विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो आंवला के बाद जो है ये सब फल है जैसे कि जंगल जलेबी है या मकोई है, इसमें जो है विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है और इसे लेने पे जो है एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है।
2: जी, आपने मकोई का भी जिक्र कर दिया। डॉक्टर साहब, एक

0: शहतूत भी होता है, इसके भी छोटे छोटे फल हैं होते हैं, उनकी भी मांग रहती है।
1: हाँ शहतूत, देखिए शहतूत जो है ऐसे ही पेड़ होता है, गर्मी में इस समय जो है शहतूत काफी उपलब्ध है। पूरा जो है इसमें आयरन ज्यादा होता है, विटामिन सी ज्यादा होती है, और उसके बाद में इसमें कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा होता है। और आजकल जो आ रही हैं किस्में आ रही हैं कुछ शहतूत के, वो बहुत अच्छी अच्छी किस्में आ रही हैं जिसमें कि एक फ्रेग्रेंस भी होता है, उसको कर सकते हैं। और इसके साथ शहतूत के साथ साथ जो है इसका सिल्क में भी बनाने के काम आता है।
0: तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं फलों की, अब एक आता है कि चिरौंजी, जिसको हम मसालों में भी प्रयोग करते हैं, और उसको गिनती फलों में कैसे होती है?
1: चिरौंजी देखिए ये जो है जैसे कि काजू को हम कहते हैं
0: जी,
1: काजू है या अखरोट है
0: जी,
1: ये सब जो है उसमें फलों में ही गिनते हैं। तो चिरौंजी भी जो है एक ड्राई फ्रूट के लिए है। चिरौंजी आमतौर पर ये जो आदिवासी क्षेत्र जहाँ पे है
0: जी,
1: वहाँ पे जो है जंगल के बीच में ये खड़े रहते हैं। इसकी खेती बहुत प्रचलित नहीं है क्योंकि अभी कोई अच्छी किस्में विकसित नहीं हुई है। एक आध दो है, CT10 है और CT8 है जो विकसित की गई है। तो इसमें क्या काम करते हैं कि सबसे बड़ी समस्या चिरौंजी के साथ है कि चिरौंजी कोई लगाता नहीं है, खास करके आदिवासी क्षेत्र में ये पेड़ खड़े रहते हैं और उसको आदिवासी भाई अपने जो है उसको काट लेते हैं क्योंकि छोटे छोटे फल होते हैं, तो उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब तुड़ाई करने के बाद जो है उसको बाजार में ला करके उसको बेचते हैं। और ये आमतौर पर कि खीर वगैरह जो बनाते हैं उसमें ये डालने के काम आता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है और करीब इस समय जो है करीब 150 से 200 रुपए किलो के रेट से बिकता है।
0: तो डॉक्टर साहब, ये जो अपरिचित फल हैं इनको बढ़ाने के लिए हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्या कुछ नई किस्मों का विकास कर रहा है, कुछ इस पे काम हो रहा है?
1: हाँ देखिए, जो अप्रचलित फल है या जो कम लोग जानते हैं इसके बारे में, इसके लिए जो है भारतीय कृषि अनुसंधान ने पूरा एक इंस्टीट्यूट दिया है जो कि केंद्रीय शुष्क बागवानी के संस्थान के नाम से बीकानेर में स्थापित है। और ये जो है इसी फसलों पे काम करते हैं, केर है, करौंदा है, लसोड़ा है, बेल है, आंवला है, जामुन है। तो इसमें बहुत सारे किस्में विकसित हुई हैं, खास करके अगर जामुन की बात करें तो जामुन में बहुत सारे अच्छी किस्में हैं, जैसे गोमा प्रियंका है, थार क्रांति है, ये राजेंद्र जामुन है, उसके बाद वहाँ जामुन तो विकसित की गई है लखनऊ से जो है, इसे बड़े अच्छी किस्म है जामुन के जो कि बिल्कुल गूदा बहुत ज्यादा होता है और बीज की मात्रा कम होती है। उसी तरह अगर आप करौंदा की बात करें तो करौंदा में भी कुछ किस्में विकसित की गई हैं, जैसे कि पूसा पंत सुदर्शन है, शिवानी है, मैरून रेड है। अभी काजरी जोधपुर से थार मरु कर करके एक किस्म है जो विकसित की गई है करौंदा की, CZK 2011 है, 2022 है, 2031 है। तो इन फसलों में तो काफी अच्छी प्रगति हुई है। उसी तरह मलबरी जो शहतूत की आप बात कर, शहतूत में भी कुछ अच्छे किस्म है, लेकिन कुछ ऐसे फसल है जैसे कि केर के बारे में, तो केर में अभी भी जो है कोई विकसित किस्म नहीं है। इसमें केवल आप जाइए कभी राजस्थान या दूसरे इलाके में जाइए जहाँ ये होता है केर, तो आपको केवल दो टाइप के मिलेंगे उसमें, एक जो है बड़ा होता है, एक छोटा होता है। तो छोटे वाले की कीमत जो है वो ज्यादा होती है बड़े वाले की अपेक्षा से, क्योंकि उसकी सब्जी वगैरह बहुत स्वादिष्ट बनती है और बड़े वाले में बीज चूंकि बहुत ज्यादा होता है तो इसलिए उसमें वो कम प्रचलित है। लेकिन किस्मों के नाम पे वो इसी नाम से जानते हैं, छोटा वाला और बड़ा वाला। इसी तरह गूंदा में जिसको कि हम लसोड़ा भी कहते हैं, तो लसोड़ा में एक अभी किस्म विकसित की गई है केंद्र शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर से, ये थार बोल्ड करके है, बहुत अच्छी किस्म है वो, और वो दोनों सब्जी और अचार बनाने के काम आ रहे
0: हैं। जी डॉक्टर साहब, इसमें बहुत से फल हैं जिनको तो संरक्षित करने की क्षमता होती है, लेकिन एक जामुन ऐसा फल है कि बहुत जल्दी खराब होता है। क्या कुछ आपके वैज्ञानिक इस पे काम कर रहे हैं कि इसको थोड़ा ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखा जाए और ज्यादा दिन तक इसके चाहने वाले प्रयोग कर सके?
1: आपने सही कहा कि जो है तुरंत तोड़ने के बाद जो है उसको तुरंत बाजार भेजना पड़ता है, नहीं तो जो है वो खराब हो जाता है।
0: जी,
1: आजकल इसकी पल्प निकाल करके बिल्कुल डीप फ्रीजिंग कर दे रहे हैं और इसी तरह इसका जो है जूस भी बनता है, कुछ लोग स्क्वैश भी बनाते हैं, कुछ लोग इसका जाम भी इसकी जो है उससे बना लेते हैं।
0: जी डॉक्टर उपय अवस्थी जी, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी जो हमारे अपरिचित फल हैं उनके बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो गौतम, इस कार्यक्रम में जानकारी के साथ साथ मनोरंजन भी करवाते हैं, तो सावन चल रहा है और सुनवाते हैं सावन का गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे सावन का गीत।
1: तो गौतम, बात कर लेते हैं मौसम के हाल की। तो कल का मौसम कैसा रहने वाला है? तापमान लगभग 28 सेल्सियस से 37 सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम साफ और धूप वाला रहने का अनुमान है। बारिश की संभावना कम दिख रही है। दोपहर में गर्मी और उमस महसूस हो सकती है।
0: मंजीत, हम लोग अपने कार्यक्रम में मौसम पर आधारित कृषि संबंधी सलाह देते हैं अपने किसान भाइयों को। अगर किसान भाई स्वीट कॉर्न, जिसको कि माधुरी या बेबी कॉर्न भी आप बोल सकते हैं, उनकी अगर बुआई करनी हो तो आप मेड़ों पर करें।
1: और इस मौसम में किसानों को सलाह है कि फूलगोभी की पूसा शरद, पूसा हाइब्रिड 2, पंत शुभ्रा की रुपाई हेतु पौध तैयार करना शुरू करें। खरीफ प्याज की तैयार पौध की रुपाई मेड़ों, उथली क्यारियों पर ही करें।
0: अगर वही किसान भाई अगर कद्दू बरगी एवं अन्य सब्जियां हैं अगर किसान भाई उगाते हैं, तो उसमें एक चीज उनको बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनमें मधुमक्खियों का बड़ा योगदान है। वे परागण में सहायता करती हैं, इसलिए जितना संभव हो सके मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दें। कीड़ों एवं बीमारियों की निरंतर निगरानी करते रहें और कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क रखें।
1: और इस मौसम में किसानों को सलाह है कि यदि टमाटर, मिर्च, बैंगन, फूलगोभी व पत्ता गोभी की पौध तैयार है तो रुपाई मेड़ों यानी कि उथली क्यारियों पर ही करें। तो गौतम, अब हम बात करते हैं आजादपुर मंडी के फल एवं सब्जियों के ताजा भाव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आलू की। तो आलू है 15 से 18 रुपए प्रति किलो। वहीं प्याज की बात करें तो 25 से 35 रुपए प्रति किलो। टमाटर 25 से 35 और बीन्स की बात करें तो 30 से 60 रुपए प्रति किलो। और बैंगन इस समय 15 से 25 रुपए प्रति किलो है।
0: बिल्कुल मंजीत, आपने सब्जियों की बात की और फल भी किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और केला अगर बात करें तो 20 से 25 रुपए प्रति किलो। सेब की बात करें तो 150 से 180 रुपए प्रति किलो। और अमरूद की बात करें तो 80 से 100 रुपए प्रति किलो। मौसमी 30 से 40 रुपए प्रति किलो। और पपीते की बात करें तो 30 से 40 रुपए प्रति किलो। किसान भाइयों, हम अभी आपके साथ फल और सब्जियों के भाव साझा कर रहे थे जो कि हमें आजादपुर मंडी से प्राप्त होते हैं। और आपको कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी सुझाव और प्रतिक्रियाएं हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com।
1: और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
0: नमस्कार।

0: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए,
1: कोई डर नहीं।
2: अब भोले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसन किसानवाड़ी, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास की आवाज में ये गजलें। गजलों पर आधारित ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सात बजकर 45 मिनट होने को है, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लिया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित और लक्षित बिक्री शुरू की। खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत लगभग 131 किलोग्राम खराब खाद्य सामग्री नष्ट की गई। और दिल्ली यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन पर यातायात परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आज राजधानी के द्वारका स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल में H1N1 से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। श्री सिंह ने अस्पताल में बनाए गए विशेष H1N1 आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण करने के साथ मरीजों के इलाज और देखभाल के इंतजामों का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन, दवाइयों, फ्लूइड, स्वास्थ्य परीक्षण और दूसरे जरूरी मेडिकल सुविधाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।
2: दिल्ली गवर्नमेंट के सारे डॉक्टर, सारा स्टाफ काम कर रहा है। उनको इंश्योर किया कि आइसोलेशन रूम बने और आइसोलेशन रूम में हर चीज की सुविधा हो, जिसमें आप टेस्ट कर सकें, आप कोई इमरजेंसी हो आप फ्लूड ले सकें, सारी चीज की व्यवस्था है। साथ साथ 24 घंटे डॉक्टर्स अवेलेबल रहे, रात की इमरजेंसी में भी अवेलेबल रहे। हमने ये इंश्योर किया है कि चाहे टेस्ट की बात हो चाहे दवाई की बात हो, हर चीज अवेलेबल रहे और हर चीज हमारे हॉस्पिटल में, दिल्ली सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल है।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय में आयोजित प्रबोधन प्रेरण कार्यक्रम 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने और भविष्य में अन्वेषक और नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने के लिए प्रेरित किया। श्री संधू ने विश्वविद्यालय द्वारा महिलाओं के लिए तकनीकी शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अवसर तैयार करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को तकनीकी शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना न केवल उनके व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की भागीदारी को भी मजबूत करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कार्यक्रम में महिलाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार से जोड़ते हुए उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने पर विशेष बल दिया गया।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज बेटियां इंजीनियरिंग, तकनीकी, विज्ञान, अंतरिक्ष और रक्षा सहित हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने कहा कि छात्राओं को केवल मौजूदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि AI और नई तकनीकों की निर्माता बनकर भविष्य के समाधान तैयार करने चाहिए। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा नेत्र नारी नेतृत्व जैसी पहले आगे बढ़ाई गई है, जिसके तहत दिल्ली पुलिस के लिए 75 सर्विलेंस ड्रोन विकसित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रयास है कि राजधानी की हर बेटी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और

0: में प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए समान अवसर उपलब्ध हों। इस अवसर पर मौजूद दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि सरकार लगभग 160 एकड़ में एजुकेशन सिटी विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। साथ ही छात्र और युवा उद्यमियों को सहयोग देने के लिए 400 करोड़ रुपए की स्टार्टअप और उष्मयान नीति को मंजूरी दी गई है। श्री सूद ने छात्राओं से महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नए समाधान विकसित करने का भी आह्वान किया। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि दुनिया नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की प्रगति और क्षमता की सराहना कर रही है और इस क्षेत्र में निवेश के लिए उत्सुक है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 2 से 5 नवंबर तक नई दिल्ली में होने वाले भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026 में करीब 8 से 10 देश साझेदार देश शामिल होंगे। श्री जोशी ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश ने नवीकरणीय स्रोतों से 300 गीगावाट से अधिक ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य पार कर लिया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 50 लाख घरों में सौर ऊर्जा प्रणालियां स्थापित की गई हैं। साथ ही पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
0: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: सरकार ने आने वाले महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी कीमतों को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित और लक्षित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खंडे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर NCCF नेफेड और केंद्रीय भंडार के बिक्री केंद्रों तथा दिल्ली में मोबाइल वैन के माध्यम से बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि देश में प्याज के उत्पादन या उपलब्धता की कोई कमी नहीं है।
2: हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो पिछले वर्ष के मुकाबले भी सामान्य है।
1: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार आने वाले महीनों में घरेलू मांग पूरी करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है। वर्ष 2025-26 में प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक रहने का अनुमान है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार भाटिया के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान आदर्श नगर क्षेत्र में औद्योगिक अवसंरचना, पर्यावरण संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और हरित क्षेत्र के विस्तार से संबंधित विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई। बैठक में दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड DSIIDC के वरिष्ठ अधिकारी, जहांगीरपुरी स्थित राजस्थान उद्योग नगर से जुड़े प्रतिनिधि तथा वन एवं खाद्य और आपूर्ति विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। राजस्थान उद्योग नगर में DSIIDC द्वारा कराए जा रहे सड़क और वर्षा जल निकासी कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री सिरसा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी बुनियादी ढांचे के कार्य टिकाऊ, दीर्घकालिक और तकनीकी मानकों के अनुरूप हों। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले अपशिष्ट जल को उचित वैज्ञानिक व्यवस्था के माध्यम से नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसके अलावा श्री सिरसा ने औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति सहित संबंधित विभागों को प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और अपशिष्ट के अवैज्ञानिक निपटान की प्रथाओं के विरूद्व सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि नई दिल्ली नगर परिषद के क्षेत्रों में लापरवाही के कारण जल जमाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात श्री सिंह ने परिषद की बैठक के दौरान कही। बैठक के दौरान श्री सिंह द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि दोबारा जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होने पर

0: संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली नगर निगम की विशेष तदर्थ और वैधानिक समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए आज सिविक सेंट्रल स्थित निगम सचिव कार्यालय में नामांकन दाखिल किए गए। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने निगम की समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर नामांकन दाखिल करने वाले पार्षदों को शुभकामनाएं दी। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ और 1 सितंबर तक चलेगा। सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत वंदे मातरम से शुरू हुई, हालांकि इस दौरान कांग्रेस विधायक सदन से बाहर ही रहे। इसके बाद विपक्ष के नेता और अन्य विधायकों ने विरोध दर्ज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी।
1: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है।
0: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसे पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि त्योहारी मौसम से पहले राजधानी दिल्ली में खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत लगभग 131 किलोग्राम खराब हो चुकी खाद्य सामग्री नष्ट की गई। श्री सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा टीमों ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत पनीर, खोया, घी, मिठाइयों और अन्य खाद्य उत्पादों के 37 नमूने एकत्र किए। उन्होंने बताया कि इन सभी नमूनों की गुणवत्ता जांच के लिए निर्धारित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा और प्रयोगशाला के नतीजों तथा कानून के लागू प्रावधानों के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से आए बच्चों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस अवसर पर बच्चों ने मुख्यमंत्री को अपने हाथों से राखियां बांधी। दिल्ली यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन के त्योहार के मद्देनजर कल तक के लिए एक यातायात परामर्श जारी किया है। यातायात परामर्श जारी करते हुए पुलिस ने बताया कि इस दौरान आनंद विहार अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, राष्ट्रीय राजमार्ग 9 और विकास मार्ग के आसपास पैदल चलने वालों और गाड़ियों की आवाजाही अधिक रहने की आशंका है। पुलिस ने यात्रियों को इन मार्गों पर यात्रा से बचने की सलाह दी है। इसके अलावा लोगों को यात्रा की योजना पहले से बनाने को भी कहा है। पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने, मौके पर तैनात यातायात कर्मियों का सहयोग करने और भीड़ भाड़ से बचने के लिए वाहन चालक डायवर्जन संबंधी संकेतों के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विवेकानंद केंद्र के अखिल भारतीय अध्यक्ष रहे ए बालकृष्णन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने समाज के प्रति

बालकृष्णन के उल्लेखनीय योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन के 5 दशक से अधिक स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और राष्ट्र सेवा को समर्पित किए। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनका जीवन स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए समर्पित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। राजधानी दिल्ली में आज भी कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लिया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित और लक्षित बिक्री शुरू की। खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत लगभग 131 किलोग्राम खराब खाद्य सामग्री नष्ट की गई और दिल्ली यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन पर यातायात परामर्श जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 8 बज चुके हैं। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, मैं हूं आपके दोस्त और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गीत मालिका। रात की शांत फिजा में जब चारों ओर खामोशी ने अपनी चादर ओढ़ ली है, तो आइए सुनते हैं खूबसूरत नगमों के साथ इस पल को हसीन और भी बना देते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कार्यक्रम गीत मालिका की इस खूबसूरत गीत के साथ।

जी दोस्तों, चांद ढल रही है और दिल को है उनसे मिलने का इंतजार। कुछ ऐसी ही खूबसूरत है मोहब्बत, हर पल लगे जैसी कि पहली मुलाकात का है एक प्यारा सा खुमार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

बस तो मोहब्बत इतनी हो कि उसकी खुशी अपनी खुशी से भी प्यारी लगे, उसका साथ मिले तो हर मुश्किल आसान और हर पल खास लगे, प्यार हद से गुजरे तो बस इतना कि दिल में उसकी जगह कोई और न ले सके। कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में आप सुन रहे थे बहुत ही खूबसूरत ये गीत फिल्म बरसात से। आइए सुनते हैं गीत मालिका का अगला फूल।

दोस्तों उनकी नजरों में कुछ ऐसा जादू था कि दिल ने बिना सोचे अपना मान लिया। एक नजरे क्या मिली उनसे, मोहब्बत ने अपना पूरा अफसाना लिख दिया। विनोद राठौड़ की आवाज में आप सुन रहे थे बहुत ही खूबसूरत ये गीत जो दिल को और भी खुश कर दिया था, और मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ आपके भी पैर थिरकने लग गए थे। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही खूबसूरत गीत, मेरे साथ बने रहिए, मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया।

दोस्तों कभी कभी जाने दो के पीछे भी रुक जाओ छुपा होता है। बस समझने वाले की नजर और महसूस करने वाले का दिल चाहिए। आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म सागर से।

दोस्तों, प्यार भी अजीब चीज है। जब धीरे धीरे दिल में उतरता है ना, तो उसका रंग कुछ और ही होता है। पहले एक छोटी सी पसंद होती है, फिर उसकी आदत बन जाती है, और कब वही इंसान दिल की खूबसूरत वजह बन जाता है पता ही नहीं चलता। शायद इसी एहसास का नाम है मोहब्बत। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म फूल और कांटे से।

दोस्तों, अगर रहा मुश्किल हो ना तो थोड़ा ठहर जाना, मगर हिम्मत मत हारना। मैं हूँ तुम्हारे साथ, बस खुद पर और अपने प्यार पर भरोसा रखना। यही इस गाने में बताया गया है कि अपने प्यार पे भरोसा करिए।

दोस्तों कहते हैं ना, नौजवान उम्र से नहीं अपने हौसले से पहचाने जाते हैं, और जब हौसले के साथ सच्चा प्यार जुड़ जाए ना, तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आसान लगने लगता है। किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म कर्ज से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: हाँ दोस्तों, प्यार बहुत खूबसूरत चीज है और इसे करना भी जरूरी है, तभी जिंदगी और खूबसूरत हो जाती है। इस गीत के साथ कार्यक्रम गीत माली का यहीं संपन्न होता है। मैं आपकी दोस्त प्रिया अब आपसे विदा लेती हूँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, TRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय, मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ, भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से 9111230887818 और 9111230887819 पर संपर्क किया जा सकता है। व्हाट्सएप कॉल और संदेश के लिए 9199681918 नंबर जारी किया गया है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए 9775131687 9770910750 और 9779810326117 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल में छोछेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के जल संसाधन

0: मंत्रालय के अनुसार झील में अगले 3 दिन में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की।
1: बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक बैराज पर जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि नेपाल के देवघाट क्षेत्र में बारिश के कारण नदी के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि
2: नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है, सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है।
1: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि अतिरिक्त बचाव दल की 4 टीमें तैयार रखी गई हैं। इधर पड़ोसी देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने समस्तीपुर रेल मंडल में अलर्ट जारी किया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरूआती सहायता दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
4: डिस्कशंस आर एक्सपेक्टेड। दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। इसमें व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क शामिल है। ये बातचीत भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करेगी।
0: ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत विनिर्माण, नवाचार और निर्यात के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से भारत की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुधारों के जरिए हो रहे बदलाव और मजबूत आर्थिक वृद्धि से भारत कनाडा के बीच अधिक मजबूत और निवेश आधारित आर्थिक साझेदारी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार का वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए की रक्षा निर्यात का लक्ष्य है।
5: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
0: रक्षा मंत्री ने टैंक मरम्मत परियोजना को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और मानव कल्याण की प्रेरणा देते हैं। अहमदाबाद में आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और कौशल आधारित विकास को प्राथमिकता दी गई है, जो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप हैं।
6: पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय न हो, अपना न हो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं हैं तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं। और मन में स्वराज की परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया।
0: श्री शाह ने वर्ष 2047 तक सभी क्षेत्रों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल दिया। अहमदाबाद में फार्मा इनोवा अवार्ड्स 2026 में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
7: राजीव भाई ने शुरुआत की और आज ये परंपरा ढेर सारे लोगों में रिसर्च के फील्ड में काम करने के लिए न केवल अनुकूलता बनी, आर्थिक मदद भी हुई। एक प्रकार से ये अवार्ड उनको एक्नोलेज करता है सोसाइटी में और इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने में। ये बहुत बड़ी बात है जो रजनी भाई ने उस जमाने में सोची।
0: गृह मंत्री ने अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है।
9: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलों को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। खेल दिवस के अवसर पर आज IFLU विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की पहल से देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीत रहा है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रूपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि सरकार हर वर्ष ये सुनिश्चित करती है कि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध हो।
10: हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले भी सामान्य है।
0: मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने पांचवां स्थान हासिल कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत के लिए इश्का ने एक और नवनीत कौर ने दो गोल किए। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल लेन क्रिंक्स ने किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय, मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ, भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. India steps up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to flash flood tragedy. To 90 Indians among nearly 1300 missing people, death toll rises to 359. Heavy rain likely over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan from Saturday. Defence Minister Rajnath Singh lays foundation stone for T-Series tank overhauling project at Jabalpur in Madhya Pradesh, terms it another milestone in nation's journey towards self-reliance. Government begins targeted release of onions from buffer stock to ensure adequate availability and moderate seasonal price pressures in coming months. And in men's cricket, second test between India and hosts Sri Lanka ends in a draw. Visitors clinch the series 1-0. And now the news in detail. India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in the yesterday's massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,300 people missing as of today. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal. These include 63 workers of the Trishuli 1 project as well as 21 people from Tamil Nadu. The ministry said that contact with 290 Indians have not been established so far. Addressing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Indian Embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected area have been disrupted. Mr. Jaiswal said the Indian authorities are making all possible efforts in coordination with the Nepalese authorities to establish contact with the stranded Indians and ensure their safety.
11: Prime Minister yesterday spoke to the Prime Minister of Nepal, conveyed our deepest condolences, conveyed that India stands in solidarity with people of Nepal, has also offered all possible humanitarian assistance from our side.
3: Mr. Jaiswal said India has sent more than 47 tons of emergency relief supplies aimed at supporting Nepal's ongoing rescue and relief operations. He said that India is also mobilizing Bailey Bridges to assist in rescue and relief efforts. Mr. Jaiswal said that government has set up a control room in the Ministry of External Affairs, which will function round the clock. He said Indian embassies, both in Kathmandu and Beijing, have also set up 24/7 helplines.
12: on the Indian national stranded on the Chinese side. Mr. Jaiswal said that Indian embassy in Beijing is making all efforts for their safe evacuation.
13: The Chinese side, the number of Indians who had gone on the Kailash Mansarovar Yatra are currently stranded on the Chinese side. Our embassy in Beijing is making all efforts for their safe evacuation. There are approximately 200 Indian nationals there who have sought our assistance for evacuation. Of them, 95 are in Darchan and currently proceeding to Hilsa to cross over into Nepal. 4 are in Geelong city, 13 Zutulpuk, and they are en route to the town of Saga, and 60-70 others who are also heading towards Saga. Our mission is in touch with local authorities and they are doing their best for their rescue and evacuation.
12: The Ministry of External Affairs has set up a round-the-clock control room in New Delhi to assist the people. The control room can be contacted at +9111-2308-8718, +9111-2308-8719. For WhatsApp calls and messages, the number is +91 9968 291 988. It can be contacted. The emergency contact numbers of the Indian Embassy in Kathmandu are +977 985 131 6807, +977 970 910 7500, and 977 981 032 6117. The flash floods were caused after an avalanche blocked the flow of the Lende tributary of the Bhotekoshi and first hit Timore near Nepal's border with China at Rasuwagadi. The National Disaster Response Force, NDRF, today said the devastating flash floods in Nepal have so far had no adverse impact on the border areas of Bihar and Uttar Pradesh. However, the situation is being continuously monitored in coordination with the two state governments. NDRF Inspector General Narendra Singh Bundela said 20 NDRF teams have been deployed in the two states, including 9 in Bihar and 11 in Uttar Pradesh. In Bihar, Chief Minister Samrat Chaudhary today conducted an aerial survey of the Balmiki Nagar Gandak barrage and reviewed the situation in view of the flash floods in Nepal. More from a correspondent.
14: 9 NDRF team have been deployed in Bihar to deal with any emergency, while 4 additional rescue teams have been kept on standby. Chief Minister Samrat Chaudhary said that the situation in the state is gradually returning to normal. The government is fully prepared to deal with any emergency situation. Mr. Chaudhary also reviewed emergency preparedness today in border areas including Bagha, Valmiki Nagar, Betia and Motihari. In view of the flood situation in the neighboring country, the East Central Railway has also issued an alert in the summer Samastipur Railway Division. Savita Parikh, Akashwani News, Patna.
12: The Uttar Pradesh government has activated relief and rescue teams along with necessary resources to safely evacuate citizens of the state stranded in Nepal and provide them with immediate assistance. Our correspondent has filed this report.
15: In Uttar Pradesh, the control room of the Relief Commissioner's Office is continuously monitoring the situation in the districts bordering Nepal. The state government has deployed 1 platoon of SDRF for the relief and rescue operation in Nepal. The platoon comprises 32 personnel. In addition, 22 personnel from the 26th Battalion of PAC have also been sent to Nepal. The government has made preparations to provide additional forces and resources as required, ensuring that there is no shortfall in delivering relief to the affected people. Family members of Uttar Pradesh citizens stranded in Nepal may contact helpline number 1070 for any information or assistance. Om Awasthi, Akashwani News, Lucknow.
12: Meanwhile, the India Meteorological Department or IMD has forecast heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. IMD also predicted heavy rainfall over Odisha, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. This is Akashwani giving you the news.
16: For news at your fingertips, follow us on X at AIR News Alerts and join our WhatsApp channel Akashwani News.
3: For news and updates anytime, anywhere, follow us on X at AIR News Alerts and on Facebook at All India Radio News.
12: Welcome back to the evening news. Prime Minister Narendra Modi will be on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republics starting this Saturday. Addressing a press conference in New Delhi, External Affairs Ministry Secretary West C.B. George said, on the first leg of his visit, the Prime Minister will undertake a two-day state visit to Tashkent in Uzbekistan at the invitation of the President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. During the visit, Mr. Modi will hold delegation-level talks with President Mirziyoyev to further strengthen the strategic partnership between India and Uzbekistan.
17: Discussions are expected to cover a wide range of areas of mutual interest and identify new avenues for strengthening bilateral cooperation, including trade and investment, critical minerals, healthcare, business-to-business engagement, education, space, technology, culture, and people-to-people exchanges. This engagement will provide an opportunity to highlight the long-standing cultural ties between India and Uzbekistan, as well as the important role of academic and people-to-people exchanges in further strengthening bilateral relationship.
12: From Tashkent, the Prime Minister will travel to Bishkek, Kyrgyzstan, to participate in the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit on the 31st of this month at the invitation of the President of Kyrgyz Republic, Sadur Japarov. Defence Minister Rajnath Singh has said the country is moving towards self-reliance in the defence sector, as defence production has nearly quadrupled to around 1.8 lakh crore rupees and exports have surged to nearly 39,000 crore rupees over the last decade. The Defence Minister made the remarks after laying the foundation stone of a 472 crore rupee facility for the overhaul of T-Series battle tanks at the 57-year-old vehicle factory Jabalpur in Madhya Pradesh. Mr. Singh said the government has set a target of achieving defence exports worth 50,000 crore rupees by 2028-29 fiscal. He added, the project would also open up employment opportunities for the local people. Mr. Singh described the tank overhaul project as a major milestone for India's self-reliant industrial ecosystem.
18: This project is a strong link in the journey towards a stronger and self-reliant India. Our goal is to ensure that in the coming years, India establishes a strong identity as one of the world's leading defense manufacturing and export hubs. Facilities like the one in Jabalpur will play an important role in achieving this national vision. I'm fully confident that all the stakeholders associated with this project will fulfill this responsibility with utmost efficiency, dedication and sincerity.
12: Prime Minister Narendra Modi has said that the government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. He said from sports universities to modern training centers, an ecosystem is being developed across the country where talent receives support at every stage. Addressing the Khelo India dialogue through video conferencing today, Mr. Modi said that sports is not limited merely to winning medals. Rather, it is a mission to unite India's sporting prowess and youth power in the building of a developed India.
9: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है. ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है. मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है. खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना.
12: Home and Cooperation Minister Amit Shah emphasized that Mahatma Gandhi's philosophy remains timeless, relevant and dedicated to human welfare. Addressing students during the 72nd convocation ceremony of Gujarat Vidyapeeth in Ahmedabad today, Mr. Shah called upon the youth to actively participate in the national reconstruction by 2047. The government has commenced calibrated and targeted release of onions from the buffer stock to ensure adequate availability and moderate seasonal price pressures in the coming months. Secretary, Department of Consumer Affairs Nidhi Khare today flagged off onion vans for retail distribution from Krishi Bhavan, New Delhi, for the consumers of the National Capital Region. Onions from the government's price stabilization buffer are being sold at a subsidized rate of 35 rupees per kilogram through NCCF, NAFED and Kendriya Bhandar outlets, as well as mobile vans across Delhi. On the eve of Raksha Bandhan, President Draupadi Murmu has extended greetings to people. The President said that the festival of Raksha Bandhan has been an integral part of country's culture and tradition since ancient times. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. on Sunday. On to sports. In men's cricket, second and final test between India and host Sri Lanka ended in a draw in Colombo. Sri Lanka reached 429 for 9 in their second innings, taking a lead of 216 runs on the fifth and final day before both captains agreed to call off the match. Despite the draw, the Shubman Gill-led side clinched the two-match series 1-0. Batting first in the second test, India had declared at 503 for 9 before bowling Sri Lanka out for 290 to secure a 213-run first innings lead. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India steps up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to flash flood tragedy. 290 Indians among nearly 1,300 missing people. Death toll rises to 359. Heavy rain likely over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. Prime Minister Narendra Modi to embark on a four-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan from Saturday. Defence Minister Rajnath Singh lays foundation stone for T-Series tank overhauling project at Jabalpur in Madhya Pradesh, terms it another milestone in nation's journey towards self-reliance. Government begins targeted release of onions from buffer stock to ensure adequate availability and moderate seasonal price pressures in coming months. And in men's cricket, second test between India and host Sri Lanka ends in a draw. That is all in the news at 9. Good night.

0: आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आप हमारे नशियात समाप्त कर रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के जरिए और डीडी फ्री डिश पर। शब के 9:45 हो चुके हैं, आइए अब सुनते हैं खबरें।
1: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल हफीज। भारत ने नेपाल में सैलाब के अलमनाक हादसे के सबब वहां फंसे भारतीय बाशिंदों का पता लगाने और उन्हें महफूज मकाम तक पहुंचाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। तकरीबन 1300 लापता अफराद में 290 भारतीय हैं, मरने वालों की तादाद बढ़कर 359 हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज से उज़्बेकिस्तान और जमहूरिया किर्गिज के 4 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में टी सीरीज के टैंक ओवरहोलिंग प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। उन्होंने इसे खुद किफालत की जानी मुल्क के सफर में एक और संग मील करार दिया। हुकूमत ने प्याज के वाफिर जखीरे से निशान जद जखीरा जारी करना शुरू कर दिया है ताकि आने वाले महीनों में इसकी खातिर ख्वाह दस्तियाबी और त्योहारों के दौरान कीमत के दबाव को मुतदिल रखने को यकीनी बनाया जा सके। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और शिमाल मशरकी रियासतों में हफ्ते के रोज तक तेज बारिश की पेशगोई की गई है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और मेजबान श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ। मेजबान भारत ने 1-0 से सीरीज जीत ली। अब खबरें तफसील से। भारत ने नेपाल में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाइस फंसे हुए भारतीय शहरियों की तलाश और बचाव की कोशिशें तेज कर दी हैं। कल नेपाल में अचानक आने वाले शदीद सैलाब से हलाकतों की मजमूई तादाद 359 हो गई है, जबकि हुक्काम 1300 से ज्यादा लापता अफराद को तलाश करने के लिए हिमा वक्त जिद्दोजहद कर रहे हैं, जिनमें 290 भारतीय शहरी भी शामिल हैं। आज नई दिल्ली में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि जब नेपाल में सैलाब का यह सानिहा पेश आया तब वहां 290 भारतीय शहरी मौजूद थे। इन भारतीय शहरियों से अभी तक राब्ता कायम नहीं हो सका है। इनमें वो 63 भारतीय शहरी भी शामिल हैं जो तिरशोली वन पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। जनाब जायसवाल ने कहा कि काठमांडू में वाकई भारतीय सिफारतखाना प्रोजेक्ट के हुक्काम से मालूमात हासिल करने के लिए राब्ते में है, क्योंकि मुतासरा इलाकों में मुआसलाती राब्ते मुनक्ते हो गए हैं। वजारत खारजा ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गए तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले 21 भारतीय शहरियों को नेपाल में बचा लिया गया है। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारतीय हुक्काम नेपाली हुक्काम के साथ मिलकर फंसे हुए भारतीय शहरियों से राब्ता कायम करने और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। भारत बचाव और इमदादी कार्रवाईयों में ताउन के लिए बैली पुलों को भी मुतहरिक कर रहा है। जनाब जायसवाल ने कहा कि वजारत खारजा में 24 घंटे काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। उन्होंने बताया कि काठमांडू और बीजिंग में वाकई भारतीय सफारतखानों ने भी 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइंस कायम की है। चीन के इलाके में फंसे भारतीय शहरियों के बारे में उन्होंने कहा कि बीजिंग में भारतीय सफारतखाना उनके महफूज इनखला के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। तकरीबन 200 भारतीय शहरियों ने इनखला के लिए मदद तलब की है। वजारत खारजा ने लोगों को ताउन फराहम करने की गर्ज से नई दिल्ली में 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया है। काठमांडू में भारतीय सफारतखाने के इमरजेंसी राब्ता नंबर हैं +9779851316807, +9779701705000 और 9779813261117। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का फिजाई सर्वे किया और नेपाल में आए सैलाब के तनाजुर में सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज से जमहूरिया उज़्बेकिस्तान किर्गिस्तान के 4 रोजा सरकारी दौरे पर होंगे। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने कहा कि वजीर आजम अपने दौरे के पहले मरहले में उज़्बेकिस्तान के सदर की दावत पर ताशकंद के 2 रोजा सरकारी दौरे पर जाएंगे। जनाब मोदी भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव के साथ वफद सतह की बातचीत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों रहनुमा तजारत और सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल कनेक्टिविटी।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 500 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,100। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेज डिफेंस प्रोडक्शन नियरली क्वाड्रुपल्स टू अराउंड 1.8 लाख करोड़ रुपीस इन 10 इयर्स एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज।
1: घरेलू शेयर बाजार में आज भी गिरावट का रुख। सेंसेक्स 500 अंक से अधिक लुढ़का और निफ्टी 24,100 अंक से नीचे बंद हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 10 वर्षों में रक्षा उत्पादन 4 गुना होकर 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई।
0: And before we take our main stories in detail, here is a very important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक लगातार दूसरे दिन आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 543 अंक यानी 0.70% गिरकर 76,934 पर पहुंच गया। निफ्टी 117 अंक यानी 0.48% लुढ़ककर 24,091 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में भी 0.1% की सुस्ती देखी गई। इससे पहले आज कारोबार की शुरुआत में बाजार में तेजी दिखी, जिसके मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों में कमी और ईरान तथा ओमान के बीच कूटनीतिक बातचीत रहे। हालांकि जल्द ही दोनों सूचकांकों ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवाई और नीचे आकर कारोबार करने लगे। सेंसेक्स के मंथली फ्यूचर्स और ऑप्शंस की एक्सपायरी के कारण बिकवाली का दबाव बना रहा, जिससे ज्यादातर समय दोनों सूचकांक एक सीमित दायरे में ही रहे। बाद में क्लोजिंग ऑप्शन सेशन के दौरान गिरावट आई।
0: Benchmark domestic equity indices ended on a negative note for the second consecutive session today. Sensex declined by 539 points, 0.70% to close at 76,934. Nifty lost 117 points, 0.48% to settle at 24,091. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index and the small-cap 100 index dipped 0.1% each. Earlier, the markets opened on a positive note, supported by easing crude oil prices and hopes of a diplomatic breakthrough between Iran and Oman. However, both the stock market indices soon gave up their early gains and slipped into negative territory. The indices remained largely range-bound through most of the session as selling pressure persisted due to Sensex monthly futures and options expiry. In the subsequent closing auction session, the indices extended their losses.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 24 कंपनियों को आज नुकसान हुआ। सबसे अधिक खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में एचडीएफसी बैंक 2.1%, एनबीसी में 2% और महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.8% नीचे आ गया। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक में आज 1.7%, आईसीआईसीआई बैंक 0.9% और टेक महिंद्रा में 0.8% की तेजी दर्ज गई।
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 20 out of the 28 sectors edged downward. Among the top laggards, a mid-small private bank shed 2.6%, PSU banks lost 2.1% and BankEx dropped 1.7%. In contrast, capital

0: 10% below their all-time high, which was reached sometime last year. On the contrary, we've seen investors now flocking to mid-caps and small-caps because they've found the returns to be in mid-caps, small-caps are higher. Of course, they're not, I don't think they're discounting for the fact that the risk is also higher in mid-caps and small-caps. Right now, investors are attracted by higher returns in mid-caps and small-caps. And therefore, you see, like you mentioned, the small-cap index is almost near all-time high. That is what in small investors... Traditionally, if small cap companies, they need small capital or rather limited capital to not to scale new highs because the supply of stocks is less in small cap companies. So it, temporarily or rather in the short term, it is very attractive. Yes, investors are putting more money. Even in mutual funds, we find most of the money is now being allocated to small caps and mid caps. And large cap mutual funds have reported much lower inflows. So right now, yes, this is the flavor of the season, but I think in the long term, large caps will finally be more attractive to investors.
1: कोविड के निवेशकों का जो ध्यान है वो शिफ्ट हो रहा है लार्ज कैप की बजाय मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ. हालांकि हम ये भी देख रहे हैं बैंकिंग के जो शेयर्स में गिरावट आ रही है, तो ये भी कोई चिंता का विषय है क्या?
0: देखिए, बैंकिंग के जो क्षेत्र में हम गिरावट देख रहे हैं वो कुछ बड़े बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वहां पर हम गिरावट देख रहे हैं. थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं वहां, नंबर्स भी उतने बढ़िया नहीं आए हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो वहां पर सेलिंग कर रहे हैं. तो वहां से कुछ आप कह सकते हैं कि डिसिल्यूजनमेंट है स्मॉल इन्वेस्टर्स को, और ये काफी अच्छे से हो रहा है. ऐसा नहीं है कि एक महीना, दो महीना, तीन महीने से अंडर परफॉर्मेंस है. बैंकिंग, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग क्षेत्र में जो बड़े बैंक्स हैं उनकी अंडर परफॉर्मेंस पिछले दो वर्षों से हम देख रहे हैं. तो इन्वेस्टर्स अब कुछ वहां से आप कह सकते हो बेजार हो गए हैं वो, और उनको दिख रहा है कि स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में ज्यादा पैसा बन रहा है शॉर्ट टर्म में, मैं कहूंगा. और वहां पर वो
1: डीआईएस के लिए, एफआईएस के लिए,
0: देखिए डीआईएस के पास एक स्टेडी फ्लो ऑफ फंड है फ्रॉम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो डीआईएस तो एलोकेशन कर रहे हैं लार्ज कैप्स में, मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में. लेकिन एफआईएस जो है वो तो कॉन्सेंट्रेटेड पोजिशन लेते हैं. डीआईएस में खास बात यह मैं कहूंगा कि अभी हम देख रहे हैं कि अब जो फंड फ्लोज है वो मिड कैप, स्मॉल कैप में बढ़ रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा डिस्टॉर्शन है, पर मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में रहेगा ये.
2: Puneet, a lot of action today, including block deals as well. IPOs also coming out with their subscriptions. So, but tell us about the sectors where we saw minor gains. Capital goods went up by 0.6%, telecom 0.5%, and healthcare 0.4%. But specifically, capital goods in the context of the gross domestic product, the real economy as we call it, where because now there's a projection, because the announcement will be made on the 31st. Of August, what the first quarter GDP growth is going to be from April to the June period. How would you rate the capital goods sector right now? Because it's a very important component in our net exports.
0: So, Arjun, you're right. See, traditionally in India, stock markets have been driven mostly by the services sector. So therefore you find telecom companies doing much better in India, banking sector stocks, healthcare stocks. So all these stocks were doing traditionally much better. However, I think the last few months, while these so-called large caps, whether in IT services or in terms of healthcare, we found that these are banking, they were not giving much returns to investors, but government has put a lot of emphasis on manufacturing sector. Like, you will see a lot of push for manufacturing because in manufacturing, we have new technologies coming up, we are expanding our defense production, we are expanding our space exploration. So industry is getting a lot of push from there. And markets are responding to that. So capital goods which supplies equipment, machinery for manufacturing sector, we are seeing a lot of interesting developments there. And also, it is also linked to construction to some extent. At the same time, there are other sectors which are now emerging as defensive sectors for investors as compared to FMCGs of the world. Now, earlier, if you wanted defensive investments, you went to FMCG, now or IT. But today, if you want defensive investments, you actually go to manufacturing. Look at capital goods. So this is a changing nature of
2: the PMI manufacturing index has also gone up well above 50, 55 in fact.
0: Absolutely. So above 50, it denotes expansion of activity. So surprisingly in India, which was a mostly, even today, it's a mostly services driven economy, we find the manufacturing is making a headway. And I think markets are also kind of reflecting that change of mood.
2: So we'll have the industrial production data which will come out tomorrow as well. Let's move on to the Asian and the European markets now.
1: Okay, Asian share bazaaron mein Dakshin Korea KOSPI aaj 1.5% ki badhat aur Japan mein Nikkei 225 0.2% niche aakar band hua. Is beech Bank of Korea ne apni August mahine ki baithak mein benchmark byaj dar ko 25 aadhar ank badhakar 3% kar diya hai. Kendriya Bank ne navinatam aarthik outlook mein 2026 ke liye sakal gharelu utpad vikas dar ka anuman pehle ke 2.6% se badhakar 3.3% कर दिया है, जबकि सीपीआई महंगाई का अनुमान 2.7% पर ही बनाए रखा है. दक्षिण कोरिया में जिस तरह की हम ये बदलाव देख रहे हैं, वो ब्याज दर में जिस तरह से इन्होंने चेंजेस किया है, इसके क्या मायने हैं? और ऐसी स्थिति में हालांकि अभी लग रहा है कि साउथ कोरिया का मार्केट थोड़ा सा संभला हुआ है.
0: हाँ बिल्कुल, देखिए साउथ कोरिया का मार्केट तो बिल्कुल एक आउटलायर मार्केट रहा है स्टॉक मार्केट में. पिछले दो वर्षों में इसमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है. ऑन एनी गिवन डे हम देखते हैं 5% बढ़ जाता है, कभी 5%, बहुत वोलेटाइल स्टॉक इंडेक्स है, पर फिर भी वो एक सिस्टम को या एक दिशा बता रहा है कि इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी कहां जा रही है. साउथ कोरिया, ताइवान, जापान, हमने देखा कि ये जो इकोनॉमीज थी यहां पर एयर ड्रिवन जो मैन्युफैक्चरिंग थी, चिप मैन्युफैक्चरिंग, सेमी कंडक्टर स्टॉक्स, वो ज्यादातर लिस्टेड है वहां पर. और वहां पर काफी ज्यादा वहां पर निवेश भी आया, इन्वेस्टमेंट भी आई और बहुत बड़े पैमाने पर आई, और इसी वजह से हमने उतार चढ़ाव देखा. साउथ कोरिया को देखें तो मैं ये कहूंगा कि आज जो उन्होंने ब्याज दर बढ़ाए हैं, हालांकि उन्होंने इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन स्टेबल रखा है और अपना जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा एस्टिमेट उन्होंने बढ़ाया है, तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व के लिए एक संकेत है कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन को लेकर प्रेशर बना रहेगा इकोनॉमीज के ऊपर, और सेंट्रल बैंक्स को आने वाले समय में हो सकता है थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़े बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. हालांकि नोबडी सेज दैट, अब अमेरिका में भी आप देखेंगे कि वो ये बात कहने को तैयार नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है अगले वर्ष प्रोबेबिलिटी की इंटरेस्ट रेट ऊपर आएंगे वो ज्यादा है कंपेयर टू की इंटरेस्ट रेट कट होगा.
1: कह सकते हैं एक नेगेटिव टेरिटरी में पॉजिटिव संकेत देने की कोशिश की है.
0: नहीं नहीं, ऐसा देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ना वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो जैसे हम कहते हैं कि जब अच्छी ग्रोथ होती है तब हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, या इन्फ्लेशन होता है यानी डिमांड ज्यादा होती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, पर स्टॉक मार्केट के लिए वो वैल्यूएशन के लिए अच्छी चीज नहीं है. तो हमें लगता है कि स्टेबल इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है.
2: Defense Minister Rajnath Singh has said the country is moving towards self-reliance in the defense sector. The defense production has nearly quadrupled to around 1.8 lakh crore rupees and exports have surged to nearly 39,000 crore rupees over the last decade. Mr. Singh said the government has set a target of achieving defense exports worth 50,000 crore rupees by 2028-29 fiscal. He said India was not only manufacturing weapons domestically but was also developing the capability to maintain, overhaul and upgrade them. Your comment on defense security vis-a-vis the economy, because you're looking at manufacturing and employment.
0: So interestingly, India of course until a few years back was importing most of its defense requirements, so there were strategic issues with that, dependence on other countries, reliability of and the technical advancement that you could make. Also when you were importing all this defense equipment, then it only meant that we did not develop domestic manufacturing sector. So what had happened in the last 10 years, I think it's really remarkable the way India has emerged as a manufacturer of defense equipment domestically for our own armed forces as well as in export sector. And I know many companies personally, small manufacturing companies, which have really come up and done very well in defense sector. So it is good for India's security, strategic security, and it is also good for India's manufacturing sector because that ecosystem is now developing very well, very fast. And I think it's a remarkable, if you really look back on, I look back on the 10 years, 10-15 years of India's growth in last decade, then I think defense sector manufacturing would be the one of the biggest stories, success stories of Indian economy.
1: प्रधानमंत्री जनधन योजना के कल 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं. ये भारत के वित्तीय परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाने वाली एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को इस योजना का शुभारंभ किया था. वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ खाते खोले गए, इनसे लगभग 3,17,000 करोड़ रूपये जमा हुए हैं. प्रधानमंत्री जनधन योजना विश्व की सबसे बड़ी समावेशी पहल है जो सभी भारतीयों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है। मंत्रालय की जानकारी के अनुसार प्रति खाता 5,356 रूपये जमा हुए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 78% खाते अर्धशहरी या ग्रामीण इलाकों में खोले गए हैं, जिनमें से लगभग 56% भागीदारी महिलाओं की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने लाखों लोगों का सशक्तिकरण किया है। श्री चौधरी ने कहा कि बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं ने लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सकारात्मक बदलाव किया है। जब इस योजना का शुभारंभ हुआ था, एक ऐसी सोच रखी गई थी कि हर एक भारतीय के पास उसका बैंक खाता हो, चाहे वो किसी भी तबके का खाता हो। आज जब हम ये देखते हैं कि 3,17,000 करोड़ रुपए जमा हुए, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है।

0: देखिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे भी बड़ी उपलब्धि है कि प्रैक्टिकली हर भारतीय के पास आज एक बैंक अकाउंट है। उसका कई आप किसी तरह बेनिफिट देते हैं, दो बेनिफिट आपको बिल्कुल जो मेरे ख्याल से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, करीब करीब 1,00,000 करोड़ रूपये की यूपीआई की आज ट्रांजेक्शन होती है जो बिकॉज ऑफ जनधन योजना की वजह से है, क्योंकि गांव गांव में घर घर में आज सबके पास मोबाइल फोन है और इंटीग्रेटेड है आपके बैंक अकाउंट से। दूसरा मुझे लगता है जो सबसे बड़ी उपलब्धि इस जनधन पूरी स्कीम की रही है कि जो हम गांव गांव में हर जगह ये हम डिजिटल इकोनॉमी आई है वो एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आज हम बात करते हैं कि कोई आप लीकेज नहीं होगी सिस्टम में, आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यूपीआई ये जनधन योजना का ही एक स्वरूप है जो उसकी डेवलपमेंट से आया है और मुझे लगता है इसने ट्रांसफॉर्म किया है भारत की पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को।
1: Let's move on to what's happening in West Asia.
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर से शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है और ईरान आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा है। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल सानी आज ईरान पहुंच रहे हैं। वे ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। पुनीत जी, जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह स्टेटमेंट दे रहे हैं, लगता नहीं कि कोई जल्दी हमें एक ठोस निर्णय तक पहुंचने का मौका मिलेगा?
0: देखिए, जो ईरान और यूएस की जो वॉर है वो एक अलग ही रूप अब ले चुकी है, वो इकोनॉमिक वॉर में ट्रांसफॉर्म हो गई है। फिजिकल वॉर में बॉम्ब्स गिरना और हवाई जहाज की लड़ाई वो नहीं है, अब एक इकोनॉमिक फॉर्म एक लेती है और इकोनॉमिक वॉर जो है वो थोड़ा लंबा चलती है और स्ट्रेटेजिक वॉर होती है, तो मुझे लगता है नया रूप एक ले रही है ये वॉर अब।
1: In more news, global crude oil prices rose moderately today. Brent crude was trading 0.7% up at $88.50 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.4% up at $82.50 per barrel when reports last came in. We were talking about what's happening in West Asia between, in the Gulf area where, the shipping takes place and, oil prices are escalating as a result of what Iran is doing and what the US is doing. But Ukraine and the Russia conflict earlier had spiked the prices of Urals oil. Now that's moderated. Is that a sign of oil prices actually coming down or going up?
0: So it is basically a sign of better supply of oil in the world. Because earlier most of the oil was going either through Gulf or through the Suez Canal route. Now we have this Arctic route also opening up and therefore the Urals prices have come down. Primarily I would say this is a stabilization of the oil market I think is moving beyond the US-Iran conflict now. That they are of course settling at a higher price, but I think the oil market is stabilizing to a large extent.
2: अपनी तब को लगता है कि ईरान और ओमान के बीच में जो कूटनीतिक बातचीत हुई है इसका कोई असर पड़ेगा ऑयल मार्केट पर?
0: देखिए, वो दोनों देश ही अपनी रेवेन्यूज को जो ऑयल के और गैस के, ओमान है, कतर है, ये बेसिकली गैस के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल सप्लाईज तो आ रही है लेकिन गैस की जो सप्लाईज है वो अफेक्टेड है, तो वो दोनों देश अपनी इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाह रहे हैं। तो ये जैसे मैंने कहा कि ये वॉर जो है वो पूरी ट्रांसफॉर्म हो रही है, बदल रही है, उसका रूप बदल रहा है, उसके स्ट्रेटेजिक प्लेयर्स बदल रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू सिक्योर देयर ओन इंटरेस्ट।
2: सर्राफा बाजार में सोना 1.9% नीचे आकर 1,58,386 रूपये प्रति दस्ताम पर था और चांदी 1.9% लुढ़ककर 2,39,500 रूपये प्रति किलोग्राम पर थी। अभिन जी, एक निवेशक के नजरिए से अगर इन दोनों चीजों को देखें तो आपको क्या लगता है कैसी अप्रोच रखनी चाहिए, क्या संभावनाएं नजर आती हैं?
0: देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है चांदी और सिल्वर में काफी जंप आया है और यदि यूएस डॉलर, जैसे ऐसा लगता है हमें कि डॉलर में थोड़ी गिरावट आएगी आने वाले समय में, तो सोना चांदी के दाम और बढ़ सकते हैं। तो डेफिनेटली यूएस डॉलर की कमजोरी का कारण के वजह से हम देख रहे हैं तेजी बन रही है और जो फैक्टर्स हैं भी यूएस डॉलर वीकनेस के वो थोड़े फैक्टर हैं। अगर यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, जो चांसेस कम है, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, तब गोल्ड और चांदी में आप गिरावट देखेंगे। तो यूएस इंटरेस्ट रेट पर नजर रखिए, वहां से हमको संकेत मिलेगा कि ट्रेंड क्या होगा।
1: ऑल्सो सेंट्रल बैंक बाइंग इन टू गोल्ड वंस अगेन, व्हाई इज ट्रेंड पिकिंग up now, because silver went up and a lot of buying by Indian farmers because of the post-harvest income being diverted towards this investment. What are the central banks doing now?
0: So central banks, like I said, if the dollar index suffers

0: विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
1: सामने अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा।

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के बजकर 30 मिनट हो चुके हैं। पेश है आपका पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी नखबों का प्रोग्राम तामील इरशाद। सामिन की खिदमत में मेजबान मोहम्मद शाहरुख का आदाब। आइए सुनते हैं इस प्रोग्राम की पहली पेशकश, आप सबकी पसंद, आप सबकी नजर।

तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।

सभी अभी आपने सुना धर्मनिगार हंसा जयपुरी का ये नफमा ब्रह्मचारी फिल्म से, जिसकी तर्ज बनाई थी शंकर जयकिशन ने और आवाज थी सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की। हमें इस प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, जिसको सुनना चाहा है उत्तम कुमार बगत, श्रद्धा भगत, किशोताशु ने पाकुर झारखंड से, और एस एम जावेद, शगुफ्ता अंजुम, गुमला झारखंड सुनना चाहते हैं, और सुनने के ख्वाहिशमंद ने पंजाब से अमृतपाल सिंह, परविंदर, सचनूर और महिंदर, और सुनना चाहते हैं नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीद्दीन सिद्दीकी, दिशान अहमद सिद्दीकी छत्तीसगढ़ से, राकेश पेट्रो, सानिका पेट्रो कोलकाता से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाह रहे हैं जब्बार मोहम्मद, नजीब खान, मंजू अशरफ उदयपुर से।

0: ये आप सुन रहे थे आवारा फिल्म से, ये नगमा लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी शंकर जय किशन ने और बोल थे शैलेंद्र के। यहाँ सुनना चाह था महुआ की वैसे से वर्षा चावड़ा ने। सबके 11 बज चुके हैं, प्रोग्राम तामिल इरशाद अभी जारी है। आइए इस दौरान सुनते हैं खबरें बरेसगीर से।
1: ये आकाशवाणी है, बरसगीर की खबरों के साथ मैं अब्दुल हफीज। भारत ने नेपाल में सैलाब के अलमनाक हादसे के सबब वहां फंसे भारतीय बाशिंदों का पता लगाने और उन्हें महफूज मकाम तक पहुंचाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। तकरीबन 1300 लापता अफराद में 290 भारतीय हैं। मरने वालों की तादाद बढ़कर 359 हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज से उज़्बेकिस्तान और जमहूरिया किर्गिज के 4 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में टी सीरीज के टैंक ओवरहोलिंग प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। उन्होंने इसे खुद किफालत की जानिब मुल्क के सफर में एक और संग मील करार दिया। हुकूमत ने प्याज के वाफिर जखीरे से निशान जद जखीरा जारी करना शुरू कर दिया है, ताकि आने वाले महीनों में इसकी खातिर खा दस्तियाबी और त्योहारों के दौरान कीमत के दबाव को मुतदिल रखने को यकीनी बनाया जा सके। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और शिमाल मशरकी रियासतों में हफ्ते के रोज तक तेज बारिश की पेशगोई की गई है। और मर्दों की क्रिकेट में भारत और मेजबान श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ। मेहमान भारत ने 1-0 से सीरीज जीत ली। अब खबरें तफसील से। भारत ने नेपाल में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाइस फंसे हुए भारतीय शहरियों की तलाश और बचाव की कार्रवाई तेज कर दी है। कल नेपाल में अचानक आने वाले शदीद सैलाब से हलाकतों की मजमूई तादाद 359 हो गई है, जबकि हुक्काम 1300 से ज्यादा लापता अफराद को तलाश करने के लिए हिमा वक्त जिद्दोजहद कर रहे हैं, जिनमें 290 भारतीय शहरी भी शामिल हैं। आज नई दिल्ली में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि जब नेपाल में सैलाब का ये सानिहा पेश आया तब वहां 290 भारतीय शहरी मौजूद थे। इन भारतीय शहरियों से अभी तक राब्ता कायम नहीं हो सका है। इनमें वो 63 भारतीय शहरी भी शामिल हैं जो त्रिशोली वन पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। नरेंद्र जायसवाल ने कहा कि काठमांडू में वाकई भारतीय सफारतखाना प्रोजेक्ट के हुक्काम से मालूमात हासिल करने के लिए राब्ते में है, क्योंकि मुतासर इलाकों में मवासलाती राब्ते मुनक़ते हो गए हैं। वजारत खारजा ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गए तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले 21 भारतीय शहरियों को नेपाल में बचा लिया गया है। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारतीय हुक्काम नेपाली हुक्काम के साथ मिलकर फंसे हुए भारतीय शहरियों से राब्ता कायम करने और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल में जारी बचाव और इमदादी कार्रवाइयों के लिए 47 टन से ज्यादा हंगामी इमदादी सामान भेजा है। भारतीय बचाव और इमदादी कार्रवाइयों में ताउन के लिए बैली पुलों को भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। जनाब जायसवाल ने कहा कि वजारत खारजा में 24 घंटे काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। उन्होंने बताया कि काठमांडू और बीजिंग में वाकई भारतीय सफारतखानों ने भी 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइंस कायम की हैं। चीन के इलाके में फंसे भारतीय शहरियों के बारे में उन्होंने कहा कि बीजिंग में भारतीय सफारतखाना उनके महफूज इनखला के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। तकरीबन 200 भारतीय शहरियों ने इनखला के लिए मदद तलब की है। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का फिजाई सर्वे किया और नेपाल में आए जबरदस्त सैलाब के तनाजुर में सूरत हाल का जायजा लिया। बिहार में किसी किस्म के इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि 4 इजाफी बचाव टीमों को तैयार रहने को कहा गया है। वजीर आला सम्राट चौधरी ने कहा कि रियासत में सूरत हाल बतदरीज मामूल पर लौट रही है। सम्राट चौधरी ने बगाहा, वाल्मीकि नगर, बितिया और मोतिहारी समेत सरहदी इलाकों में आज इमरजेंसी तैयारियों का जायजा लिया। पड़ोसी मुल्क में सैलाब की सूरत हाल के तनाजुर में मशरकी वस्ती रेलवे ने समस्तीपुर रेलवे डिवीजन में अलर्ट भी जारी किया है। वजारत खारजा ने लोगों को ताउन फराहम करने की गर्ज से नई दिल्ली में 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया है। इस कंट्रोल रूम से इन नंबरों पर राबता कायम किया जा सकता है। +9 1 1 2 3 0 8 8 7 1 8 +9 1 1 1 2 3 0 8 8 7 1 9 व्हाट्सएप कॉल और मैसेजेस कॉल के लिए इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। +9 1 9 9 6 8 2 9 1 8 8 इस आईडी पर ईमेल किया जा सकता है situationroom@yahoo.go.in। काठमांडू में भारतीय सफारतखाने के इमरजेंसी राबता नंबर है +9 7 7 9 8 5 1 3 1 6 8 0 7 +9 7 7 9 7 0 9 1 0 7 5 0 0 और 9 7 7 9 8 1 0 3 2 6 1 1 7। नेपाल में सैलाब और कुदरती आफत के तनाजों में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने राहत और बचाव टीमों को जरूरी वसायल के साथ सरगर्म कर दिया है ताकि वो नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के बाशिंदों को बाहिफाजत वहां से निकाल सकें, उन्हें फौरी तौर फराहम कर सकें। उत्तर प्रदेश में रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर का कंट्रोल रूम नेपाल की सरहद पर वाक जिलों में सूरत हाल पर मुस्तकिल नजर रखे हुए है। रियासती हुकूमत ने नेपाल में राहत और बचाव कार्रवाई के लिए एसडीआरएफ की एक प्लाटून तैनात कर दी है। यह प्लाटून 32 एहलकारों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा पीएसी की 26वीं बटालियन के 22 एहलकारों को भी नेपाल भेजा गया है। हुकूमत ने जरूरत के मुताबिक इजाफी फोर्सेज और वसायल मुहैया कराने की गर्ज से तैयारियां कर ली हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मुतासर अफराद को राहत फराहम करने में कोई कमी न रह जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज से जमहूरिया उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के 4 रोजा सरकारी दौरे पर होंगे। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने कहा कि वज़ीर आज़म अपने दौरे के पहले मरहले में उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव की दावत पर ताशकंद के 2 रोजा सरकारी दौरे पर जाएंगे। मोदी भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए सद के साथ वफद सदह की बातचीत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों रहनुमा तजारत और सरमायाकारी दिफा डिजिटल कनेक्टिविटी तवानाई तालीम और अवाम से अवाम के राबते के शोबों में बाहमी ताउन का भी जायजा लेंगे और आगे की राह तय करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ताशकंद से किर्गिस्तान के शहर बिश्केक जाएंगे जहां वो जमहूरिया किर्गिस्तान के सदर की दावत पर इस माह की 31 तारीख को शंघाई ताउन तंजीम एससीओ की 26वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुल्क दिफा के शोबे में खुद सफालत की जानिब तेजी से गामजन है। पिछले एक दहाई गुजरान दिफाई साजो सामान की पैदावार तकरीबन 4 गुना बढ़कर 1.8 लाख करोड़ रूपये तक पहुंच गई है। इसी तरह दिफाई बरामदात बढ़कर तकरीबन 39 लाख करोड़ रूपये मालियत की हो गई है। जनाब सिंह ने यह बात मध्य प्रदेश के जबलपुर में वाक 57 साल पुरानी व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर VFJ में टी सीरीज के जंगी टैंकों की मरम्मत और जदीदकारी के लिए 472 करोड़ रूपये के सूरती मरकज का संगे बुनियाद रखने के बाद कही। वज़ीर दिफा ने कहा कि हुकूमत ने माली बरस 2028-29 तक दिफाई साजो सामान की बरामदात को 15,000 करोड़ रूपये तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर किया है। हुकूमत ने आइंदा महीनों में प्याज की वाफिर दस्तियाबी और मौसम के लिहाज से कीमत को काबू में रखने की कोशिशों को यकीन बनाने के लिए बफर स्टॉक से प्याज निकालने की कोशिशें तेज कर दी हैं। सारिफिन के उमूर के महकमे की सेक्रेटरी निधि खरे ने आज दिल्ली के सारिफिन के लिए कृषि भवन से रियायती कीमत पर प्याज की दस्तियाबी के लिए ओनियन वैन्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। हुकूमत की मदद से पूरी दिल्ली में मोबाइल वैन के अलावा NCCF नेफेड और केंद्रीय भंडार मराकज से 35 रूपये फी किलोग्राम की रियायती कीमत पर प्याज फरोख्त हो रही है। साथियों से बातचीत करते हुए मोहतरमा खरे ने कहा कि हुकूमत प्याज की कीमतों में इजाफे के ताउन में हर साल रियायती कीमत पर सार्फिन को प्याज मुहैया कराती है। भारतीय महकमा मौसमियात ने हफ्ते के रोज तक बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड और शिमाल मशरकी रियासतों में तेज बारिश की पेशगोई की है। IMD ने उड़ीसा जिली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी कल तक तेज बारिश की पेशगोई की है। मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो में भारत और श्रीलंका के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 5वें और आखिरी दिन बराबरी पर खत्म हुआ। इसके साथ ही शुभमन गिल की क्यादत में भारत ने 2 मैचों की सीरीज 1-0 से जीत ली। दूसरे टेस्ट मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 503 रन बनाकर अपनी पहली इनिंग्स डिक्लेयर की और श्रीलंका की पूरी टीम को 290 रन पर आउट करते हुए पहली इनिंग्स में 213 रन की शतक हासिल की। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने नेपाल में सैलाब के अलमनाक हादसे के सबब वहां फंसे भारतीय बाशिंदों का पता लगाने और उन्हें महफूज मकाम तक पहुंचाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। तकरीबन 1,300 लापता अफराद में 290 भारतीय हैं। मरने वालों की तादाद बढ़कर 359 हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज से उज़्बेकिस्तान और जमहूरिया किर्गिज के 4 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में टी सीरीज के टैंक ओवर होलिंग प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। उन्होंने इसे खुद किफालत की जानी मुल्क के सफर में एक और संग मील करार दिया। हुकूमत ने प्याज के वाफी जखीरे से निशानजद जखीरा जारी करना शुरू कर दिया है ताकि आने वाले महीनों में इसकी खातिर ख्वाह दस्तियाबी और त्योहारों के दौरान कीमत के दबाव को मुतदिल रखने को यकीनी बनाया जा सके। बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड और शिमाल मशरकी रियासतों में हफ्ते के रोज तक तेज बारिश की पेशगोई की गई है और मर्दों के क्रिकेट में भारत और मेजबान سری لنکا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ ڈرا پر ختم ہوا. میزبان بھارت نے 1-0 سے سیریز جیت لی. خبروں کا یہ بلٹین ختم ہوا.
0: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. آپ سن رہے ہیں پروگرام تامل ارشاد محمد شاہروخ کے ساتھ. لیجیے سنیے اس پروگرام کی اگلی پیشکش آشا بھوسلے، محمد رفیع اور منڈی کی آوازوں میں.

रंगीन कयामत हो, फूल जुल्फों में चुने मांग भरी तारों से रंग मिलता है बहकते हुए।

बैठे हैं मुकाबिल में, अरे बैठे हैं मुकाबिल में, हम तीर नजर का।

अरे यार, सुन रही थी मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज़ों में ये नगमा फिल्म उस्तादों के उस्ताद से, जिसके मौसिकार थे रवि और मोहम्मदवार थे असद भोपाली, और सुन रहा था भागलपुर बिहार से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल और कुंदन मंडल ने, और सुनने के ख्वाहिशमंद है मोहम्मद फसी, मोहम्मद जमीर, वहीद रोमानी, तेलंगाना निजामबाद से, और सुनना चाह था आमना नसीन आजाद, आसमा परी राबिया ने कापसडा बॉर्डर नई दिल्ली से, और बागवान मंजिल बलिया से नूर आयशा अहमद बागवान, अफलाक अहमद बागवान सुनने के ख्वाहिशमंद थे, और सुनना चाह था बवा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेतम, कुसुम नेतम ने, और आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से मेरा जहां गुलाम साहब राही और ताज मोहम्मद अंसारी सुनने के ख्वाहिशमंद थे, भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव बेंगलुरु से सुनने के ख्वाहिशमंद थे, और सुनना चाहता मनोज जेठवा जेठवा बेबी अवीरा ने श्रीरामपुर से, इंतजार अंजू मालामारा बिहार से सुनने के ख्वाहिशमंद थे, और बिल्लामगढ़ कालगंज से मोहम्मद असलम सैफी सुनने के ख्वाहिशमंद थे, और सुनना चाहता कलकत्ता से सुब्रत चौधरी ने, और टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा चंडीगढ़ से सुनने के ख्वाहिशमंद थे, संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव और शौर्य नामदेव सुनने के ख्वाहिशमंद थे बघेरा दुर्ग से, और सुनना चाह था अरविंद कुमार ने बोनपट्टी से, शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन व जुबा बुल्दाना से सुनने के ख्वाहिशमंद थे, और सुनना चाह था पांडु चंदन, उषा चंदन और प्रतीक्षा चंदन ने कालेगांव से। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में, जिसको सुनना चाह नरेंद्र मिर्गे, प्रियदर्शन मिर्गे, प्रियंका कर पांडे ने महाराष्ट्र से, और रवि कुमार राव, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल हरियाणा सुनना चाहते हैं, और सुनने के ख्वाहिशमंद है रत्नमाला विजय सुगलकर मोटाला महाराष्ट्र से, कुमकुम के साथ सोहन पाठक, कमल पाठक, गवि अमलोत्र जगराम से सुनना चाहते हैं, और सुनने के ख्वाहिशमंद है सुभाष योगी, राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू हाँसी से, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर अबीरुल असम सुनना चाहते हैं गंजवारा से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं राजेंद्र कुमार, मलकित कौर, आरती रानी, और राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा कैंट से सुनना चाहते हैं, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं करणवीर हाउस से बरेंद्र सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा और करणवीर करण, और सुनना चाहते हैं मनु पटेल नई दिल्ली से, कमल वालूजा, मधु वालूजा, सागर वालूजा, और बिहार से दिलीप कुमार सोनी, बाटापारा से बचकमल, बसंत बिगू, मोतीलाल यादव सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं कुशेश्वर, कांति गुप्ता, रघु गुप्ता, रानी मुकेश गुप्ता, राजनगर कांति निकेतन से, और बेगम सोनम शेख, माया शेख, मोहम्मद अरीफ शेख मुंबई से सुनना चाहते हैं। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, संप्रीत पंचोलिया खंडवा से।

कि आप सुन रहे थे नगमा शकील बदायूं का लिखा हुआ ये नगमा अमर फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, जिसके मौसिकार थे नौशाद। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसको सुनना चाह है लालगिरी गोस्वामी और हेमलता ने श्रीगंगानगर राजस्थान से, औरन जोशी तमन्ना जोशी दुर्गे जोशी सुनना चाहते हैं मध्य प्रदेश से, कोरबा से, और सुनना चाहते हैं रमेश तालेकर वंदना तालेकर मलकापुर से, और अमरावती से दिलीप रामेकर अशरामिका सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं स्वर्ण सिंह पंजाब से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं शाजी बोट के रंग बोट के उत्तम जमथाड़ी महाराष्ट्र से, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं नारायण गायकवाड़ दयानंद गायकवाड़ नांदेड़ से, और सुनना चाहते हैं पालसू बुजुर्ग से विजय शेगोकर रेणुगढ़ शेगोकर और ऋषिकेश शेगोकर, और सुनना चाहते हैं बेगम इमराननाथ मास्टर गिल्लू परवेज नवाज शेख उत्तर प्रदेश से, और सुनना चाहते हैं मैथिली कुमारी लड्डू कुमारी रजबगढ़ से, सुनना के ख्वाहिशमंद हैं सुशीला भटकर देवेंद्र भटकर अंकिता नागपुर से, और मनमोहन रजावत मधुर रजावत राशिलक्ष्मी शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से सुनना चाहते हैं, बिसानपुर गिरडी झारखंड से इम्तियाज इमाम आतिश तायर परवीन आतिश डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और सुनना चाहते हैं संबल से छोटे अंसारी।

Okay.

ब्रिज फिल्म से ये नगमा आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी ओपी नैयर ने। हाजिर इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश तरन महमूद की आवाज में, जिसको सुना चाहे दशहर से सैफुल्ला सबा तुझे ने, और पंचकुला सेक्टर 9 से आशुतोष बचवानी चुक गोविंद चुक सुनना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं संजना खर्चे कार्तिक और नारायण मध्य प्रदेश से, और प्रकाश भारती राम भाड़े, जानवी राम भाड़े, वैष्णवी राम भाड़े नागपुर से सुनना चाहते हैं, नरोत्तम गौड़ हिमांशु गौड़ यश गौड़ उदयपुर से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, महेंद्र मोदी ठाकुर साहब कुलदीप सिंह और भारत भूषण रामगढ़ गैंड से सुनने चाहते हैं, पवन गौड़ तनपुरवी गौड़ सुरेश गौड़ कासगंज से सुनना चाहते हैं, मोहम्मद रफीक पर बेनजीर कौसर मोहम्मद हसन पवार गिरिडीह झारखंड से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, खंडवा से सुनना चाहते हैं माफ कीजिए रफीक पवार, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं सुशांत प्रिया झा मास्टर रमेश कुमार लड्डू कुमारी नई दिल्ली से, मुलानपुर दाका से राजेश जैन बिट्टू जैन और गोटा जैन सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, अलीगढ़ अव्वली से बसंत चंद राजकुमार कुलदीप गांधी सुनना चाहते हैं, धर्मनिच्छिपा कपिल चिपा पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं।

0: जानना चाहते हैं कि खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है, ये इनिशिएटिव क्या है और आज के युवा के साथ इसका क्या लिंकेज है।
1: देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया कार्यक्रम की घोषणा की, तब से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट थी कि उनका जो विजन था, उन्होंने देश के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, देश में खेलों के विकास के लिए जो सपना देखा और दिखाया, वो उसकी एक रचनात्मक भूमिका थी इस देश के निर्माण में, एक विकसित भारत के निर्माण में, क्योंकि इस देश में खेल संस्कृति का अभाव था। खेल संस्कृति के अभाव में ये देश खेलों में उस तरह का विकास नहीं कर पा रहा था जिस तरह का विकास हमने अन्य देशों में देखा जो कुछ दिनों पहले तक विकासशील देश थे और कुछ आज भी हैं, पर खेलों में वो विकसित देशों के बराबरी पे आ गए हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जाए जिसमें हर गांव, हर कस्बे, हर शहर, हर जिले, हर राज्य के बच्चों का हम उनकी प्रतिभाओं को पहचान कर, उनकी प्रतिभाओं को तराश कर और फिर ये देखें कि उनमें से पदक प्राप्त करने वाला और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पहुंचने वाला बच्चा कौन सा हो सकता है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने की बात ही उन्होंने नहीं सोची, उन्होंने ये भी सोचा कि जो बच्चा खेलों में अपना ध्यान लगाता है, जो युवा खेलों को अपने जीवन यापन के लिए अपनाना चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दिनों बाद उसे भूखमरी की डर खेलों के मैदान से दूर ले जाए। तो इस तरह से उन्होंने खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया और आपको जानकर, हमारे पूरे देश को जानकर ये प्रसन्नता होती रही है कि खेलो इंडिया से निकले खिलाड़ी, मनु भाकर जैसे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतते रहे और खेलो इंडिया का जो और भी उसके जो विभिन्न अंश और कह लीजिए कि एक नए आयाम के साथ खेलो इंडिया के विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए, जो समुद्र के किनारे होने वाले खेल थे या जो बर्फीली पहाड़ियों पर होने वाले खेल थे, जो विंटर खेलो इंडिया था उनको और बीच खेलो इंडिया, उन खेलों को जिस तरह का प्रोत्साहन मिला प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से, तो ऐसी जगहों पे जहां खेलों में रुचि लेने वालों को कोई पहचानता भी नहीं था, वहां से युवा शक्ति जो निकली, जो उदीयमान सितारे जगमगाए, उन जगमगाते सितारों को देखकर प्रधानमंत्री को ये लगा कि ये झुकनों की चमक नहीं है, ये तो चांदनी है और इस चांदनी को जैसे जैसे तराशा जाएगा ये और निखरेगी, झुकनों की तरह बिल्कुल झिलमिलाकर बुझ जाने वाली चीज नहीं है। उन्होंने इस बात को समझा, देखा, जाना और फिर ये भी जानने की कोशिश की कि किनको किस तरह से यहाँ खेलों के मैदान में लाकर बनाए रखा जाए, ऐसा ना हो कि आज खेलें कल खेलें और परसों उसके बाद वो अपने दाल रोटी की चिंता और फिक्र में, अपने परिवार को पालने की फिक्र में खेल के मैदान को छोड़कर चले जाएं। तो उन्हें एक तरह का आश्वासन मिला कि अगर आप खेल रहे हैं तो जो पुरानी कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, वो कहावत चरितार्थ अब नहीं हो सकती, अब वो गलत साबित हो चुकी है, क्योंकि आप अगर खेलोगे कूदोगे तो आपको हर तरह की सुविधा राज्य की ओर से, राष्ट्र की ओर से आपको प्रदान की जाएगी और ये हमारे प्रधानमंत्री का सपना था।
0: आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खेलो इंडिया संबोधन में भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के बारे में क्या कहा।
2: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: पैरा एथलीट्स ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है एशियन गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में, और जो एबल्ड एथलीट्स है उन्होंने भी अभी अपना जो है प्रदर्शन दिखाया, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर हम वेट लिफ्टर्स की बात करें। ये जो स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स है, एक्सेलेंस है एथलीट्स की, इसके साथ अर्थशास्त्र भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि खेलो इंडिया को लॉन्च करने के लिए, उसको होस्ट करने के लिए भी कई जो राज्य हैं वो चाहते हैं कि उनके यहां पे वेन्यू चुना जाए, उनको फंडिंग मिले सेंटर से, और एक तरीके से स्पोर्ट्स का विकास उनकी राज्य तक पहुंचे।
1: जब एक खेल का आयोजन होता है तो अर्थव्यवस्था को एक नया बूस्ट मिलता है, उसको एक नई गति मिलती है, पर्यटन का विकास होता है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, सड़कों का विकास होता है, हवाई अड्डों का विकास होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, रोजगार के नए अवसर आते हैं। तो खेलों के साथ साथ इन सब के विकास से जो भारत की युवा शक्ति है

0: जो अभी आप देखें जनसंख्या के आधार पर, तो भारत में युवाओं का जो बाहुल है उसको रोजगार के अवसर दिलाने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इस भूमिका की बात आज डायलॉग में भी प्रधानमंत्री ने की है। उन्होंने कहा है कि भारत की युवा शक्ति को विकसित भारत का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए 2027 तक खेलों के माध्यम से उनको वहां पहुंचाया जाए जहां भारत विकास के चरम पर पहुंचे, विकास की पराकाष्ठा पर पहुंचे। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है और जो उनका राष्ट्र के साथ संवाद हुआ है, डायलॉग जो हुआ है जिसमें 1500 करीब शिक्षण संस्थानों ने और उनके छात्रों ने हिस्सा लिया, हर जिले के कम से कम 2 संस्थान ऐसे थे जिन्होंने हिस्सा लिया, तो उसमें भी उन्होंने यही संवाद दिया है। उन्होंने संवाद दिया है कि प्रतियोगिता पदक जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्वस्थ प्रतियोगिता, हेल्दी कॉम्पिटिशन, क्योंकि इससे आपको तरह तरह प्रेरणाएं मिलती हैं, शिक्षा मिलती है। जब आप गिरते हैं तो आप उठना सीखते हैं, जब आप उठते हैं तो गिरने का भय आपके मन से निकलता है। इसी धरती पर बहुत, मैं कहता हूं दावे के साथ, कि 6-7 वर्ष पहले तक कोई नहीं कह सकता था कि एथलेटिक्स में, वो भी भाला फेंक में, जैवलिन थ्रो में भारत को स्वर्ण पदक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ओलंपिक्स और विश्व स्तर पर मिलेगा, ये कोई नहीं कह सकता था। इसी तरह से मीराबाई चानू का एक ऐसा केस है जिसको प्रधानमंत्री ने पहचाना, जाना, उनके टैलेंट को देखा और उनको स्वास्थ्य लाभ की जरूरत थी तो उन्होंने उनको सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान की और प्रदान करने के साथ साथ अच्छे प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की। तो खिलाड़ियों के न्यूट्रिशन, उनके मनस्थिति जो उनकी होती है, उनको मनोवैज्ञानिक रूप से प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना, बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना, ये जो काम होते हैं, और भी हर तरह की चीजें, हर तरह की सुविधाएं जो उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो खेल में पदक लाकर कहें कि हम पदक विजेता हूं, वो इसलिए कि युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत वो बने और युवाओं के लिए उनके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त हो, उनको लगे कि ये भी एक चीज है जो करके हम अपने पोटेंशियल को, जो हमारी अभीप्सा है, जो हमारी चाहत है, उसको हम और विकसित कर सकते हैं, उसको हम एक अंजाम दे सकते हैं।
1: प्रलय जी, युवा की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले ही की थी खेलो इंडिया के माध्यम से। आपके जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, एक तरीके से युवा को ही टारगेट किया जा रहा है और आज उससे जुड़ा हुआ यूथ लीडरशिप की बात की जा रही है और नशा मुक्त युवा मूवमेंट जैसी बातें भी की जा रही है ताकि उनके साथ जो भी समस्याएं हो उसका एक हल निकाल सके। तो युवा हमेशा एक सेंट्रिक थीम रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी कार्यक्रम में।
0: युवाओं के सशक्तिकरण में खेलों की भूमिका और खेलों से जुड़े जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, उन नैतिक मूल्यों की भूमिका को आज उन्होंने रेखांकित किया अपने संवाद में। वो इस तरह से कि जो आपने नशा मुक्ति की बात की, जब युवा को कोई ऐसा प्रयोजन उसके सामने रहेगा जिसमें उसका ध्यान लगातार लगा रहेगा और उसको अपने आगे के भविष्य की चिंता कम होगी, तो वो नशे जैसी चीजों से दूर रहेगा क्योंकि उसको एक रचनात्मक भूमिका दी जा रही है देश के विकास में। तो इस रचनात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं के लिए एक संदेश भी उन्होंने दिया कि अगर आपको विफलता मिलती है, असफलता मिलती है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके लिए जो आगे का मार्ग है वो बंद हो गया हो। इसका अर्थ ये है कि अगर आप गिरे हैं तो आप उठेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और प्रतियोगिता की जो क्षमता है और प्रतियोगिता की जो आवश्यकता है देश के विकास में, युवाओं के विकास में, उस पर भी उन्होंने बल दिया। तो इस तरह से आज का संवाद सिर्फ खेलों या खेलो इंडिया से जुड़ा नहीं था। आज का संवाद देश में युवाओं के सशक्तिकरण, युवाओं की रचनात्मक भूमिका, युवाओं की जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में लगाने के लिए सही कदम कैसे उठाए जाए, इन सब को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज का संबोधन किया है। और उन्होंने अपने साथ साथ ऐसे खिलाड़ियों को वहां रखा, मैरीकॉम जैसे खिलाड़ियों को, जिन्होंने छोटी जगह से निकलकर और स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विश्व चैंपियन बनकर दुनिया के सामने ये दिखाया कि आप चाहे कहीं से भी हों, छोटी से छोटी जगह से भी हों, अगर आप में प्रतिभा है और आपकी प्रतिभा को ठीक तरह से तराशा जाता है तो कोई भी पदक का मंच आपसे दूर नहीं रह सकता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने और उनकी प्रतिभा को निखारने की बात कही। आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा।
2: जब हम 2036 ओलंपिक्स की तैयारी की बात करते हैं तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें आज से ही वो खिलाड़ी तैयार करने हैं जो 2036 में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई और कम्पीट करेंगे। और इसलिए लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया। और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
1: खेलो इंडिया के संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी मेजर ध्यानचंद को सम्मान देके, और उन्होंने उदाहरण ये भी दिया कि अभी नेशनल स्पोर्ट्स डे आने वाला है 29 अगस्त में एक भेंट दिया। नेशनल स्पोर्ट्स डे का महत्व क्या है?
0: हमारे यहाँ खेलों की जो परंपरा रही है, जिस परंपरा में जीत हॉकी जैसे खेलों में हमें बहुत आसानी से मिलती रही है, उस परंपरा में जो बीच में एक थोड़े दिनों के लिए एक कमी आ गई थी, वो परंपरा फल फूल नहीं पा रही थी, उसको पुनर्जीवित करने के लिए, और हॉकी के साथ साथ अन्य खेलों की भी बात प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि आज 13 खेलों में हमने हिस्सा लिया राष्ट्रमंडल खेलों में, और ऐसे कई खेल हैं जिसमें हमारे खिलाड़ी न खेलते हैं न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। तो वैसे में हम परंपरागत खेलों के अलावा जो आधुनिक खेल हैं उनमें भी अगर हम हिस्सा लें तो मेजर ध्यानचंद जैसा हॉकी का खिलाड़ी हमने जब दिया, नीरज चोपड़ा जैसा एथलीट जब हमने दिया, तो अभी हमारे पास और भी ऐसे टैलेंट हैं जिनको हम उन खेलों में नेटबॉल, हैंडबॉल, रोइंग और स्कीइंग इन जैसे खेलों में भी हम अच्छा कर सकते हैं। तो मेजर ध्यानचंद का एक प्रतीकात्मक महत्व है कि एक छोटी जगह से निकला हुआ एक आदमी जिसके पास ढंग के जूते, ढंग के कपड़े भी ना हो, हॉकी खेलने के लिए जो जरूरत की चीजें हैं वो भी ना हो, और वो आज भी आप देखेंगे छोटा नागपुर चले जाइए जहां से बच्चे निकलते हैं हॉकी खेलने वाले, वो एक पेड़ की छोटी सी डाली को तोड़कर हॉकी स्टिक बनाकर जो ड्रिबलिंग करते हैं, तो देखकर ऐसा लगता है कि कितनी प्रतिभाएं हमारे यहाँ छिपी हुई हैं, और उन्हीं प्रतिभाओं को 5 से 15 वर्ष की उम्र वाले प्रतिभाओं को पहचान कर सामने लाने की बात प्रधानमंत्री ने की है। तो मेजर ध्यानचंद जैसे लोग प्रेरणा के स्रोत ही नहीं है, एक प्रतीकात्मक उनका अपना मूल्य है, एक उनकी अपनी जगह है लोगों के दिमाग में उसको बिठाने के लिए जो लोग भूल चुके हैं आखिर क्यों उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, आखिर क्या कहा था हिटलर ने उनसे। इन सब बातों की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि भारतीय खेल इतिहास के जो स्वर्णिम पन्ने थे उन पन्नों में कुछ और नए पन्ने जोड़ने की जरूरत है, और बीच में जो खाली रह गए अध्याय उन अध्यायों को भूल कर अब आगे के अध्याय में जितने स्वर्णिम पन्ने हम और जोड़ पाएंगे भारत में खेलों का विकास उतना ही होगा। और यही प्रधानमंत्री का संदेश है जो हर युवा को एक नई शक्ति प्रदान करता है।
1: भले नीरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खेल और खेल के विकास को लेकर विस्तार में चर्चा की, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे खेलो इंडिया संवाद, भारत की खेल क्षमता के प्रोत्साहन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे खेल विश्लेषक मलय नीरव। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अर्जुन जे चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम बज़्मे मौसिकी। आइए इस प्रोग्राम के तहत सुनते हैं विदुषी रीता गांगुली की आवाज में राग भैरवी में ठुमरी।

0: सामने अभी आप सुन रहे थे विदुषी रीता गांगुली की आवाज में राग भैरवी में ठुमरी। इसी के साथ प्रोग्राम बज़्म मौसिकी अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं आलमी खबरें।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद इमरान से आलमी खबरें सुनिए। भारत ने नेपाल में सैलाब के अलमनाक हादसे के सबब वहां फंसे भारतीय बाशिंदों का पता लगाने और उन्हें महफूज मकाम तक पहुंचाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। तकरीबन 1300 लापता अफराद में 290 भारतीय हैं। मरने वालों की तादाद बढ़कर 359 हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज उज़्बेकिस्तान और जमहूरिया किर्गिज के चार रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में वाके टी सीरीज टैंक ओवरहोलिंग प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। उन्होंने इसे खुद किफालत की जानी मुल्क के सफर में एक और संग मील करार दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्याल का इजहार करेंगे और मर्दों के क्रिकेट में भारत और मेजबान श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ। मेहमान भारत ने 1-0 से सीरीज जीत ली। अब खबरें तफसील से। भारत ने नेपाल में अचानक आने वाले तबाकुन सैलाब के बायस फंसे हुए भारतीय शहरियों की तलाश और बचाव की कोशिशें तेज कर दी हैं। गुज़श्ता रोज नेपाल में अचानक आने वाले शदीद सैलाब से हलाकतों की मजमू तादाद बढ़कर 359 हो गई है, जबकि हुक्काम 1300 से ज्यादा लापता अफराद को तलाश करने के लिए हम वक्त जद्दोजहद कर रहे हैं, जिनमें 290 भारतीय शहरी भी शामिल हैं। कल नई दिल्ली में साफियों से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि जब नेपाल में सैलाब का यह सानहा पेश आया तब वहां 290 भारतीय शहरी मौजूद थे। इन भारतीय शहरियों से अभी तक राबता कायम नहीं हो सका है। इनमें वह 63 भारतीय शहरी भी शामिल हैं जो त्रिशूली एक पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। जनाब जायसवाल ने कहा कि काठमांडू में वाके भारतीय सिफारतखाना प्रोजेक्ट के हुक्काम से मालूमात हासिल करने के लिए राब्ते में है, क्योंकि मुतासर इलाकों में मवासलाती राब्ता मुनक्ता हो गए हैं। वजारत खारजा ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गए तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले 31 भारतीय शहरियों को नेपाल में बचा लिया गया है। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारतीय हुक्काम नेपाल हुक्काम के साथ मिलकर फंसे हुए भारतीय शहरियों से राबता कायम करने और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल में जारी बचाव और इमदादी कार्रवाइयों के लिए 27 टन से ज्यादा हंगामी इमदादी सामान भेजा है। भारत बचाव और इमदादी कार्रवाइयों में ताउन के लिए बैली पुलों को इस्तेमाल कर रहा है। जनाब जायसवाल ने कहा कि वजारत खारजा में 24 घंटे काम करने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। उन्होंने बताया कि काठमांडू और बीजिंग में वाके भारतीय सिफारतखानों ने भी 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन कायम की हैं। चीन के इलाके में फंसे भारतीय शहरियों के बारे में उन्होंने कहा कि बीजिंग में भारतीय सिफारतखाना उनके महफूज इनखला के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। तकरीबन 200 भारतीय शहरियों ने इनखला के लिए मदद तलब की है। वज़ारत खारजा ने लोगों को ताउन मुहैया करने की गरज से नई दिल्ली में 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम कायम किया है। इस कंट्रोल रूम से इन नंबरों पर राबता किया जा सकता है। +9 1 1 2 3 0 8 8 7 1 8 +9 1 1 1 2 3 0 8 8 7 9 व्हाट्सएप कॉल और मैसेजेस के लिए इस नंबर पर राबता किया जा सकता है। +9 1 9 9 6 8 2 9 1 9 8 8 इस आईडी पर ईमेल किया जा सकता है situationroom@meea.gov.in। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत 21वीं सदी में भारत के लिए खेलों के एक जदीद निजाम की तश्कील के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि खेलों की यूनिवर्सिटियों से लेकर जदीद तरीन तरबियती मराकज तक मुल्क भर में एक ऐसा निजाम तैयार किया जा रहा है जहां बासलाहियत अफराद को हर मरहले पर ताउन मिलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग कल बैठक से कल खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि खेल सिर्फ तमगे जीतने तक महदूद नहीं है बल्कि ये तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में भारत के खेलों से मुतालिक हौसलों और नौजवानों की तवानाई को यकजा करना है। उन्होंने कहा कि हर जिला में ये सलाहियत पाई जाती है कि खेलों के आम मंजरनामे पर अपनी छाप छोड़ सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने लाल किले की फसील से बासलाहियत अफराद की तलाश के लिए एक बड़ी मुहिम का ऐलान किया था ताकि 5 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों की खेलों के ताल्लुक से निशानदेही की जा सके। वज़ीर आज़म ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि आज खेल भारत में एक बेहतरीन करियर और पेशे के तौर पर उभरे हैं। रक्षाबंधन से एक दिन कबल कल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने लोगों को मुबारकबाद पेश की है। सदर जमहूरिया ने कहा कि रक्षाबंधन का त्यौहार जमाने कदीम से ही मुल्क की सकाफत और रवायत का एक अटूट हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि राखी का धागा कलाई पर यकीन के साथ बांधा जाता है और उसे तहफ्फुज़ का एक मुकद्दस रिश्ता यानी रक्षाबंधन समझा जाता है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज जमहूरिया उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के चार रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस

अभी आप सुन रहे थे उड़न खटोला, फिल्म सीन अहमा लता मंगेशकर की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी नौशाद ने और बोल थे शकील बदायूनी के। हाजिर इस प्रोग्राम की अगली पेशकश मंडाडे की आवाज में सीमा फिल्म से।

अंदर फिल्म से ये नफा आशा भोसले और तरद महमूद की आवाज में, जिसकी तर्ज बनाई थी हंसराज बहल ने। हाजिर है इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मेला फिल्म से मुकेश और शमशाद बेगम की आवाज में।

0: यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 2400 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से +9118123088 और +9118123088719 पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779815131607 और +9779813261 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरूआती सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की निर्यात बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. The toll in the massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,300 people missing as of yesterday. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has said that 4 Indian nationals have been rescued so far in Nepal. These include 63 workers of the Trishuli 1 project as well as 21 people from Tamil Nadu. The ministry said that contact with 290 Indians have not been established so far. Addressing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Ranveer Jaiswal said the Indian embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected area have been disrupted.
2: Prime Minister yesterday spoke to the Prime Minister of Nepal, conveyed our deepest condolences, conveyed that India stands in solidarity with people of Nepal, as also offered all possible humanitarian assistance from our side.
1: Mr. Jaiswal said, India has sent more than 47 tons of emergency

0: वाह क्या खूब आवाज थी किशोर कुमार की, क्योंकि उनकी आवाज की एक खासियत रही है कि उसमें शरारत, मस्ती और दर्द भी होता है। और जो अभी आपने गीत सुना वो फिल्म कुदरत से था, जो उनकी आवाज में थी वो थी रोमांस की बात।
1: और बिल्कुल शायद यही वजह है कि आज भी उनके गाए गीत हर पीढ़ी को उतने ही पसंद आते हैं।
0: तो ऐसा ही एक गीत हम लेकर आए हैं आपके लिए। बढ़ते हैं अगले सुनहरे नगमे की तरफ। ये गीत रिश्तों की मजबूती और साथ निभाने की खूबसूरत बात तो कहता ही है, साथ में एक फिल्म के उस सीन को याद दिलाता है। अगर आपने देखी है तो वहां पर एक एक तरह से कहते हैं ना, आपकी जिंदगी जो है कसौटी पर है, और वहां पर आप जिंदगी से प्रेरित एक गीत गा रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने, ये बिल्कुल ऐसे दिखाता है कि जिंदगी में संघर्षों से कैसे लड़ा जाता
0: जी,
1: है।
0: तो आइए सुनते हैं फिल्म क्रांति से लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में ये गीत।

तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे इस खूबसूरत से गीत को। और देखिए, कहते हैं कि रिश्तों की डोर अगर प्यार, भरोसे और अपनापन से बंधी हो तो जिंदगी का हर सफर आसान बनने लगता है। और इस गीत की सबसे बड़ी खूबसूरती है इसका संगीत और इसके बोल, जो सीधा दिल को छू जाते हैं। और देखिए, कहते हैं कि जो पुराने गीत हैं, इनकी खासियत भी यही थी कि हर गीत अपने साथ कोई ना कोई एहसास और कहानी लेकर आता है। तो चलिए, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आपको सुनवाते हैं एक मस्ती भरा एक और शानदार सा गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में।

0: तो आरती, अभी हमने जो ये गीत सुना वो फिल्म कर्ज से था, और गायिका रही लता मंगेशकर और गायक किशोर कुमार। और इस गीत में जो चंचलता और इसकी मस्ती है, उसे सुनते ही एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है जिसका रंग बहुत अलग है।
1: बिल्कुल सही कहा कि जो गीत हैं, जो पुराने गीत होते हैं, इनमें रोमांस हो, शरारत हो या फिर जिंदगी की कोई गहरी बात, हर रंग को संगीत में बेहद ही खूबसूरती से पिरोया जाता है।
0: जी बिल्कुल। और ऐसा ही गीत अब आने वाला है जिसे हम बड़े ही प्यार से लेकर आए हैं, और वो जो गीत है ना वो एक दूजे के लिए है। यानी कि कहते हैं ना, कई बार जब दो लोग मिलते हैं, जिनके दो लोगों के मन मिलते हैं, तो उनके अंदर ना बहुत सी चीजें ऐसी समानता हो जाती है कि वो प्यार में डूब ही चुके होते हैं लगभग। और इसलिए इस फिल्म का नाम भी एक दूजे के लिए ही रहा है। तो आइए
1: बिल्कुल
0: सुनते हैं एक दूजे फिल्म से लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज में इस गीत को।

0: भाई इस गीत के माध्यम से एक बात तो सच है कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ जिंदगी का सफर तय करने का फैसला करते हैं तो उनके रिश्ते में प्यार के अलावा विश्वास और साथ निभाने का जज्बा भी जरूरी होता है।
1: बिल्कुल, और पुरानी फिल्मी गीतों ने प्यार के इन एहसासों को कितनी खूबसूरती से शब्दों और सुरों में भी सजाया है।
0: तो चलिए अब इस सुरीले सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुरों की सरस्वती कही जाने वाली लता मंगेशकर की मधुर आवाज के साथ एक आपको बहुत ही दिल को छू लेने वाला गीत सुनवाते हैं।

0: बहुत खूबसूरत गीत किशोर कुमार की आवाज में छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। ये एक ऐसा गीत जिसमें प्यार का एहसास बेहद सादगी और खूबसूरती के साथ पेश किया गया है।
1: तो चलिए दोस्तों, गीत सुनहरे में पुरानी फिल्म संगीत के इस खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनाते हैं आपको एक और सदाबहार नगमा।

0: तो श्रोता, अभी आप इस खूबसूरत से गीत को सुन रहे थे और देखिए ये गीत प्रीति जो मेरे दिल को भी काफी सुकून देता है और मेरे दिल के काफी करीब है ये गीत। देखिए ये गीत जो है उन अधूरी ख्वाहिशों और उन एहसासों की बात करता है जिन्हें पाने की चाह तो दिल में रहती है लेकिन कभी कभी वे सिर्फ एक खूबसूरत याद बनकर रह जाती है।
1: जी बिल्कुल सही बात कही आपने, और गीत के बोलों में छुपी हुई तड़प, चाहत और इंतजार का एहसास इसे बेहद खास बना देता है। और यही तो पुराने फिल्मी गीतों की खूबसूरती है कि वो जिंदगी के हर जज्बात को इतने खूबसूरत अंदाज में बयां करता है।
0: तो चलिए इसी खूबसूरत अंदाज को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला एक खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

तो अभी आपने सुना ये बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाला गीत नीला आसमान सो गया। और तो आइए दोस्तों, अब इस सुरेले सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनाते हैं सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर की मधुर आवाज में एक बेहद खूबसूरत गीत।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं

0: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें हमने सुनवाया आपको गोल्डन एरा के वो खूबसूरत से नगमे जिन्हें हमारे जो बहुत ही सुरीली आवाज वाले गायक और गायिकाएं रही उनकी आवाज में हमने आपको ये गीत सुनवाए।
1: बिल्कुल, और उम्मीद है आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। तो अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी पुराने फिल्मी संगीत के साथ। तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 810 किलो हर्ट्ज पर। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना हमारा कार्यक्रम गीत सुनहरे। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और फिर अंग्रेजी में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता राधी जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
1: जहाज के हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहां से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहां से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। लापता लोगों में 290 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। अचानक आई बाढ़ ने नेपाल के 3 जिलों में भारी तबाही मचाई है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें कई विदेशी शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से ज्यादा देशों, मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता काफले ने बताया कि प्रभावित इलाकों से 1500 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सेबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में मकुई अशांग इलाके के IT रोड पर कल सुबह करीब 9 बजे गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और सेनापति जिले में लोगों ने बंद का ऐलान किया। इस घटना के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने शाम को राजधानी इम्फाल में मुख्यमंत्री सचिवालय में सुरक्षा से जुड़ी एक उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में हमले की समीक्षा की गई और सुरक्षा अधिकारियों को दोषियों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। मणिपुर में ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन AMSU ने इम्फाल में 61वां हंगर मार्चर्स डे या चकलाम खोंगपत मनाया। यह दिन उन 4 छात्र नेताओं की याद मनाया जाता है जिनकी मौत 27 अगस्त 1965 को मणिपुर में चावल की कथित कृत्रिम कमी के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान हो गई थी। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान HUID आधारित चांदी या चांदी के आभूषण तंत्र का विस्तार किया है। अब देश के 102 जिलों में 341 चांदी परख और हॉलमार्किंग केंद्र हैं। त्योहारों के मौसम से पहले 25,000 से ज्यादा चांदी के ज्वेलर्स BIS के साथ पंजीकृत हो चुके हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ajay Kumar. India has stepped up efforts to trace and rescue internationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. The toll of the massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,300 people missing as of yesterday. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal. These include 63 workers of the Fishuni 1 project as well as 21 people from Tamil Nadu. The ministry said that contact with 290 Indians have not been established so far. Addressing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Indian Embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected area have been disrupted. Mr. Jaiswal said India has sent more than 47 tons of emergency supplies aimed at supporting Nepal's ongoing rescue and relief operations. He said that India is also mobilizing building bridges to assist in rescue and relief efforts. Mr. Jaiswal said that Indian embassies both in Kathmandu and Beijing have also set up 24/7 helpline. On the Indian national stranded on the Chinese side, Mr. Jaiswal said that Indian embassy in Beijing is making all efforts for their safe evacuation. The Ministry of External Affairs has set up a round-the-clock control room in New Delhi to assist people. The control room can be contacted at +91 11 2308 8718 +91 11 2308 8719. For WhatsApp calls and messages, +91 9968 291988 can be contacted. The emergency contact numbers of the Indian Embassy in Kathmandu are +97798 5 1316807 plus 9779709107500 and plus 9779810326117. The flash floods were caused after an avalanche blocked the flow of the landed tributary of the Bhotakoshi and first hit Tehore near Nepal's border with China at Rasuwagari. UN Secretary General Antonio Guterres has voiced deep sadness over the severe flooding in Nepal and China that has caused widespread destruction. The international body has allocated an initial tranche of $2 million for relief operations. The United Nations is supporting the government-led response in Nepal, including assessing the scale of the disaster and delivering urgent assistance. UN teams and humanitarian partners are mobilizing supplies and personnel to support communities affected by the floods. The National Disaster Response Force, NDRF, has said that the devastating flash floods in Nepal have so far had no adverse impact on the border areas of Bihar and Uttar Pradesh. However, the situation is being continuously monitored in coordination with the two state governments. NDRF Inspector General Narendra Singh Mundela said 20 NDRF teams have been deployed in the two states, including 9 in Bihar and 11 in Uttar Pradesh. Delhi Health Minister Dr. Pankaj Kumar Singh yesterday reviewed the preparedness of the hospital and the health department in view of the rising number of H1N1 cases in the national capital. As many as 166 H1N1 cases have been reported in Delhi during the last 24 hours, while the total number of H1N1 cases in the capital is 2,612. He inspected the special H1N1 isolation ward and reviewed arrangements of the treatment and care of patients. Dr. Pankaj also interacted with doctors, healthcare workers, and patients and took stock of the availability of beds, oxygen, medicines, fluids, testing facilities, and other essential medical infrastructure. BJP President Nitin Nabin yesterday chaired the first organizational meeting with the newly appointed National General Secretaries at the party headquarters in New Delhi. Mr. Nabin held detailed discussions on organizational preparations and the roadmap for the upcoming assembly elections in various states. The government has commenced calibrated and targeted release of onions from the buffer stock to ensure adequate availability and moderate seasonal price pressures in the coming months. Secretary Department of Consumer Affairs Nidhi Khare yesterday flagged off onion vans for retail distribution from Krishi Bhavan, New Delhi, for the consumers of the National Capital Region. And that is the end of this news bulletin.
2: आप सुन रहे हैं एआई लाइव न्यूज 24x7। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 2:09 और 59 सेकेंड और श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम गीत बहार का। तो आइए आनंद लेते हैं एक खूबसूरत से गीत का विनोद राठौर की आवाज में।

0: तो साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम गीत बहार, और अब हमें दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में समाचार और फिर होंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: जहाज के हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहां से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैम्प, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहां से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। प्रशासन हजारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेजी से काम कर रहा है। अचानक आई इस बाढ़ ने नेपाल के 3 जिलों में भारी तबाही मचाई है। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों ने बताया है कि अभी 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिसमें कई विदेशी शामिल हैं। लापता लोगों में 30 से ज्यादा देशों, मुख्य रूप से भारत, अमरीका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी और रूस के लोग शामिल हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता काफले ने बताया है कि प्रभावित इलाकों से 1500 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है, इनमें घायल लोग भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिडी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति

0: मिर्जियो येव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में 3 युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान HUID आधारित चांदी या चांदी के आभूषण तंत्र का विस्तार किया है। अब देश के 102 जिलों में 341 चांदी परख और हॉलमार्किंग केंद्र हैं। BIS ने बताया कि 6 अंकों वाला हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान चांदी के आभूषणों की शुद्धता सुनिश्चित करता है। मानक ब्यूरो ने चांदी आभूषण ग्राहकों को सलाह दी है कि वे BIS हॉलमार्क देखें और BIS केयर ऐप के जरिए HUID को जांचें। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने नीदरलैंड्स के एमस्टरफेन में 5वें स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में जर्मनी को 3-1 से हरा दिया है। 1974 में हुए पहले विश्व कप में 4था स्थान हासिल करने के बाद से ये भारतीय महिला टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। India has stepped up efforts to trace and rescue Indian national stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in the massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,300 people missing as of yesterday. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal. These include 63 workers of the Trishuli 1 project as well as 21 people from Tamil Nadu. The ministry said that contact with 290 Indians have not been established so far. A recent media in New Delhi External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Indian embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected area have been disrupted. Mr. Jaiswal said India has sent more than 47 tons of emergency relief supplies aimed at supporting Nepal's ongoing rescue and relief operations. He said that India is also mobilizing Bailey Bridges to assist in rescue and relief efforts. Mr. Jaiswal said that Indian embassies both in Kathmandu and Beijing have also set up 24/7 helplines. On the Indian nationals stranded on the Chinese side, Mr. Jaiswal said that Indian embassy in Beijing is making all efforts for their safe evacuation. The Ministry of External Affairs has set up a round-the-clock control room in New Delhi to assist people. The control room can be contacted at +91 11 2308 8718. +91 11 2308 8719. For WhatsApp calls and messages, +91 99 68 29 1988 can be contacted. The emergency contact numbers of the Indian Embassy in Kathmandu are +977 985 131 6807, +977 970 910 7500, and 977 981 032 6117. The flash floods were caused after an avalanche blocked the flow of the Lendi tributary of the Bhurtakoshi and first hit Timore near Nepal's border with China at Rasuwagadi. The National Disaster Response Force, NDRF, has said the devastating flash floods in Nepal have so far had no adverse impact on the border areas of Bihar and Uttar Pradesh. However, the situation is being continuously monitored in coordination.

0: तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे गीत गजल का कार्यक्रम। चार बजने को हैं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में समाचार और फिर होंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है।
2: दो जहाज के हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज उसके यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैम्प, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 4 बज चुका है और प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना।

Thank you.

ba ba ni da ni ma ni da ni re da ni ba ma ba ni ba no.

Money, my baba.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 की भादो मास की छठी तिथि, तदनुसार 28 अगस्त 2026। सुबह के 4:53 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

तो श्रोताओं, आज आपको बता दें हम कि क्या क्या कार्यक्रम आप इंद्रप्रस्थ चैनल पर सुनेंगे। 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें, देशभक्ति गीत आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मों से 5:20 पर।

भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना आप सुन सकेंगे 6:10 पर। भगवान महावीर के उपदेश पर आप चिंतन सुन सकेंगे 6:40 पर। 6:45 पर आप सुन सकेंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड भाग 31।

गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 7:30 पर और 8:45 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर गंगा।

9:15 पर आप सुन सकेंगे वार्ता, जिसका विषय रहेगा महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रम और वहां की जीवन शैली। वार्ताकार हैं हर्षिता विश्वास।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं। अब होंगे समाचार।
1: शलन सबलमलन भगत फलन कान कुवर ने कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवण दुरत दवन सकल पवन कुशल करण सर्ब भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जर्म कर्म मच्छ कछ हो बराहा जमुना कै कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार ही तार तज विकार मन गय अंदर।

नाक अमृत छाड बिख बिख खाई माया मो परम पूल सत दारा से प्रीत लग एक तम पंथ सुनो गुर संगत कहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे राम दास राख।

0: रामदास राखो सरनाई
1: सुख तन गुर सेविया अहमिस सहज सुभाय दर्शन परसय गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिहत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मन जन्म जन्म दी कटी है सज्जन।

ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ

जिस का तन मन तन सब तिस का।

ताते कनिक बखानी प्रगट्यो ज्योत सहज सुख सम

ਸਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।

Thank you.